प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: बुधवार 17 जून रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं सुमिता की ओर से। नमस्कार स्वीकार करें, घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं, समय हुआ है समाचार का।
3: आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज। रजनी जी से नमस्कार।
4: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचरण और पूर्व वित्त मंत्री रंगनाथन पेरियाची कल से हिरासत में, उन्हें फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 2023 में ईंधन खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया था। इन दोनों ही पुरुषों को आज बुधवार को भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों ही पूर्व मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन के अस्थाई आरोप। आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारिणी में बदलाव। माओवाकवा की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है, अब से यहां पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध। संबंधित इलाके वाकवा, क्यूपिप, कैट्रबोन, बोबा सैंप रोजिल, मोका सैंपियर और रिवियनो जिले के एक भाग में। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक ने लोगों से पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की। इन पिछले सप्ताहों के दौरान तापमान में बदलाव के चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज। सैनिटरी अधिकारी इस वृद्धि से चिंतित हो चले। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से डॉक्टर फाजिल कोदाबकस ने कहा कि अभी कई वायरस मौजूद, जिसके मद्देनजर ऐसी स्थिति बनी हुई है। विदेश समाचारों में फ्रांस के एवियन शहर में G7 बैठक, आज भारत अमेरिका के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग, 2000 एकड़ से अधिक का इलाका चपेट में। भारत में मौसम का महा अलर्ट, दिल्ली यूपी समेत 21 राज्यों में भारी बारिश आंधी की चेतावनी, पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा। विश्व फुटबॉल कप वर्ल्ड कप के अंतर्गत खेले गए मैच में अभी तक हाफ टाइम पर अर्जेंटीना अल्जीरिया को 1-0 से हरा रहा है। उधर नॉर्वे ने इराक को 4-1 से पराजित किया। फ्रांस ने सेनेगाल को 3-1 से हराकर जीत हासिल की। और फुटबॉल के ही क्षेत्र में किलियान एम्बापे ने फ्रांस में इतिहास रचा। फ्रांस के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने ओलिविये जिरो और जस्ट फोंटेन से भी आगे निकल पड़े। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में मौसम का हाल।
5: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
4: कमजोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हुए हैं, वे हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटू पर। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पश्चिमी एवं दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 23 एवं 25 डिग्री।

0: सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 एवं 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह 6:43 पर सूर्योदय, जबकि शाम 5:38 पर सूर्यास्त। धन्यवाद, नमस्कार।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
2: भोर की बेला, ताजगी भरी शुरुआत।
3: चलिए, भोर की बेला इस कार्यक्रम को लेकर हम आप सबकी सेवा में जुड़ चुके हैं। बुधवार 17 जून, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 6:05 होने को है। समिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें, आप सभी का अभिवादन। रेडियो मॉरिशस पर भोर की बेला यह कार्यक्रम आरंभ होता है। यहाँ से आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सवेरे सवेरे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। और चलिए, ईश्वर की कृपा से इस नए दिन को देखने का अवसर हमें मिला है, तो बस ईश्वर के दिखाए हुए राह पर चलते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि आपके जीवन में जो भी हो अच्छा ही अच्छा हो और आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं, तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की भोर की बेला कार्यक्रम को हम आरंभ कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में हम बढ़ेंगे कार्यक्रम सनातन धारा की ओर, फिर लगभग 6:20 पर सत्यात प्रकाश मास के उपलक्ष्य में आप सुन पाएंगे विशेष कार्यक्रम, और 6:30 सुन पाएंगे पूरा समाचार। तो आइए बढ़ते हैं सनातन धारा इस कार्यक्रम की ओर। सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी, उनको सुनते हैं।
4: आइए सुनिए श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय गीता की रहस्यमयी वाग्धारा। गीता सार को आगे बढ़ाते हुए यतः सर्वजातम् वियद्दलिनं मुख्यं जगदीदितं इस्रोनिशेषं व्योपि निज सुखाशीन मधुहा लेये सर्वस्थामिस्थं हराति कल्पनाम अस्तुं सवितुभु शरण्येनं लोकेषु मम भवतु कृष्णस्ते विषयः। गीता अनंत रत्न परिपूरित विचित्र महोदधी के समान है। इसमें गोता लगाने वाले अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य रत्न प्राप्त करते हैं, किंतु इसके तल तक पहुंचने में अनेक विघ्न बाधाएं और विभ्रम है। ब्रह्मा प्रभावों से बचने के लिए कवचाव्रत होकर के एकांतिक भाव से रहस्यमयी रत्न की खोज में लगना पड़ता है। तभी यह काम धेनु के समान इच्छित वस्तु प्रदान करती है। माया जाल में फंसे ब्रह्म आकर्षणों में लीन व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। लोकमान्य तिलक एवं महात्मा गांधी जैसे महानुभावों ने तो कारावास की एकांत कटोरी में मनन कर सफल

फल अन्वेषण किया। जा की रही भवान जैसे, हरि मूर्ति देखी तीन जैसे। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए इसमें किसी ने कर्म, किसी ने भक्ति, किसी ने ज्ञान, किसी ने तीनों का समाहार का अनुभव किया। तो आगे चलकर श्री अरविंद लोकमान्य तिलक लाल, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और आचार्य विनोद भावे आदि विचारों ने गीता प्रबंध, गीता रहस्य, गीता संदेश, अनाफिक योग, गीता तत्वबोध आदि जन मोल सिद्धांत रत्न खोज निकाले। जैसे पहले कहा जा चुका है, उपनिषद रूपी कामधेनु के दोगुना स्वयं भगवान कृष्ण ने और सर्वप्रथम दुग्धपान का अवसर अर्जुन को प्राप्त हुआ था। अर्जुन जी युद्ध के मैदान में कर्तव्य के विषय में तो किन कर्तव्यम विमूढ़म थे, ही गीता अमृत पान करते समय उसकी रहस्यात्मक के कारण और भी व्यह मोह में पड़ गए, किंतु हिम्मत नहीं हारे। निर्भिक्त होकर के पूछ ही तो लिया। ज्ञान से चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दनम तत्किं कर्मणि घोरेण माम निजयोयितं केशव व्याप्नं श्रियते व्याक्येन बुद्धि मोहितं सवे तेदकं वदं निश्चित्ये येन क्रियते अयायुयास। हे जनार्दन, यदि कर्म को अपेक्षा ज्ञान आपके विचार से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले जुले वचन से मेरी बुद्धि को मोहित फिर सीर कर रहे हैं। अतएव निश्चय करके ऐसी बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। अन्यत्र भी कृष्ण जी ने कहा, संसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाला यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रेयान्द्रियंत मया यज्ञानम यज्ञम यज्ञम तत्परम तथा नहीं ज्ञानेन दृश्यतम पवित्रमही विद्यते। अर्जुन जो भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे अनद विवेकी दार्शनीय और उच्च दर्जे के जिज्ञासु थे। वे मोहमयी वाणी से प्रभावित नहीं हुए। उन्हें प्रतीत हुआ कि भगवान स्वयं ही विसृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अतः वे उनका पूछना स्वाभाविक था। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने जो रहस्यमयी ज्ञान से ओतप्रोत बातें कही है, वे संसार के बड़े बड़े महारथी दार्शनिकों और चिंतकों को आश्चर्य में डाल देने वाले हैं। इस वाणी पर जितना ही विचार एवं मनन किया जाए कम है। सूत्र रूप में कही गई वह वाणी गागर में सागर के समान है। मूल श्लोक इस प्रकार से है, लोकाभ्याम द्विजाम निष्ठम पुराः प्रोक्ता मन्यताम ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इससे पूर्व काल से ही प्रतिपादन की ओर संकेत मिलता है। संसार में प्रत्येक वस्तु के
उत्पन्न करने का उद्देश्य

देश विशेष है। वृक्षों का जन्म निश्चित कार्य के लिए होता है। पशु अपने नियमित कार्य में संलग्न है। आकाश, पवन, तेज, जल, पृथ्वी रूप पांच तत्व अपने अपने धर्माधीन सबको लाभ पहुंचा रहे हैं। मनुष्य एवं प्राणी है जिसे सभी वस्तुओं का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है। इसके कार्य कलाप को देख करके इतिहासकार दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। वह चाहे तो अपने चतुर्य से दृष्टि सृष्टि को भस्म मात कर दे और चाहे तो अपने विवेचन के दिए गुणों के से सारे संसार को सुख समृद्धि का नंदन वन बना दे। पशु तो अपनी वृत्तियों को सिमृत क्षेत्रों में ही प्रवृत्ति कर सकते हैं, किंतु मनुष्य पर प्रकृति का कोई अंकुश नहीं है। यही कारण है कि योग की परिभाषा लिखते हुए महर्षि पतंजलि ने लिखा, योगाम चतेनम वृत्ति विरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। चित्त वृत्तियों का अवधा अनुसरण करते से अनेक प्रकार के संताप होते हैं। इस दुख की अत्यंत निर्वृत्ति ही संख्या दर्शन का उद्देश्य है। योगी या संख्या किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। यह भी गीता का सर्वमान्य सिद्धांत है। ऐसे स्थिति में संदेह को हो सकता है कि फिर भगवान प्राप्ति कैसे होगी। वह संदेह भी घातक है। भगवान ने कहा, वंशाप्त्याम विवश्यति, संदेह दूर करने के लिए उपवास भी वे ही समझते हैं। हे अर्जुन, सृष्टि को उत्पन्न करते ही मैं मानव पुरुषों को बता देता हूँ कि तुम्हें जीवन निरुद्देश्य नहीं प्रदान किया है। मानव जीवन सोदेश्य है। वह उद्देश्य भी इतना महान है कि कोई जन्म तो उद्देश्य को मनन करने में भी बिता सकते हैं। अनेक जन्म की सिद्धि के बाद ही परम गति प्राप्त हो सकती है। इन उद्देश्यों को समझने के लिए बड़ा दावीर्ण प्रमाण करना पड़ गया। इसके ध्यान में रख करके भगवान ने योग की सरल और शास्त्रीय परिभाषा दी है। योग कर्मसु कुशलम, अर्थात कर्म में कुशलता का नाम ही योग है। कुशल कार्यकर्ता सदा सफल होता है। इच्छा इंजीनियर वही कहा जाता है जो अपने प्रयोगात्म कार्य में दक्ष होता है। उससे अपना लक्ष्य प्राप्त करने की कठिनाई नहीं होती। भगवान ने माया प्रोक्त कह करके इस मार्ग का पालन करना आवश्यक बना दिया। संदेह के लिए स्थान नहीं छोड़ा। योग के अनुपालन का तात्पर्य है परमात्मा की समीपता का अनुभव रहना। उससे उद्देश्य की सिद्धि अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है।

0: संख्या भी अपना विशेष महत्व है। इसमें आत्मा और प्रकृति, दुख और सुख आदि के भेद समझाने के लिए अकाटत्य तर्थ दिए गए हैं। प्रकृति के विकास का भी अध्ययन किया गया है। इसमें सत्य और ज्ञान की रक्षा के लिए जोर दिया गया है। इस तथ्य के विदेशी भी सहमत है, वह निर्विवाद सत्य है कि वर्तमान युग के सारे ज्ञान विज्ञान की कुंज उक्त श्लोक है, संकेतिक है। संख्या शास्त्र पढ़ने और उसके मनन करने के यह महान सत्य स्पष्ट हो जाते हैं। यो रूप के सारे विज्ञान, प्रकृति के नियंत्रण की सारी प्रक्रिया आदि का मूल संख्या शास्त्र की ज्ञान सरिता में अवश्य ही प्रभावित होता, प्रकृति गोचर होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।
2: श्रोताओं, सनातन धारा इस कार्यक्रम के बाद अब समय हुआ है हम सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष्य में बढ़े इस विशेष कार्यक्रम की ओर। आर्य सभा मॉरिशस की प्रस्तुति में कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी पंडिता भरुण जी। आइए उनको सुनते हैं और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर 6:30 बजे।
3: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

जगतस्तस्तुषश्च, अर्थात जो सब देवों में श्रेष्ठ और बलवान है, जो सूर्य लोक प्राण अपान और अग्नि का भी प्रकाश करता है, जो द्युलोक और पृथ्वी लोक में व्यापक है, जो जड़ और चेतन जगत का जीव आत्मा है, वह चराचर जगत का प्रकाश परमात्मा हमारे हृदयों में सदा प्रकाशित है। प्रिय श्रोताओं, प्रातःकाल की इस शुभ बेला में सभी को नमस्ते। जून मास सत्यार्थ प्रकाश मास घोषित किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश वैदिक सिद्धांत का एक महान ग्रंथ है, क्योंकि इसमें सत्य के सही सही अर्थ भी की पहचान हुई है। यह काल जयी ग्रंथ है, तो आज मैं इसी धार्मिक ग्रंथ के 11वें समुलास पर कुछ खुलासा दूंगी। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी वेद को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने वेद के माध्यम से भारतवासियों को उपदेश देना चाहा। उनका ध्येय किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। इस समुलास में महर्षि जी ने किसी का खंडन नहीं किया। उन्होंने वेद विरुद्ध बातों को खोलकर सामने रख दिया। उन्होंने स्वच्छ पवित्र समाज का निर्माण करना चाहा। 11वें समुलास के आरंभ में ही उन्होंने राजाओं के आपसी वैमनस्यता तथा फूट पर अपनी कलम दौड़ाई है। महाभारत के युद्ध से पहले भारत देश में वेद धर्म प्रमुख था। पांडवों में युधिष्ठिर, श्री कृष्ण आदि सब के सब वैदिक राजा थे, परंतु युद्ध के बाद अलग अलग मतों ने जन्म लिया।

जैसे कि बौद्ध मत, जैन मत, चार्वाक मत, शंकराचार्य मत, रामानुज मत, वल्लभ मत, वैष्णव मत आदि। मत मतांतरों का चक्रव्यूह था। कुछ सालों में वैदिक धर्म लुप्त हो गया था, लोग भगवान को भूल गए थे, ऋषि मुनियों के धर्म का लुप्त हो गया था, धर्म गुरुओं पर राजगुरु का अंकुश नहीं होता था, मन माने गुरुओं का धर्म चलता था, भारतवासी भ्रमित हो गए थे, आपसी द्वेष से गरीबी फैल रही थी, सुरक्षा ढीली पड़ गई थी, जनता दुखी थी, देश का पतन हो रहा था, वेद जो सत्य है पीछे रह गए थे। महर्षि दयानंद जी सन्यासी थे और दूरदृष्टा भी। उन्हीं वेदों के पुनरुत्थान में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। महर्षि जी को सच बोलने में कोई हिचक नहीं थी। भारत देश का उद्धार करना उनका परम उद्देश्य रहा। उनका सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ एक सार्वभौम मिसाल बनकर रह गया। 11वें संबुलास में बहुत गंभीर व गूढ़ बातें आई हैं, जैसे कि भ्रम, ज्ञान, चार प्रकार के तप, परिस्थिति, धर्म एवं धार्मिक होने के लिए 16 गुण, ईश्वर विषय, बड़े विद्वान जैसे महर्षि वेदव्यास, शंकराचार्य तथा रामानुज, चार प्रकार के तप, ऋतम तपह, सत्यम तपह, दमस्तपह, स्वाध्यायस्तपह, इन चारों पर चर्चा की गई है। पहला ऋतम तपह है। वेदों में ऋत है अर्थात अटल नियम, परमात्मा का बनाया हुआ नियम जो कभी नहीं बदलता। उदाहरणार्थ सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अपने रजोमंडल में अस्त होता है। चाहे कितनी बार सृष्टि बनी और नष्ट हुई, फिर भी आज तक वही नियम लागू होता है। दूसरा है सत्यम तपह। सत्य को सदा मानकर चलना चाहिए। रित अटल होता है, परंतु सत्य में बदलाव भी आ सकता है। उदाहरण के तौर पर है, जैसे अभी प्रातःकाल का समय है, फिर दोपहर के बाद शाम होगा। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी गर्मी है तो कभी सर्दी। तीसरा है दमस्तपह, यानी कि धर्माचरण करना चाहिए, अपने मन को अधर्म की ओर न ले जावें। बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। चौथे स्थान पर स्वाध्याय तपह है। वैसे तो दो प्रकार के स्वाध्याय होते हैं, एक स्वयं का अध्ययन करना और दूसरा है सत्य विद्या को प्राप्त करना। धार्मिक सुज्ञान प्राप्त करके सुकर्म करना वेद सुज्ञान है, जो हरेक के लिए लाभदायक है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के 11वें संबुलास के अंतर्गत ईश्वर विषय भी आया है। महर्षि जी ने ठीक दर्शाया है कि यह ईश्वरीय वैदिक ज्ञान है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले ही मंत्र में यह कथन है कि ईशावाशमिदं सर्वम्। ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर नस नाड़ियों के बंधन में नहीं होते, वे माँ के गर्भ में नहीं रहते। ईश्वर दृष्टा है। ईश्वर न्याय करता है। ईश्वर हमारे पाप पुण्य कर्मों को देखते हैं और न्याय करके फल देते हैं। मनुष्य दो प्रकार के कर्मों के बीच रहते हैं, एक है विहित कर्म और दूसरा है निषिद्ध कर्म।

महर्षि की मांग थी कि मनुष्य हमेशा वैदिक शिक्षा के अनुकूल अपने भाव स्वभाव को बनावे। वैदिक शिक्षा ही सभी भ्रमों को निर्मूल करती है जो स्वभाव आदि से मनुष्य में है, जो खोट या कमजोरी हो

0: ना छोड़ता नहीं है। किसी ने खूब कहा है कि सागर के अथाह पानी में हम नहीं बह पाए, सागर के अथाह पानी में हम नहीं बह पाए, लेकिन होता क्या है कि दुकानों के बंद बोतलों के पानी में हम सब बह जाते हैं। बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों स्थापित करना, यही परिश्रम, त्याग तथा तप है। वेद परम सत्य है, सच्ची शिक्षा वेद की है, इसे ग्रहण करना अनिवार्य है। मानव का क्षेत्र शिक्षा है, विद्या है, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, इसी से घर, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं पूरे विश्व का कल्याण व निर्माण होता है। श्रोताओं, ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: KHz यह है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: सुबह के 6:30 बज चुके हैं। पेश है पूरा समाचार बुलेटिन। सुर्खियां इस प्रकार हैं। पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचन और पूर्व वित्त मंत्री रंगानाथन पादयाची कल से हिरासत में। उन्हें फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 2023 में ईंधन खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया था। इन दोनों ही पुरुषों को आज बुधवार को भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों ही पूर्व मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन के अस्थाई आरोप। आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारणी में बदलाव। माओवाका की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है, अब से यहां पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध। संबंधित इलाके हैं वाकवा, क्यूपी, कैट्रबोन, बोबासर, रोजिल, मोका, सैपियर और रिवियनो जिले के एक भाग में। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक ने लोगों से पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की। इन पिछले सप्ताहों के दौरान तापमान में बदलाव के चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शंस के मामलों में बढ़ोतरी। सैनिटरी अधिकारी इस वृद्धि से चिंतित हो चले। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अभी कई वायरस मौजूद जिसके मद्देनजर ऐसी स्थिति बनी हुई है। विदेशी समाचारों में फ्रांस के इवियन शहर में G7 बैठक, आज भारत अमेरिका के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग, 2000 एकड़ से अधिक का इलाका चपेट में। भारत में मौसम का महा अलर्ट, दिल्ली यूपी समेत 21 राज्यों में भारी बारिश, आंधी की चेतावनी, पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा। और विश्व फुटबॉल कप के अंतर्गत खेले जा रहे मैच में अर्जेंटीना और अल्जीरिया 1-0 से हरा रहा था अर्जेंटीना अल्जीरिया को। हाफ टाइम पर अपडेट्स इस बुलेटिन में। नॉर्वे ने इराक को 4-1 से पराजित किया। उधर फ्रांस ने सेनेगाल को 3-1 से हराकर जीत हासिल की। और फुटबॉल के ही क्षेत्र में किलियान एम्बापे ने फ्रांस में इतिहास रचा। फ्रांस के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने ओलिविये जिरू और जिस्ट फोंटेन से भी आगे निकल पड़े। सत्रह जून 2026 से इस प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और अब समाचार विस्तार से। पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचन को कल रात हिरासत में लिया गया। उसे फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को कल सुबह मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 2023 में ईंधन खरीदने के एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने संबंधित कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के फैसले में भाग लिए होंगे। इसके अलावा रंगानाथन पादयाची को भी कल रात 8:15 इसी जाँच के मामले में गिरफ्तार किया गया। जाँच कर्ताओं के मुताबिक संदिग्ध लोगों के मोबाइल फोन्स के बारीकी से मूल्यांकन की बदौलत इस मामले में जांच में प्रगति हो पाई है। इन दोनों ही पुरुषों को आज बुधवार के दिन भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों ही पूर्व मंत्रियों का प्रतिनिधित्व वकील गौफ गुलबुल, रोशन संतोष

0: योगी और नीलकंठ डलू कर रहे हैं। और चलिए अभी वकीलों की प्रतिक्रिया सुनते हैं।
1: पूर्व वित्त मंत्री रंगनादेन पदयाची ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट आवंटन के समय व्यापार मंत्री रहे सुदेश कालीचरण का कहना है कि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है।
2: Le contrat qui fut alloué par la STC à l'époque comme petit ministre de commerce. Alors, depuis ce matin, nous là, l'enquête peut continuer. N'enquête qui est la plus
3: différente. Est-ce qu'il y a une question pour reprocher ou pas?
2: Non, pas du tout.
0: और ये कल दिन के दौरान ऐसा हुआ था। आपको ये भी बता दें कि मारिटिम एंड मर्सेंटाइल इंटरनेशनल की निदेशिका कारिना नेसिस तथा एनटीसी के पूर्व महानिदेशक राजेश सवान सिंह को पिछले साल इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सुर्खियों में हम इसका उल्लेख कर रहे थे। टापू का प्रमुख जलाशय माओवा का 43.9% भरा है। वाटर रिसोर्सेज कमीशन ने कल प्रकाशित अपने हालिया बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी। दूसरी तरफ 7 जलाशय औसतन 62.8% भरे हुए हैं। स्थिति चिंताजनक बताई जाती है। आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारिणी बदल रही है। माओवाकवा की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है, अब से यहां पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध। संबंधित इलाके इस प्रकार है: वाकवा, क्यूपिप, कैट्रोबोन, बुमासें, रोजिल, मुका, सैपिया और रिवियनो जिले के एक भाग में। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक लोमेश जगू के अनुसार बहुत कम बारिश हुई है। जनवरी से मार्च महीने के बीच 48% वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इस बात का ऐलान किया गया कि जून और जुलाई के महीनों में कम ही बारिश होती है। लोगों से पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की जाती है। लोमेश जगू ने हमारी सहयोगी पत्रकार राजमीला सीतामणि को संबंधित जानकारियां दी। उन्हें सुनते हैं, विवरण सुमेरा अकबर अली।
4: Ne finit la situation, comment peut évoluer si la condition climatique n'est pas.
5: हमने स्थिति की संभावनाओं पर गौर किया। अगर माहौलियाती हालत बेहतर ना बने, यानी अगर बारिश ना हो, हम देख सकते हैं कि आने वाले महीनों में जलाशयों की स्थिति बहुत खराब होगी। हम सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं। ऐसी हालत से बचने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। अहम है कि हम सब ऐसी मुश्किल घड़ी में एक दूसरे को सहयोग दें।
0: इन पिछले सप्ताहों के दौरान तापमान में बदलाव नोट किए गए हैं, जिसके चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 8 और 14 जून के बीच स्वास्थ्य संबंधी 5,027 मामले दर्ज किए गए, जबकि इससे पहले हफ्ते में इसकी तादाद 4,424 थी। सैनिटरी अधिकारी इस वृद्धि से चिंतित हो चले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वास्थ्य सेवा के अंतरिम निदेशक डॉक्टर फाजिल कोदाबाकस के मुताबिक अभी कई वायरस मौजूद हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, कोविड-19 और पारा इन्फ्लुएंजा। डॉक्टर फाजिल कोदाबाकस ने निर्मा नारायण रेड्डी को अधिक जानकारियां दी। विवरण सुमेरा अकबर अली।
6: Donc les chiffres sont du 8 juin au 14 juin, nous avons enregistré 5027 cas.
5: 8 जून से 14 जून के बीच हमने 5,827 मामले दर्ज किए, जबकि इससे पहले वाले हफ्ते के दौरान 4,424 मामले दर्ज हुए थे और इससे पहले भी 8,500 से जायद मामले पाए गए थे। सर्दी जुकाम के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ठंड और खुश्क माहौल में वायरस का ज्यादा फैलाव होता है। सर्दी जुकाम के अलावा कोविड-19 और दूसरे वायरस हैं। लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है, खासतौर पर बच्चों को, बुजुर्गों को, बीमारों को जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी या अस्थमा है, उन्हें संगीन ब्रोंकाइटिस या निमोनिया होने का ज्यादा खतरा है।
6: Asthma, ben, des personnes plus à risque pour avoir des complications telles que des complications bronchiques, pneumonie, donc des capables très très sévères dans certains cas.
0: सोशल नेटवर्क की ओर से इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन तथा ज्ञान के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं प्रदान की जाती हैं। फिर भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अविनाश राम दोहल के अनुसार कुछ सामाजिक बुराइयां भी जुड़े हुए हो सकती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व याद दिलाते हुए मंत्री ने बताया कि

0: सोशल नेटवर्क की मदद पर हर एक तरह के विचार एक अधिक व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए। इसके अलावा मंत्री ने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि सोशल नेटवर्क पर मनाही का सवाल नहीं उठता है, ना ही किसी निर्धारित उम्र के लोगों पर पहुंच में देरी लाने में। फिर भी उन्होंने प्लेटफॉर्म के कंटेंट्स की जांच करने के महत्व पर जोर दिया। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई, अनुसंधान और स्कूली कार्यों के लिए मूल्यवान औजार है। मंत्री अविनाश राम दोहल को सुनते हैं, जिनसे बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने। विवरण एक बार फिर से सुमेरा अकबर अली।
1: Nous trouvons qu'il finit là pas mal de bonnes pays qui finit prend la direction, c'est-à-dire nous avons l'Australie, la France, maintenant l'Angleterre.
2: बहुत से देशों ने कदम उठा लिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। बच्चों और आने वाली नस्लों की हिफाजत करने के लिए ये एक अच्छा फैसला है। मॉरिशस में हमने अनेक संस्थाओं के साथ सलाह मशवरे किए, उनकी सलाह है कि ये कदम अच्छा है। कुछ लोगों का कहना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आदर करना चाहिए, बेशक दीगर राय लेकर ही आगे बढ़ेंगे। इस कानून को अमल में लाने के लिए बहुत से देशों को मुश्किल भी हुई है, तकनीकी हल जरूरी है।
1: Implementation even low and element technique. Il veut dire comment vous connaissez si un jeune pirate en Australie low and sa bande réseaux sociaux qui high risk là. Alors, il y a pas une solution technique qui capable mettre en place. Il faudrait nous gagner à corriger le bonne solution technique là, hein?
0: इससे पूर्व हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचंद को कल रात हिरासत में लिया गया। उसे फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को कल सुबह मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 2023 में ईंधन खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया था। और इसके अलावा रंगानारायण पडयाची को भी कल रात 8:15 इसी जांच के मामले में गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं के मुताबिक संदिग्ध लोगों के मोबाइल फोन्स के बारीकी से मूल्यांकन किए जाने की बदौलत इस मामले में जांच में प्रगति हो पाई है। दोनों ही पूर्व मंत्रियों का प्रतिनिधित्व वकील राउफ गुलबुल, रोशन संतोखी और नीलकंत डल्लू कर रहे हैं। चलिए वकील राउफ गुलबुल और नीलकंत डल्लू को सुनते हैं।
3: Question que Fidena en relation à un contrat de White Oil qui est une idée pour la STC en 2023. Je ne veux pas dire plus.
4: Et au client, il est privé, Diane.
3: Non, on ne va pas le dire, Diane. Mais on va prendre ça, processus de répondre à question là. Question-réponse, question-réponse.
5: Depuis ce matin, l'IPEDON se fait chaud. L'enquête est terminée. Nous finissons informés par la police qui l'IPE. Être placé sous détention policière jusqu'à demain matin à côté de pour être traduit en cours de pour lui sud. C'est la STC qui finit allocate le contrat et non pas le ministre.
6: Pas le ministre.
5: D'alors.
6: C'est the board of STC qui take the decision. Il prend décision, ce qui m'occupe à comprendre, ce qui institution qui nous est là. C'est dans l'intérêt pays.
0: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। कल रात नया चांद नजर आया और आज से मुसलमान कौम का नया इस्लामी साल शुरू हो गया है। मुहर्रम का 10वां दिन बड़ी अहमियत रखता है। इस दौरान करबला का वाकया पेश आया था। हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन के हक के लिए एक अजीम कुर्बानी दी थी। ये 1448 हिजरी है। सऊदी अरब में कल पहली तारीख थी और इस मौके पर काबा शरीफ का किस्वा बदला गया। एक खास रिपोर्ट सुमेरा अकबरेली के साथ।
2: इस्लामी तकवीम यानी कैलेंडर में 354 या 355 दिन होते हैं और इसका आगाज मुहर्रम महीने से होता है। आज पहली तारीख से बाकायदा नए इस्लामी साल की शुरुआत हुई है। मजहब इस्लाम में मुहर्रम सबसे अहम माहों में शुमार है और इसे बहुत मुकद्दस माना जाता है। इस महीने की सबसे अहम तारीख 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा है। इस दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन और उनके वफादार साथियों ने करबला के मैदान में हक और सच्चाई के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। ये 1448 का साल है। हस्ब दस्तूर नई हिजरी के मौके पर मक्के की बड़ी मस्जिद में काबे का कपड़ा यानी किस्वा को बदला जाता है। मुहर्रम के महीने में कई अहम इस्लामी वाकयात से मंसूब रिवायतें मिलती हैं। सबसे मशहूर वाकया करबला का है, लेकिन रिवायतों के मुताबिक इस महीने में और भी अहम वाकयात हुए, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तूफान के बाद बसलामती किनारा मिला था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली और फिरौन गर्क हुआ था,

0: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निजात पाकर बाहर आए और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली। मुहर्रम हमें सब्र, हिम्मत, इंसाफ और दीन का पैगाम देता है। मुसलमान इस महीने में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन की कुर्बानी को याद करते हैं और उनकी तालीमात से रहनुमाई हासिल करते हैं। आशुरा का दिन इबादत, दुआ और नेक आमाल करने की भी अहमियत रखता है। आज रात से मुल्क की कई मस्जिदों में मजलिस मुनाक़िद किए जाएंगे, तकरीरें की जाएंगी और ज़िक्र इलाही के अलावा तिलावत कुरान भी की जाएगी। पूरे मुसलमान कौम को नया इस्लामी साल 1448 हिजरी मुबारक हो।
1: सिरहा लियो में आयोजित इंटरनेशनल केटरिंग कप के फाइनल में हमारे तीन मॉरिशन शेफ हमारे चौरंगे को और ऊंचा उठाने की कोशिश में। जी हाँ, अगले साल 2027 के जनवरी महीने में फ्रांस में इसका आयोजन होगा। तीन शेफ प्रवेश चतुरी, जूलियो इमानुएल गाबो और जॉन अंतोन रिकॉर्डो कातों आज वे स्वदेश लौट रहे हैं। रात के 8 बजे मडागास्कर में वे इस फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए। मॉरिशस शेफ एसोसिएशन की ओर से उनके आगमन पर उनका स्वागत किया जाएगा। इसके अध्यक्ष माये वैनकूपर ने समझाया कि मडागास्कर और मॉरिशस इंटरनेशनल केटरिंग कप के अफ्रीकी सिलेक्शन के दौरान क्वालिफाई हो पाए हैं। पिछले 13 और 14 जून को अंटानारिवो में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विदेश समाचारों में फ्रांस के शहर एवियों में G60 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल मंगलवार को एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, फिर थोड़ी देर बातचीत की। सूत्रों के अनुसार ये मुलाकात अनौपचारिक रही, जबकि आज देर शाम दोनों नेताओं के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित है। फरवरी 2025 में वाशिंगटन में हुई पिछली बैठक के लगभग 16 महीने बाद इनकी ये पहली आमने सामने की मुलाकात है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत देश के 21 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और आगे बढ़ते मानसून के प्रभाव से उत्तर व मध्य भारत के मौसम में ये बड़ा बदलाव आया, जिसके कारण कई इलाकों में 60 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ झमझमा बारिश का अलर्ट है। कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली, वज्रपात गिरने की भी चेतावनी दी गई है। साधन कैलिफोर्निया में लगी आग, जंगल की आग लगातार बढ़ रही है। तेजी से फैल रही आग ने रिवरसाइड काउंटी में 2000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को झुलसा दिया है। अधिकारियों के अनुसार आग की लपटें तेज हवाओं के कारण तेजी से फैल रही हैं, जिससे दमकल विभाग की टीमें पूरे क्षेत्र में संघर्ष कर रही हैं। आग वर्तमान में अनियंत्रित बताई जा रही है और इसमें कई संरचनाओं को खतरा है। स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए निकासी के आदेश जारी किए गए। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट और अन्य एजेंसियां आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर और ग्राउंड टीमों के साथ लगातार काम कर रही है। और फुटबॉल के क्षेत्र में फ्रांस के युवा फुटबॉल खिलाड़ी किलियान एम्बापे बने दुनिया का नया लेजेंड। फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के दावेदार फ्रांस ने अपने स्टार किलियान एम्बापे के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के दम पर सेनेगाल को 3-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की है। और आपको ये भी बता दें कि विश्व फुटबॉल कप के अंतर्गत खेले गए मैच में अभी भी अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच मैच चल रहा है। हाफ टाइम पर 1-0 से अर्जेंटीना की जीत हो रही थी, जबकि हालिया खबरों के अनुसार लियोनेल मेसी ने 3 गोल बना दिए हैं अब तक, यानी कि 3-0। नॉर्वे ने इराक को 4-1 से पराजित किया। उधर फ्रांस ने सेनेगाल को 3-1 से हराकर जीत हासिल की। मौसम संबंधी जानकारियां कुछ इस प्रकार हैं। कमजोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हुए हैं वे हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करें।

अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके में, दक्षिणी इलाके पर और सेंट्रल प्लाटू पर। दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कुछ इलाकों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगे। दूर समुद्र में तथा पश्चिमी एवं दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 23 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह सूर्यास्त 6:43 पर, जबकि सुबह सूर्योदय 6:43 पर, जबकि सूर्यास्त शाम 5:38 पर।

0: मौसम संबंधी नई जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों कादर और माचिन को। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

एसएसआर लेन कैटर बोर्ड में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड की बीबी मरियम लाल महमूद, बीबी मरियम लाल महमूद जो काला मरियम नाम से भी जानी जाती थी, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के पौने ग्यारह बजे उनकी बेटी नूरीना मोहंग के मकान एसएसआर लेन कैटरबोर्ड से उठाकर सबसे पहले कैटरबोर्ड मस्जिद ले जाया जाएगा नमाज जनाजा के लिए। इसके बाद दफनाने के लिए अवयदा का कब्रस्तान, फनरल टुडे एट 11:15 AM। नंबर 13 बालगोबिनी स्ट्रीट रॉसेल में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की बीबी आयदा फौजिया मजारा मुबाकराबी जमाल खान, बीबी आयदा फौजिया मजारा मुबाराकराबी जमाल खान, पैदाशी नाम नूदिर जो नेला नाम से भी जानी जाती थी, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के 12 बजे उनके मकान नंबर 13 बालगोबिनी स्ट्रीट रोजिल से उठाकर दफनाने के लिए सैमौते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट नून। रॉयल रोड गॉन पैंतोपीमो में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्री इंद्रदेव परेश जो विजयता यो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर रॉयल रोड गॉन पैंतोपीमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गॉन पैंतोपीमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट नोन। नंबर 53 फोकुआ गली क्यूपिप में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री गौतम चरितर जो राजेश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के सवा बारह बजे उनके घर नंबर 53 फोकुआ गली क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 9:15। मोसेल मोसुना आलेब्रियन कास्टेल में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिसवंती गोकुल पैदाशी नाम ब्रिज मोहन जो पंडिता गोकुल नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके पति श्री रामानंद गोकुल के घर मोसेल मोसुना आलेब्रियन कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलेब्रियन कास्टेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1:30 PM। एनएचडीसी खोंबुआ में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती

0: अफरोज़ा लुत्फ़न, अफरोज़ा लुत्फ़न जो ज़ुबैद नाम से भी जाने जाते थे, कांतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के एक बजे उनके घर NHDC खोबा से उठाकर दफनाने के लिए टोंबो मेबग का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। रुतबासे कैट्रोबोर्ड में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी परग्यानेन, पैदाशी नाम गोइंदेन जो राधा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है आज दिन के दो बजे उनके घर रुतबासे कैट्रोबोर्ड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कतकारो ओकुले में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुमारी सलोनी हनुन्योन, श्रीमती कुमारी सलोनी हनुन्योन, पैदाशी नाम बुधन जो सलोनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर कथकाओ ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 9:30 AM। मोसेलमो रे बेलेर रिवेसेश में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती मुकलाल, पैदाशी नाम रामलोचन जो बिंदु नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री धनराज मुकलाल के घर मौसल महोय बेलेर वैसेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालीसी बिल्डिंग बेलेर वैसेश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड बोबासा में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री हेमराज जोगू जो बाबू कॉन्ट्रैक्टर नाम से भी जाने जाते थे और पहले नंबर 27 डॉक्टर पिपे स्ट्रीट बोबासा रहते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी लाशापेल औदौत एलियनसन रॉयल रोड बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलेविय की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 9:15 AM। जंबो रोड शुमेग्रेनिये में लागरोट के बगल में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री सत्यानंद येरिया जो आत्मानंद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती सरस येरिया के घर जंबो रोड श्रीमेघ्रनिये लाघोत के बगल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौगोपाल श्रीमेघ्रनिये की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM। शुक्रिया इन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Tous les 104 matchs, exot highlights, tout en anglais. Zis pour 390 roupies.
2: Hey, mais moi mon compte en suivi football en français.
1: Mais ça aussi Mighty et là. Prends ton pack New World Sport, zis pour 300 roupies. Vivez l'ambiance du stade directement dans votre salon avec Mighty. Abonnez-vous au DSTV Stream ou New World Sport selon votre préférence et profitez d'un mois gratuit et recevez un cadeau Panini. Appelez le 8902. Termes et conditions applicables.
2: Mighty? Mighty CIA ça!
3: Radio Mauritius.
4: 800 kHz par ye hai Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.
4: Radio Mauritius.
5: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
6: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष्य में आर्य सभा मॉरिशस बुधवार 17 जून को पृथ्वी राफ्रे आर्य समाज में शाम के 5:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 7 बज रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां सुन लीजिए। मोदेजिया पायोट के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, खासकर यहां के इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक, कॉन्डोस वाक्वा रोड सुल्फरिनो नंबर 4 एम्पास बेकासिन, यहां पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर जो है कल गुरुवार 18 जून को दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे के बीच यहां पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही जुकोमेया यूनियन सेंट ओबे स्टाफ क्वार्टर्स यूनियन सेंटोबे, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर भी कल गुरुवार 18 जून को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कॉमोसले कथकोको और यहाँ के आसपास के इलाकों में रहने वाले ग्राहक, खासकर NSLD, NHDC, चर्च लेन, दासान स्ट्रीट, एवेन्यू आजालिया, हाई स्ट्रीट, बिलॉ स्ट्रीट, कामेलिया एवेन्यू, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि आज बुधवार 17 जून को सुबह के 8 बजकर 45 मिनट से शाम के 5 बजे के बीच यहां पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही मौसल मौदे साजाल फ्लिक ऑफ लाक यहां पर और आसपास के रहने वाले ग्राहक, खासकर एवेन्यू दे पिवट एवेन्यू दे टू तेरो, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर भी आज बुधवार 17 जून को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 12:30 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ CEB की ओर से।
0: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

Sports News. सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। द गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये कोई दूसरे ग्रह से आया है, नाम है लियोनेल मेसी। इस वर्ल्ड कप का पहला हैट्रिक और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने के रिकॉर्ड की बराबरी

अर्जेंटीना का लियोनेल मेसी, फुटबॉल का बादशाह, मैच जारी है, पिक्चर अभी बाकी है। अर्जेंटीना कुछ समय पहले 3-0 से आगे था, मेसी मेसी मेसी, तीनों गोल मेसी की ओर से, अद्भुत लाजवाब शब्द कम पर जाएंगे मेसी के लिए। इधर फ्रांस का ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बना किलियान एम्बापे, वर्ल्ड कप 2026 के अपने ओपनिंग मैच में ही एम्बापे ने 2 गोल स्कोर करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। एम्बापे के पास अब 58 गोल हैं, ये रिकॉर्ड पहले ओलिवर जिरू के पास था। फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराया। सब कुछ सेकंड हाफ में हुआ, पहला गोल किलियान एम्बापे ने स्कोर किया, फिर बाकोला इंजुरी टाइम के 5वें मिनट में एनजाई ने सेनेगल के लिए गोल स्कोर किया। केवल 1 मिनट बाद फिर से सेनेगल ने कहा बाप रे बाप, जब एम्बापे ने अपना डबल पूरा किया और फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड तोड़ा। फ्रांस का अगला मैच इराक के खिलाफ होगा 22 जून को, जबकि सेनेगल खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ 1 दिन बाद। मैन ऑफ द मैच माइकल ओलिजे को दिया गया। फ्रांस में एम्बापे हैं तो नॉर्वे में अर्लिंग अलॉन इराक की उम्मीदों को राख में बदल डाला एक शानदार डबल के साथ। इराक 1-4, अलॉन का डबल, 1 गोल ओस्टिगार्ड का और 1 गोल ऑन गोल रहा। नॉर्वे के लिए अलॉन 57 गोल स्कोर कर चुका है। ग्रुप जे में वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना की एंट्री हुई, अल्जीरिया के खिलाफ पहला गोल और कौन, द गोट लियोनेल मेसी। केवल 17 मिनट लगे मेसी को ताला खोलने में और वो भी एक लाजवाब गोल, अ स्टनर टू किक ऑफ द वर्ल्ड कप कैंपेन। आज के अन्य मैच सुबह 8 बजे ऑस्ट्रिया वर्सेस जॉर्डन, ये अर्जेंटीना वाला ग्रुप जे है। फिर रात के 8 बजे ग्रुप के की बारी, पोर्टुगल वर्सेस कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एंट्री, और मिडनाइट किक ऑफ ग्रुप एल में इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया। कल सुबह 3 बजे ग्रुप एल में ही गाना का मुकाबला पनामा से होगा और 6 बजे उज्बेकिस्तान कोलंबिया, मतलब कल सुबह ग्रुप स्टेज के फर्स्ट राउंड के मैच पूरे हो जाएंगे और कल से ही बैक टू ग्रुप ए दूसरे राउंड के मैच खेले जाएंगे। रात के 8 बजे चेक रिपब्लिक वर्सेस साउथ अफ्रीका और 11 बजे स्विट्जरलैंड बोस्निया। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप कैंपेन अभी शुरू नहीं हुआ पर इंजुरी की समस्या सामने है। न्यूकासल यूनाइटेड का फुलबैक चिनो लिवरामेंटो कॉल्फ इंजुरी के कारण वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएगा। उसके स्थान पर चेल्सी से ट्रेवो चालोबा को बुलाया गया है। ट्रांसफर न्यूज, टोटनहम हॉटस्पर में पुनः निर्माण कार्य यानी रिबिल्डिंग जारी है। ब्राइटन से डिफेंडर पोल वान हेके को साइन करने के लिए मंजूरी मिल गई है। ट्रांसफर फी 52 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, 52 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। इधर एसी मिलान का नया बॉस बना रूबेन अमोरिम। मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकाले जाने के बाद एसी मिलान में वो गया जहां पर मासिमिलियानो अलेग्री था, पर चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन न मिलने पर उसे निकाल दिया गया। इधर न्यूकासल यूनाइटेड के मिडफील्डर सांड्रो टोनाली ट्रांसफर बाजार का गर्म माल बन गया है। आर्सेनल, टोटनहम हॉटस्पर, मैनचेस्टर सिटी, यहां तक कि लिवरपूल सब के सब उसके पीछे हैं, पर न्यूकासल यूनाइटेड अपने हीरे को सस्ते में नहीं जाने देगा। सेस्मिक ऑफर होना चाहिए। योजे मोरिनो मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर रूबेन जास के लिए 80 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग स्वूप के लिए तैयारी कर रहा है और लगता है बार्सिलोना राशफोर्ड को परमानेंटली साइन नहीं करेगा। यूनाइटेड और बासा के बीच 26 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का बाय ऑप्शन कल एक्सपायर हुआ। वर्ल्ड कप के बाद राशफोर्ड यूनाइटेड में वापस आएगा। और क्रिकेट में टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज, इंडिया की सीनियर टीम अभी 1-0 से आगे है। और महिला T20 वर्ल्ड कप में कल इंग्लैंड ने आयरलैंड को हराया, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को चौंकाया और आज भारतीय महिला टीम इंडिया वुमेन वर्सेस नेदरलैंड्स वुमेन। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया, नमस्कार, शुभ दिन।

0: किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।
1: नजराना, ये प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हम आप सबके साथ जुड़ चुके हैं। कैसे हैं आप सभी? ठीक तो है ना? तो चलिए, सुप्रभात आप सभी को। नया दिन निकल चुका है, आप सभी का दिल से एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजराना इस म्यूजिकल सफर में। और कहते हैं ना कि सवेरे सवेरे एक अच्छी थॉट के साथ, एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छी सोच के साथ अगर दिन का आरंभ हो तो पूरा दिन अपने आप में अच्छा हो ही जाता है। सुबह की शुरुआत ऐसी हो कि दिन भर में हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, अगर वैसे ही सोचकर उठते हैं, वैसे ही सोच से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो फिर पूरे दिन में हमें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए, यहाँ पर जुड़ गए हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यही हम प्रार्थना करेंगे कि आज का इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं, 9 बजे तक चलने वाला है ये म्यूजिकल सफ़र। चलिए शुरुआत करते हैं चिंतन से, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में।
2: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
3: दूध, दही, छाछ, माखन और घी, ये सब एक ही परिवार के होते हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपनी कला और अपने गुणों से प्राप्त होती है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: जी हाँ, सवेरा तो हो चुका है, अंधेरा भी मिट चुका है। और यहाँ पर जैसे ही अंधेरा मिटता है, जैसे ही चारों ओर ये जो प्रकाश होता है ना, ये जो उजाला होता है, ये आपके जीवन को भी उजागर करे, ऐसी कामना हम करते हैं। और चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस पर। अभी के लिए यह है सुबह का नजराना। थोड़ी देर में आपके डेडिकेशंस हम शामिल करेंगे, आपके बर्थडे विशेज़ हम शामिल करेंगे, जिसके लिए आपके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस सवेरे से ही हमें मिल रहे हैं 4028085 पर। साथ ही आपके मैसेजेस 5251705 पर। सवेरे के 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शुक समाचार। 8:15 से हम लेकर आएंगे एक छोटा सा क्विज कॉम्पिटिशन, खेल खेले हम 8:50 पर आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को, किरण जानकी जी से। और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना ये जो प्रोग्राम है ये समाप्त हो जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार, उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी।

रत्ना। 10 बजे होगा समाचार, उसके बाद हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। भक्ति धारा इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। 11 बजे होगा समाचार, उसके बाद सैदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फर्रोज़ा। दोपहर के 12 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सौंदर्य लहरी विश्वा की प्रस्तुति में। 12:30 बजे मराठी भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे प्रीति द्वारा। दोपहर के 1 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी आरसी। 1:45 बजे गुजराती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे अमिता से। 2:30 बजे से आपकी पसंद इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करेगी उषा। 3 बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंदीदा कार्यक्रम जारी रहेगा। सवेर के 4 बजे 4 बजे मराठी भाषा में प्रोग्राम आप सुन पाएंगे शीरीष द्वारा। 5 बजे खेती बाड़ी पर आधारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फारे से। 5:15 बजे से रोशन और उषा आपका साथ देंगे अंताक्षरी इस कार्यक्रम में। 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार। 6:30 बजे हक्का भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे डेविड। 7 बजे तमिल भाषा में प्रोग्राम आप सुन पाएंगे पुवना की प्रस्तुति में। 7:30 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे राजेंद्र द्वारा। 7:50 पर मराठी भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे नितिन बापो गीत गंगा। 8:10 पर भजरे प्रभु का नाम इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे रोशनी की प्रस्तुति में। 8:40 पर अविनाश की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिल शब। 9:00 से 11:00 बजे के बीच प्रताप आपका साथ देंगे भोजपुरी तड़का इस प्रोग्राम में। 11 बजे आप सुनहरे पल इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे गिनीशा द्वारा। और रात के 12 बजे से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की, और चलिए गीत का ये जो कारवा है इसे आगे ले जाते हैं। इस खूबसूरत सफ़र में आप हमारे हम सफ़र बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।
1: और चलिए ठंड, आज मौसम थोड़ा सा अलग सा है ना, सवेरे सवेरे ठंड काफ़ी है। हमारे और तो सवेरे सवेरे हल्की बरसात हो रही थी। आप बताएं आपके यहाँ का मौसम का मिजाज कैसा है, और इस बदलते मौसम में बहुत सारे लोग जो हैं मौसमी बीमार का शिकार हो जाते हैं, सर्दी खांसी ज़ुकाम लग जाता है, तो ऐसे में आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और जहाँ तक हो सके इस ठंड के मौसम में अपने आप को बचाने की कोशिश करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। खूबसूरत गानों का जो कारवां है यहाँ पर जारी है आप सभी के मनोरंजन के लिए। और ये जो तराना है चल पड़ा है, लोफर फिल्म से लिया गया, रफ़ी साहब साथियों की आवाज़ों में। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आप सभी सुनने वालों के नाम

जी, हम तो मानते हैं कि बाहर का या आसपास का मौसम या माहौल जैसे भी हो, मन का मौसम अगर पॉजिटिव हो ना, मन के भीतर जो भी चल रहा है वो अच्छा हो, उसमें अच्छाई हो, उसमें सच्चाई हो, तो बाहर जो कुछ भी हो रहा है, बाहर के हालात हमें जो है ना ही डरा सकते हैं, बाहर के हालात ना ही हमें जो है कमज़ोर कर सकते हैं, ना ही हमें डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो बस आगे बढ़िए, डट कर जीवन में जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश करें, प्रयास करें। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सफलता उन्हीं को मिलती है जिन्हें अपने सपनों पर विश्वास होता है। तो चलिए, और सपने जो होते हैं ना, तो ये हमारे जीवन को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो चलिए, अभी के लिए गानों का ये जो कारवा है इसे आगे ले जाते हैं। और ये जो अगला तराना है, आप सभी के नाम हम करते हैं किशोरदा की आवाज़ में, अगर तुम ना होते।

जी हाँ, अगर तुम ना होते, हम तो ये कहेंगे कि अगर हमारे सुनने वाले नहीं होते तो हम यहाँ कैसे होते। आपका साथ है तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं। और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका साथ, आपका विश्वास हमें मिलता है, तभी जाकर तो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और इस सफ़र को अकेले तय करना बहुत मुश्किल था। अगर आप लोग हैं तो ये सफ़र और भी खूबसूरत और भी हसीन होता जा रहा है दिन ब दिन। और हमारा रेडियो मॉरिशस का परिवार बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है वो कैसे? पहले तो हम रेडियो के ज़रिए आप हमें सुनते थे, एक समय था जब चिट्ठियाँ लिखा करते थे, आजकल तो फ़ोन के ज़रिए आसानी से जुड़ जाते हैं, आजकल व्हाट्सएप हो गया है, फिर हमारा टिकटॉक का पेज है जहाँ पर आप, वहाँ पर भी आप हमारा साथ देते हैं। तो चलिए ऐसे ही आपका साथ हमें मिलता रहे और डेडिकेशंस का जो सिलसिला है इसे हम शुरू करते हैं। हमारे चचा अंगिरा दुबलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं बैठे और प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद चचा। कह रहे हैं यहाँ तो मैंने तभी थोड़ी देर पहले कहा था ईश्वर सवेरे सवेरे बरसात हो रही थी हल्की हल्की, उनके यहाँ पर कह रहे आज मौसम बड़ा सुहाना है। तो चलिए चचा, मौसम का मज़ा उठाइए और साथ में खूबसूरत गानों का भी, और आपका प्यार और आशीर्वाद यूँ ही बना रहे, धन्यवाद। तो अगला गाना चाचा अंगिरा गुद्दुबलाल जी आपके नाम और आपकी ओर से हमारे सभी श्रोताओं के नाम। और चलिए देखते हैं, फोन कॉल्स तो ढेर

0: सारे है ही, यहाँ पर ढेर सारे मैसेजेस भी हैं। ए फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना मीठी आवाज़, गज़ब। बहुत बहुत धन्यवाद इन खूबसूरत शब्दों के लिए। हाँ, मतलब कि सवेरे सवेरे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आप हमें लिख कर भेजते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद माला जी। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार, इतना प्यार बरसाने के लिए। शुभ सवेरा आपको भी, सभी सुमारू परिवार को भी। बस ऐसे ही साथ देते रहिए आप हमारा, और जब भी मौका मिलता है आप जुड़ते हैं हमारे सभी प्रोग्रामों से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इंदिरा लौटन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, शुभ सवेरा सभी को कह रही है, और सभी और अगला तराना सभी लौटन परिवारों के नाम हम करेंगे। कह रहे गाने, अभी जो गाना हमने चलाया, आज मौसम बड़ा बेईमान है। देवी जी कह रही है कि इस गाने को सुनते सुनते धर्मेंद्र साहब का चेहरा उनके उनको याद आ गया, उनके नज़र के सामने आ गया। चले बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन कुछ गाने तराने ऐसे होते हैं ना कि वो हमारे दिल में बसे हुए, उस गाने का हर एक सीक्वेंस, हर एक सीन हमें याद है, उसमें कौन सा एक्टर था, कौन सी एक्ट्रेस थी, किस तरह से उन्होंने क्या किया था, है ना, एनेक्ट किया था। तो कुछ गाने ऐसे हैं, तो ये जो गाना चला लोफर फिल्म का, वो तो अपने आप में आइकॉनिक है ही है। तो चलिए धन्यवाद देवी जी आपके इन खूबसूरत शब्दों के लिए और आपके साथ के लिए यहाँ पर। और आज बहुत सारे सुनने वाले लग रहा है अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो जन्मदिन की शुभकामनाओं को थोड़ी देर में हम जोड़ेंगे। यहाँ पर गुड मॉर्निंग सा एक खूबसूरत सा मैसेज आया है, लेकिन मैसेज जिन्होंने किया है, नाम उनका शायद आप साधना जी है रिवेदे क्रियोल से, तो बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी आपके भी मैसेज के लिए, धन्यवाद। और यहाँ पर अगला गाना जो है मौदालबिया की अनीता जी, आपके नाम हम करते हैं, आपकी भतीजी सागरिका, फिर दीपशिका, मामा दीपा, पापा विकास, बहन दिशा, शायद इनका जन्मदिन है लेकिन आपने ये नहीं लिखा है कि जन्मदिन है, पर जिस तरह से आपने मैसेज भेजा है हमें लग रहा है कि इनका जन्मदिन ही है। तो चलिए जिनका भी जन्मदिन है इनको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ पूरे परिवार की ओर से। थोड़ी देर में इनके नाम को हम जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये अगला तराना जो है आपके नाम हम करते हैं, और ये जो गानों का सिलसिला है इसे हम आगे ले जाते हैं इन खूबसूरत गीतों के ज़रिए। आपकी हमारी बातें तो हमेशा होती रहती हैं, फ़ोन के ज़रिए हो, मैसेज के ज़रिए हो, या हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो।
1: आँखों आँखों में बात होने दो,
2: मुझको अपनी बाहों में सोने दो
1: ना।

चलिए, बातें तो यहाँ पर हो ही रही है ना। बातों के साथ साथ कुछ बर्थडे विशेस भी इंक्लूड कर दे हमारे प्रोग्राम में। सो जितने भी लिसनर्स, जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं MBC रेडियो की पूरी टीम की ओर से। और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हो, आपके जीवन में ढेर सारा प्यार हो, जो भी कुछ आप चाहते हैं अपनी लाइफ से आपको वो सब कुछ मिले, अपनों का प्यार हो और हमेशा जीवन में साथ देने वाला हम सफ़र हो, साथी हो और आप हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और चलिए यहाँ पर जो है देखते हैं कौन कौन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेटी वीना अपना बर्थडे मना रही हैं, उनको शुभकामनाएं मामा डेजी रानी की ओर से, पॉम्पली मिसेस से। पति है मिकाइल, नेहा, केविन, सभी परिवारों की ओर से वीना जी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएँ आई हैं। सभी माता बदल परिवार और सभी कलकतिया परिवारों की ओर से हैप्पी बर्थडे आपको। सभी लखू परिवारों की ओर से भी अगला गाना जाता है भाई विजय कुमार रामयाल के नाम। मामा शिवरानी अपने बेटे राज सोनाही को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही है, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद राज जी आपके नाम पूरे परिवार की ओर से। पत्नी है आरती, साथ में है यश, हर्ष, अंजलि, सभी सोनाही परिवार और सभी लखपतिया परिवारों की ओर से हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर भतीजी सागरिका का जन्मदिन है, आपको शुभकामनाएं सागरिका जी पूरे परिवार की ओर से। यहाँ पर मामा दीपा है, पापा है विकास, बहन दिशा, खुशी भाई केश, वीर, चाचा संजीव, चाची चंदा, नाना नानी, सभी हितू परिवार, सभी गोगा परिवारों की ओर से जन्मदिन की बधाई आपको। यहाँ पर जो है आज प्यारी बहन का जन्मदिन है, अब जिनका जन्मदिन है उनका तो नाम ही नहीं लिखा गया है। आशा जानू जी जो है अपनी बहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही है, अपनी दीदी को आपको शुभकामनाएं आपकी मामा कुमारी की ओर से भी। साथ में शुभम, ऋषभ, सिस्टर आशा और हस्बैंड राज की ओर से और सभी जानू परिवारों की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। और चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कुछ और बर्थडे विशेज़ हम शामिल करते हैं यहाँ पर। पोफे फिनिक्स से हमारे साथ डेजीना जुड़ी हुई है। डेजीना यहाँ पर आपका जन्मदिन है और यहाँ पर जुनैन का भी जन्मदिन है, तो आप दोनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार की ओर से। कभी कभार होता है ऐसा है कि लोग बर्थडे विशेस तो दे देते हैं लेकिन

उनका जन्मदिन है उनका नाम ही नहीं लिखते हैं, या तो ऐसे लिखा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उनका बर्थडे है। तो चलिए कोई बात नहीं, और जितने भी सुनने वाले आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं MBC रेडियो की पूरी पूरी टीम की ओर से। और ये लवली सतराना चल पड़ा, हैप्पी बर्थडे एक बार फिर।

चलिए एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे आप सभी को जिनका भी आज जन्मदिन है, या अगर आप अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए गुड मॉर्निंग आपको, ये है अनीता जी फ्लिक ऑफ लक से हमारा साथ दे रही है, थैंक यू सो मच गानों को पसंद करने के लिए।

प्रोग्राम को पसंद करने के लिए और आपको भी हैप्पी वेडनेसडे हम कहेंगे। और यहाँ पर अगला मैसेज जो है, सभी नाइस गाने जो है आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर तुम ना होते ये गाना आपको बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच माला जी, पिचित्रित्रित से हमारा साथ दे रही हैं माला जरी जी। और अगला गाना आपके नाम हम करते हैं माला जी। खूबसूरत मैसेज के लिए, इन प्यार भरे शब्दों के लिए धन्यवाद। गाना जाता है सभी जरी परिवार के नाम इस समय हमारे साथ रेडियो। आपकी स्माइल रेडियो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने को मुझे। आप कौन हैं? आपने अपना नाम नहीं लिखा। आप अनुपमा हैं, ओके, कटरबोन से। और राइट, कुछ नया शुरू करने वाली है आप अपने लाइफ में, बिल्कुल। आपको ढेर सारे बेस्ट विशेस। आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं उसमें आपको आपको सफलता मिले, उसमें आपको प्रोग्रेस मिले, ऐसी कामना हम करते हैं कटरबोन से। सरिता जी हमारा साथ दे रही है, थैंक यू सो मच सरिता जी। सुप्रभात आपको भी, शुभ दिन आपको भी। और अगला गाना आपके नाम भी हम करते हैं यहाँ पर। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज हमारे प्यारे लवली और क्यूट श्रेय का एक साल हो रहा है, तो श्रेय को आशीर्वाद और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मामा दुषिका पापा देवीश की ओर से, बड़ी दादी विद्वंती की ओर से, दादी सीता, दादा सुधीर, शुभम, शान, शर्वेन, भावना, सुनील, पूर्णिमा, सुनीता, श्रवण, संदीप, प्रिया, दागोचिया के सभी बिहारी परिवार की ओर से, क्यूपिप के सभी सूरत परिवार की ओर से श्रेय को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल राइट, यहाँ पर चलिए जन्मदिन की शुभकामनाएं तो अभी भी आ रही है। ये एक और गुड मॉर्निंग का मैसेज आया है, लेकिन आप कौन है? आपने अपना, ओके, सी गोविंद परिवार की ओर से, तो बहुत बहुत धन्यवाद सी गोविंद परिवार आपको और आपके प्यार भरे साथ को। और चलिए इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 8 बजे के भोजपुरी समाचार की ओर। डेडिकेशंस के लिए धन्यवाद, आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस के लिए धन्यवाद। ये गाना हमें ले जाएगा 8 बजे के भोजपुरी समाचार की ओर। मिलेंगे हम आपसे सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में। हमारा साथ यूं ही देते रहे, शुक्रिया।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजीर के 8 बजे जलवाब सुना भोजपुरी में समाचार। पुराना व्यवसाय मंत्री सुदेश खालीचंद के कल रात हिरासत में लेवल कल ओकरा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के खालफजीरी मैरिटाइम सेंट्रल इंटरनेशनल कंपनी के देने से 2023 में ईंधन किने के एगो कंट्रैक्ट देवे से संबंधित सवाल के जवाब दे खातिर बुलावल कर रहल। उनका संबंधित कंपनी के कंट्रैक्ट दिए जाने के फैसले में भाग लेवे के समझल जात बा। एकर अलावा पुराना वित्त मंत्री रंगनाथन पैदयाजी के भी कल रात 8:15 बजे हाइये जाँच के मामला में गिरफ्तार करल गल। जाँचकर्ता लोग के अनुसार संदिग्ध आदमी के मोबाइल फोन्स के बारीकी से मूल्यांकन के बदौलत ई मामला में जांच में प्रगति हो सकल। ई दोनों ही पुरुष के आज बुध के दिन भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश करल जाए। दोनों ही पूर्व मंत्री लोग के प्रतिनिधित्व वकील हाउफ बुलबुल, रोशन संतोखी और नीलकंठ दलू करत हवन। ये बात उल्लेखनीय है कि मैरिटाइम एंड मर्सेंटाइल इंटरनेशनल के निदेशक कार्यालय न्यायस्वस्थ RSTC के पुराना महानिदेशक राजेश सवान सिंह के गलबरीस ई मामला के संदर्भ में गिरफ्तार कर लेवल कर रहा। टापू के प्रमुख जलाशय मोगोवाक्वा 43.9% भरल बा। वाटर रिसोर्सेज कमीशन काल प्रकाशित अपन हालिया बुलेटिन में ई बात के जानकारी दिलक। दूसर तरफ 7 जलाशय औसतन 62.8% भरल हवन से स्थिति चिंताजनक बतावल जात बा। आज बुध के दिन 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारिणी बदलता। मोगोवाक्वा के देने से जोन इलाका में पानी मुहैया करावल जाला अब से हिया पर ही दिन में 5 से 6 घंटा पानी उपलब्ध हुई। संबंधित इलाका ये प्रकार से है: वाक्वा, क्यूपिप, कैट्रोबोन, बुबासे, रोजिल, मुका, सैपिया और रिवियनो जिला के एगो हिस्सा। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक लोमेश जगू के अनुसार बहुत ही कमती पानी बरसल बा। जनवरी से मार्च महीना के बीच 48% पानी बरसल। मौसम विज्ञान केंद्र के देने से ये बात के घोषणा करल गल रहल कि जून और जुलाई के महीना में कमती हुए पानी बरसेला। आदमी लोग से पानी जान जाया नहीं करे के और जिम्मेदाराना तरीका से जल के उपयोग करे के मांग करल जात बा। गल पिछला सप्ताह के दौरान तापमान में बदलाव नोट करल गल जेकर चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शंस के मामला में बढ़ोतरी दर्ज करल गल बा। गल 8 और 14 जून के बीच स्वास्थ्य संबंधी 5,027 मामला दर्ज करल गल जबकि एकर से आगे होला हफ्ता में एकर संख्या 4,424 रहल। सैनिटरी अधिकारी लोग हई वृद्धि से चिंतित हरवन से स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा के अंतरिम निदेशक डॉक्टर फाजिल कुराबकस के मुताबिक अभी कैयन वायरस मौजूद बा जैसे कि सर्दी जुकाम, COVID-19 और पारा इन्फ्लुएंजा। सोशल नेटवर्क के देने से इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत संभावना प्रदान करा जाला। फिर भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अविनाश राव दोहल के अनुसार कुछ सामाजिक बुराई भी जुड़ल हो सकेला। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के महत्व याद दिलाते हुए मंत्री बतैलन की सोशल नेटवर्क के मदद पर हर एक तरह के विचार परी एगो जस्ती व्यापक परामर्श करे के चाहिए। एकर अलावा मंत्री ई बात के स्पष्टीकरण दिलन कि सोशल नेटवर्क पर ही मनाही के सवाल नहीं उठेला, ना ही कोनो निर्धारित उम्र के लोग पर ही पहुंच में देरी आने के। फिर भी वो प्लेटफॉर्म के कंटेंट्स के जांच करे के महत्व पर ही जोर दिलन। एकर में से कुछ ऐसन बा जिन पढ़ाई, अनुसंधान और स्कूली कार्य खातिर मूल्यवान औजार है। कल रात नवा चांद नजर आल आर आज से मुसलमान कौम के नवा इस्लामी बरिस शुरू हो गल। मुहर्रम के 10वां दिन बड़का महत्व रखेला। ये दिन करबला के वायका पेश आवेला। हजरत मोहम्मद के नवासा हजरत इमाम हुसैन के हक्या खातिन एगो अजीम कुर्बानी देवल कर रहल। ई 1448 हिजरी है। सऊदी अरब में काल पहला तारीख रहल आर ई मौका पर ही काबा शरीफ के किस्वा बदलल गल। सिरहाल यो में आयोजित इंटरनेशनल केटरिंग कप के फाइनल में हमनी के 3 मॉरिशन शेफ लोग हमनी के चौरंगा के आर ऊंचा उठावे की कोशिश में हवन सर। जी हाँ, आवत बरिस 2027 के जनवरी में

0: महीना में फ्रांस में एकर आयोजन हुई। तीन शेफ प्रवेश चौधरी, जुलियो इमानुएल गाबो और जॉन अंतोन रिकॉर्डो कातो आज उ लोग स्वदेश लौट हथुन सा रात के 8 बजे। मारागास्टर में उ लोग की ई फाइनल कैटिन क्वालिफान हो गए सा। मॉरिशस सेफ एसोसिएशन के दिने से उ लोग के आगमन पर ही उ लोग के स्वागत करा जाए। एकर अध्यक्ष माइवेन कुपेन समझाइलन की मारागास्कर और मॉरिशस इंटरनेशनल केटरिंग क्लब के अफ्रीकी सिलेक्शन के दौरान क्वालिफाई हो सकलन सा। गल 13 और 14 जून के अंतनारिवो में ई प्रतियोगिता के आयोजन हो रहा। दूसरा देश के समाचार में फ्रांस के शहर रिव्यों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच काल मंगल के दिन एक संक्षिप्त भेंट होल। ई दौरान दोनों नेता गर्मजोशी के संगे हाथ मिलैलन से फिर तनी बतैलन से भी। सूत्र के अनुसार ई मुलाकात अनौपचारिक रहल, जबकि आज देर सांझ के दोनों नेता के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित बा। फरवरी 2025 में वाशिंगटन में होल पछला बैठक के लगभग 16 महीना बाद उलोग के ई पहल का आमना सामना मुलाकात है। साउदर्न कैलिफोर्निया में लगल भीषण मोटका जंगल के आग लगातार बढ़ते जात बा, तेजी से ई फैलते जात बा। ई आग रिवरसाइड काउंटी में 2000 एकड़ से जस्ती क्षेत्र के झुलस दिले बा। अधिकारी लोग के अनुसार आग के लपटा जोन बा तेज हवा के कारण तेजी से फैलता थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग आज से दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत देश के 21 राज्य में भारी पानी, आंधी तूफान और वज्रपात के अलर्ट जारी कर लेगा। और स्पोर्ट्स की दुनिया में फ्रांस के युवा फुटबॉल खिलाड़ी किलियान एम्बापे दुनिया के नवा लेजेंड बन गल हवन। फीफा वर्ल्ड कप में उ लोग के अपन शानदार परफॉर्मेंस प्रदर्शन से सबके प्रभावित कर दिले हवन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीते के दावेदार फ्रांस अपन स्टार किलियान एम्बापे के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के दम पर ही सेनेगाल पर 3-1 के धमाकेदार जीत दर्ज कर लग। पहला हाफ के खेल में भले ही फ्रांस के खेल सेनेगाल के खिलाफ फीका नजर आवत रहा, बल्कि दूसरा हाफ में मैच पलट गल। और ये भी बता दें जा कि विश्व फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंतर्गत कुछ बखत आगे ही अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच खेला गल मैच में अर्जेंटीना अल्जीरिया के 3-0 से हरा दिलक। लियोनेल मेसी खेल के 17वां, 60वां और 76वां मिनट पर ही गोल डलन। इस तरह से वो 3 गोल बनैलन, विश्व कप के इतिहास में गोल बनावे होला सबसे हाइएस्ट स्कोर बन गल हवन। और हमें बता दें जा कि नौवे इराक के 4-1 से पराजित कर दिलक। फ्रांस सेनेगाल के 3-1 से हरा के जीत हासिल कर लक। भोजपुरी के समाचार हिंगे पर ही पूरा भल ध्यान दिला जा। बहुत ही धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

बर्नी के खबर सुना जा एस एस ओ लेन कैटरबोर्ड में 82 बरीज के कतो वैंदीजों के बीबी मरियम लाल महमूद जिनका काला मरियम भी बोला तलंजा गुजर गल हवन। उनका जनाजा आज दिन के पौने ग्यारह बजे उनकर बेटी नूरीना मोहंग के घरे एस एस ओ लेन कैटरबोर्ड से उठा के सबसे आगे नमाज जनाजा खातिन कैटरबोर्ड मस्जिद ली जा जाए जेकर बाद दफनाए खातिन अवनेता के कब्रस्तान। नंबर 13 बालगोबिनी स्ट्रीट रोजिल में 81 बरीस के कतों व एनों की बीबी आयदा फौजिया मजारा मुबारकाबी जमाल खान जिनका नमाज़ नुदिर रहल और जिनका नीला भी बोले तलंजा गुजर गल हवन। उनका जनाजा आज दिन के बारह बजे उनकर घरे नंबर 13 बालगोबिनी स्ट्रीट रोजिल से उठा के दफनाए खातिन समौते के कब्रस्तान ली जा जाए। रॉयल रोड घन पॉइंट पीमो में 85 बरिस के कतों में सैकों के श्री

0: श्री इंद्रदेव परस, श्री इंद्रदेव परस जिनका विजय तारेय भी बोला तलंजा गुजर कल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर घर ए रॉयल रोड गौन पैंतु पीमो से उठा के क्रियाक्रम खातिन गौन पैंतु पीमो की शमशान भूमि ली जा जाए। Numéro 53, Foucault Gully Cupid May. Numéro 53, Foucault Gully Cupid May. 74 baris ke 74 ans ke Shri Gautam Charitar. Shri Gautam Charitar jinkra Rajesh bhi bulatalanja. Guzar kal hawan unkar mati aaj din ke 12:15 baje. Aaj din ke 12:15 baje unkar ghare Numéro 53, Foucault Gully Cupid se utha ke kriya karam khatin 3 mamel ke samsan bhumi li jal jaye. Monseigneur Sena à les brillants Castelmais. Monseigneur Sena à les brillants Castelmais. 68 paris que 68 ans qui. श्रीमती बिस्वंती गोकुल, श्रीमती बिस्वंती गोकुल जिनकर नौ मामजिल ब्रिज मोहन रहल और जिनकरा पंडिता गोकुल भी बुलत लंजा गुजर कर हवन उनकर माटी आज दिन के 1:30 बजे उनकर पति श्री रामानंद गोकुल के घरे मौसल मौसुना आले भैया कैस्तेल से उठा के क्रियाक्रम खातिन आले भैया कैस्तेल के शमशान भूमि ले जा जाए। रुद बासे कैट्रोबोर्ड में 71 बरिस के 71 ओं के श्रीमती लक्ष्मी पर्यानन जिनका नौ मामजिल गोविंदन रहा लाल जिनका राधा भी बोले तलंजा गुजर कल हवन उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर घरे रुद बासे कैट्रोबोर्ड से उठा के क्रियाक्रम का दिन गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जा जाए। कतकारो ओकुले में 59 बरिस के 59 ओं के श्रीमती कुमारी सलोनी हरनियो जिनका नाम आमजिल बुधन रहा रावरी जिनका सलोनी भी बोला तलंजा गुजर गल हवन उनकर माटी आज भजिरे नौ बज के आधा उनकर घरे कतकारो ओकुले से उठा के क्रियाक्रम खातिन बिगाहा के शमशान भूमि ली जा जाए। मौसलमो रॉय बेलेरिवे सेशमे 79 बरिस के 79 ओं के श्रीमती तारामती मुखलाल जिनका नामजिल रामलोचन रहा लावरे जिनकरा बिंदु भी बोला तलंजा गुजर कल हवन उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर बेटा श्री धनराज मुखलाल के घरे मौसल मोहोई बिलेरी वैसेश से उठा के क्रियाक्रम का दिन लालीसी बिल्डिंग बिलेरी वैसेश की शमशान भूमि ली जा जाए। रुद रॉयल रोड बोबासे में 65 बरिस के 65 ओं के श्री हेमराज जोगू जिनकरा बाबू को थकते अभी बोले त्रलंजा आरी ऊ आगे निमेगो वेंसित डॉक्टर पिपें स्ट्रीट बुबासे रहे गुजर कल हवन उनकर माटी आज दिन के सवा बारह बजे लाशापेल औदौत एलियनसन से रुत रॉयल बुबासे से उठा के क्रियाक्रम खातिन कॉलोविये के शमशान भूमि ली जा जाए। जम्बो रोड शुमे ग्रेन्ये में ला ग्रोत के बगल में 77 बरिस के 77 ओं के श्री सत्यानंद येरिया जिनका आत्मानंद भी बोला तलंजा गुजर कल हवन उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर पत्नी श्रीमती सरस येरिया के घरे जम्बो रोड शुमे ग्रेन्ये ला ग्रोत के बगल से उठा के क्रियाक्रम खातिन कौगोपाल शुमे ग्रेन्ये की शमशान भूमि ली जा जाए। एनएचडीसी ग्रांबोआ में 74 बरिस के 74 ओं के अफरोजा लुत्फन जिनका जुबेद भी बोला तलंजा गुजर कल हवन उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर घर एनएचडीसी ग्रांबोआ से उठा के क्रियाक्रम खातिन तोबो मेबर के शमशान भूमि ली जा जाए। जितना लोग गुजर कल हवन सर उनकर परिवार के संगी उनकर दुख बांटा था ऐसा।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: चलिए यहाँ पर सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। और सेकंड आवर में एक छोटा सा क्विज होता है और हम तो बिल्कुल अपने क्वेश्चन के साथ तैयार है। उम्मीद करते हैं आप भी बिल्कुल बिल्कुल तैयार होंगे। और आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कल 16 जून को बॉलीवुड के एक पॉपुलर एक्टर का जन्मदिन था। इनका जो जन्म है 16 जून 1950 को हुआ था और फिल्मों में ये काफ़ी नाम कमा चुके हैं। आजकल भी कभी कभार हम इन्हें फिल्मों में देखते ही हैं, लेकिन बहुत कम काफ़ी रियलिटी शो में ये नज़र आते हैं, खासकर डांस रियलिटी शो में। और ये जो है, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत लेट 70s में की थी। 80 का साल इनके करियर के लिए बड़ा कमाल का था। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा भी नहीं हुआ है कि आपके जो फ़ोन कॉल्स हैं ये यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं लाइन पर कौन है और क्या जवाब है आपके पास। हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते सुमी जी।
0: नमस्ते जी। कैसी है देवी जी?
1: मैं ठीक हूँ।
0: और बताइए क्या है जवाब?
1: तो मेरा जवाब है शायद मिथुन दा जी।
0: मिथुन दा, ओके। उनकी कोई फिल्म आपने देखी है?
1: हाँ, जैसे डिस्को डांसर,
0: ओके,
1: ऐसे बहुत सारी फिल्म हैं।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं चलिए आप बिल्कुल ठीक है और थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए।
1: थैंक यू,
0: बाय, शुभ दिन आपको, बाय। चलिए देखते हैं अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हेलो, नमस्ते।
2: हेलो, नमस्ते
0: जी। कौन है?
2: मैं विद्या हूँ, गाहुजा से।
0: कैसी है विद्या जी?
2: बहुत ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ।
0: ओके, कभी हमारे जितने सुनने वाले अगर फ़ोन करते हैं ना, तो आपसे हम मांग करेंगे कि आप रेडियो सेट के वॉल्यूम को कम रखा करें और रेडियो से दूर रहा करें, ताकि आपकी आवाज़ जो है हम ठीक से सुन पाए। चलिए यहाँ पर विद्या जी, क्या है जवाब आपके पास?
2: मिथुन चक्रवर्ती।
0: मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है विद्या जी?
2: डांस।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद,
2: मुझे पसंद
0: है। ऑल राइट जी, बहुत धन्यवाद। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हेलो, नमस्ते।
3: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते भाई जी, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद, मैं हूँ धनेश्वर चौहान जवेल से।
0: जी भाई,
3: जवाब है मिथुन चक्रवर्ती।
0: ओके, कुछ जोड़ना चाहेंगे उनके बारे में?
3: वो तो एक अच्छा कलाकार
0: है। बहुत धन्यवाद जी, धनेश्वर जी, आपके इस जवाब के लिए। नमस्कार, शुभ दिन।
3: धन्यवाद।
0: चलिए, यहाँ पर वाकई में अच्छे कलाकार है वो, और अपने एक्टिंग स्किल्स के लिए तो जाने ही जाते हैं और अपने डांसिंग स्किल्स के लिए भी ये काफ़ी पॉपुलर है। और एक और कॉलर की ओर हम बढ़ेंगे, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो, नमस्ते।
4: नमस्ते सुमिता जी।
0: नमस्ते जी।
4: मैं ख्वाया से मोहन हूँ।
0: और क्या है जवाब मोहन जी आपके पास?
4: मिथुन चक्रवर्ती।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाब के लिए। कुछ जोड़ना चाहेंगे उनके बारे में?
4: एक अच्छी फिल्म थी उसकी, कसम पैदा करने वाले की।
0: ओके।
4: बहुत अच्छा फिल्म था, देखने में अच्छा लगता है।
0: ओके जी, चलिए धन्यवाद, शुभ दिन आपको, नमस्ते। और एक और कॉलर, हेलो, नमस्ते।
5: हेलो,
0: नमस्कार जी, कौन है?
5: नमस्कार,
0: कैसे है आली जी?
5: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे?
0: बिल्कुल ठीक। और बताइए क्या है जवाब?
5: मिथुन चक्रवर्ती।
0: ओके, कोई खास फिल्म या कोई खास गाना जो

0: आपको पसंद है उनका?
1: सुरक्षा
0: सुरक्षा
1: किसको जानता
0: फिल्म,
1: है।
0: फिल्म का गाना या? ओके ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद आली जी आपके जवाब के लिए, शुभ दिन कहेंगे आपको। एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते,
2: हेलो, नमस्ते,
0: कौन है जी?
2: मैं सुमति हूँ वाकुआ से। अच्छी
0: कैसी है सुमति जी?
2: हूँ, और आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक है जी। और क्या है जवाब सुमति जी?
2: ए मिथुन चक्रवर्ती,
0: ओके, और कौन सा गाना, कौन सी फिल्म आपको उनकी अच्छी लगती है?
2: जिसको डांस है
0: ओके जी, धन्यवाद, बाय, शुभ
2: जी।
0: दिन,
2: नमस्ते।
0: नमस्ते। चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ेंगे, एक आखिरी कॉल। हेलो नमस्ते,
3: हेलो सुमित जी, मैं राधा
0: कैसी है राधा जी?
3: जी। मैं अच्छी हूँ, आप ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक है। और क्या है जवाब
3: हाँ
0: आपके पास?
3: जी, जवाब है मिथुन जी,
0: ओके
3: वो काफी फिल्में हमने उनकी देखी है, वो अपने डांस के लिए बहुत मशहूर थे,
0: जी,
3: और वो सुरक्षा का वो गाना झोंका, हवा का झोंका, और एक
0: ओके
3: गाना था उनका बहुत मुझे अच्छा लगता है, प्रीतम तुम मेरे रहोगे सदा ये
0: ओके
3: वादा करो, ये सब गाने उनके काफी मशहूर हुए थे उनके जमाने में, और काफी मशहूर एक्टर थे। हाँ
0: हाँ बिल्कुल। और वो अपने
3: हाँ
0: डांस, अपने एक्टिंग के लिए तो जाने
3: हाँ
0: ही जाते
3: इसके
0: थे,
3: लिए वो
0: अपने
3: काफी
0: अंदाज
3: मशहूर
0: के
3: हुए।
0: लिए भी, अपने स्टाइल के
3: हाँ
0: लिए भी
3: हाँ
0: बड़े
3: बहुत,
0: पॉपुलर थे।
3: हाँ बहुत पॉपुलर थे।
0: चलिए बहुत धन्यवाद
3: धन्यवाद
0: राधा जी आपके जवाब
3: आपको
0: के
3: भी, और
0: लिए,
3: शुभ दिन।
0: शुभ दिन। और
3: हाँ
0: चलिए यहाँ पर काफ़ी मैसेजेस जो है, काफ़ी जवाब जो है मैसेजेस के ज़रिए भी आए हैं यहाँ पर। खटरबोन से सरिता जी लिखती है, मेरा जवाब है मिथुन चक्रवर्ती। बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब है मिथुन चक्रवर्ती, और उनका गाना जो आपको पसंद है माला जी, वो है जिहाले मिस्किन। ओके ठीक है। और यहाँ पर अजय देवगन, नहीं, अजय देवगन नहीं, इंदिरा जी धन्यवाद पर आपने पार्टिसिपेट किया। ट्रियोलिसिस शिमला, शिमला जी हमारा साथ दे रही है, और आंसर इज मिथुन चक्रवर्ती। चलिए सभी के सभी लगभग कॉलर्स ने, और जितने भी मैसेजेस आए लगभग सिवाय एक के, सभी ने सही जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए। ऐसे एक छोटा सा बस क्विज होता है, इसी के बहाने आप लोगों से बात भी हो जाती है लाइव ऑन एयर, और आप इतने प्यार से साथ देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और बिल्कुल कल मिथुन चक्रवर्ती जी का जन्मदिन था। 350 से भी ज़्यादा फिल्में इन्होंने की हैं, 5 दशक से भी ज़्यादा फैले अपने करियर में, हिंदी के साथ साथ बंगाली और अन्य भारतीय भाषाओं में, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी भाषाओं में जो है इन्होंने फिल्में की हैं। काफ़ी फिल्म फेयर अवार्ड्स, काफ़ी नेशनल अवार्ड्स, इनकी पहली फिल्म मृग्या थी, और पहले ही फिल्म के लिए जो है इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। इन्हें 3 नेशनल अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। 2024 में भारत सरकार की से इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, साथ ही साहेब फाल्के अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ है, और अन्य कई बड़े अवार्ड्स इन्हें मिले हैं। और आज भी कभी कभार हमें इन्हें कहीं ना कहीं किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर, किसी रियलिटी शो में कहीं ना कहीं देखने का मौका ज़रूर मिल ही जाता है। तो चलिए इस अगले तराने के साथ आप सभी का धन्यवाद हम करते हैं, और ये गाना आप सभी के नाम करते हैं।

0: सुबह का नजराना रेडियो मोविशस।
1: यकीनन यादों में बसे हैं ये सारे गाने, है ना। हमें याद है, हम छोटे थे इन गानों को सुना करते थे और इन गानों को एंजॉय करते थे, और आज बड़े होकर हमें इन गानों को रेडियो पर चलाने का मौका मिल रहा है, तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। और पहले तो बस टेलीविज़न पर हम फिल्में देखा करते थे, आजकल तो इतने सारे ज़रिए हो गए हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हो गए, जहाँ पर हम इन गानों से कितने आसानी से जुड़ सकते हैं, कितनी आसानी से पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: और चलिए, यहाँ पर 8:50 हो चुके हैं और हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को आइए हम सुनते हैं किरण जानकी जी से। अब
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने सोलिचुत के जन शक्कर प्रतिष्ठान बा ओकर पर बतियाब जा, और ये शक्कर प्रतिष्ठान पर हमने के जो जानकारी आज बांटे होला हमने हैसा, ये जानकारी हमने के

सुलिचित शकर प्रतिष्ठान के जन कल्चरल हेरिटेज कोऑर्डिनेटर हवन जेरेमी दे जेसी उनकर से प्राप्त होलबा। जेरेमी दे जेसी बोलत हवन कि ई जोन जोन इंडस्ट्रियल सोलिट्यूड में आज आप देखत हवा, यहाँ पर आगे के समय में एगो शकर प्रतिष्ठान रहल जोन 18वीं सदी तक चलल और ई इलाका के छोटा छोटा मूला के सहयोग से यहाँ के मूला सौथालीजे होल सोलिट्यूड के मूला में देश के उत्तर पश्चिम इलाका में जोन की ऊ आज बहुत मशहूर है। खास तौर पर यहाँ के जोन झील जोन बासें बाबागल में जेके बासें मेवे बोलल जला, भोजपुरी में मेनवार बासें, तो उ वजह से ई इलाका और भी ज़्यादा प्रचलित है और ई गांव के गतिविधि ई मूला के इर्द गिर्द ही आगे के ज़माना में चलत रहल। सोलिचित के चीनी मिल फिर बोपलों में सौथालीजे होल और लगभग 1986 में ई बंद हो गल। ई एगो बहुत मशहूर और लोकप्रिय जगह रहल जहाँ पर सब निवासी लोग ई जगह के पसंद करत रहलन सा। यहाँ सोलिचित के निवासी लोग 1972 में मॉरिशस में महारानी एलिजाबेथ के औपचारिक दौरा के बखत स्वागत भी उनकर कर ले हवन जा और ई जगह ई तरह से एगो कीमती ऐतिहासिक जगह के संरक्षण और ओकर याद संजो के रख लेबा। हर चीनी कोठी के तरह ई जगह भी पूर्ण रूप से कार्यरत रहल, मतलब कि निवासी लोग अपन पैदावार स्वयं करत रहलन सा, जैसे कि सब्जी धान चीनी और एकर अपन खुद के एगो स्कूल और अस्पताल भी रहल जोन काफी बड़ा रहल। अपन समय खातिर हियाँ के जोन अस्पताल बा ओकर में सब औजार सब इक्विपमेंट रहल। उस समय हर चीनी कोठी में एगो डिस्पेंसरी रहत रहल, लेकिन हियाँ एगो बड़ा अस्पताल रहल, बहुत अच्छा से हियाँ पर इक्विपमेंट के रखल गल रहल जहाँ पर आपके इलाज बहुत सुनियोजित रूप से चलत रहल और सब मूला में घर रहे जहाँ पर मजदूर लोग रहत रहलन सा, जहाँ पर उ लोग काम करत रहलन सा और जहाँ पर उ लोग के मालिक रहत रहल। तो हियाँ पर भी ऐसन ही व्यवस्था रहल, जहाँ पर ढाका उ जगह रहल जहाँ पर सब मजदूर लोग रहत रहलन सा और फिर यहाँ के शक्कर मालिक के अलग से ओकर घर रहल और ई बात के ख्याल रखल जात रहल कि ई मूला और ई मूर ई जोन मूला बा ओकर से जुड़ल जोन खेत बा जोन तबिस्मा बा ओकर में काम अच्छा से चली। ई कार्यक्रम के हमने काल आगे बढ़ावा जा। अभी का तेरे इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।

0: चलिए किरण जानकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी धरोहर इस कार्यक्रम के लिए, और धन्यवाद हमारे सभी प्यारे श्रोताओं का भी, हमारे सभी लिसनर्स का जो रेडियो मॉरिशस पर सुबह हो या शाम, दिन हो या रात हो, हमेशा जुड़ते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं, और इतना प्यार आपका मिलता है, इसके लिए धन्यवाद। और जाते जाते ये अंतिम खूबसूरत सा भोजपुरी गीत आप सभी के नाम हम करते हैं, और इसी के साथ सुबह का नजराना, ये जो प्रोग्राम है इसका समय समाप्त हो जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार, उसके बाद आप सुन पाएंगे आज की चर्चा इस कार्यक्रम को रत्ना की प्रस्तुति में। और इस कार्यक्रम को आपको याद दिला दें, इसका सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर, साथ ही इसे आप देख पाएंगे रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमारी ओर से धन्यवाद, शुभ दिन आप सभी को, हम आपसे दोबारा मिलेंगे 10 बजे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। बुधवार 17 जून और समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है रजनी जी। नमस्ते रजनी जी।
2: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचंद को कल रात हिरासत में लिया गया। उससे फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को कल सुबह मार्जाम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 2023 में ईंधन खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने

0: संबंधित कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के फैसले में भाग लिए होंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री पुराने वित्त मंत्री रंगानाथन पादयाची को भी कल रात 8:15 बजे इसी जांच के मामले में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ही पुरुषों को आज बुधवार के दिन भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश किया जाएगा। ये भी बता दें कि दोनों ही पूर्व मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन के अस्थायी आरोप लगाए गए हैं। ये बात उल्लेखनीय है कि मैरिटाइम एंड मर्सेंटाइल इंटरनेशनल की निदेशिका कारिना नियसिस तथा एसटीसी के पूर्व महानिदेशक राजीव सवान सिंह को पिछले साल इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। टापू का प्रमुख जलाशय महोबा का 43.9% भरा है। वाटर रिसोर्सेज कमीशन ने कल प्रकाशित अपने हालिया बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी। दूसरी तरफ 7 जलाशय औसतन 62.8% भरे हुए हैं। स्थिति चिंताजनक बताई जाती है और आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारिणी बदल रही है। महोबाकवा की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है अब से यहाँ पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध। इस तरह संबंधित इलाके वाक्वा, क्यूपिप, कैटरबोन, बोबासेन, रोजिल, मोका, सैंपियर और रिवियनो जिले के एक भाग हैं। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक लोमे सजगु ने लोगों से पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पिछले सप्ताहों के दौरान तापमान में बदलाव नोट किए गए हैं, जिसके चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और कल रात नया चांद नजर आया है। आज से मुसलमान कौम का नया इस्लामी साल शुरू हो गया। मुहर्रम का 10वां दिन सबसे अहमियत रखता है। विदेशी समाचारों की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के शहर रिवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात हुई कल। इस दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और सूत्रों के अनुसार मुलाकात अनौपचारिक रही, फिर भी आज देर शाम दोनों नेताओं के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बैठक निर्धारित है। और स्पोर्ट्स न्यूज़, फ्रांस के युवा फुटबॉल खिलाड़ी किलियान एम्बापे बने दुनिया का नया लेजेंड। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने शानदार परफॉर्मेंस प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के दावेदार फ्रांस ने अपने स्टार किलियान एम्बापे के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के दम से सेनेगाल पर 3-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। और ये भी बता दें कि विश्व फुटबॉल कप के अंतर्गत कुछ समय पहले अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच खेले गए मैच में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने खेल के 70वें, 60वें और 76वें मिनट पर गोल डाला। इस तरह उन्होंने 3 गोल बनाए, विश्व कप के इतिहास में गोल बनाने वाले सबसे हाईएस्ट स्कोर बन गए। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और एमबीसी 3 पर यानी एमबीसी 3 पर साथ ही साथ फेसबुक पेज पर फॉलो करने वाले हमारे सभी दर्शकों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। बुधवार का दिन है 17 जून आज की तारीख और इस एक घंटे के सफर में हम जुड़े हैं आपका साथ देने के लिए। मैं हूं रत्ना, सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। और अभी से लेकर बिल्कुल आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो बस 21 जून को मनाया जाएगा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और योग आज के समय में बहुत ही आवश्यक बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे सेहत को लेकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जहां योग एक ऐसी पद्धति जो कई वर्षों से, ये हम कह सकते हैं कि भारतीय पद्धति, भारतीय प्राचीन पद्धति है, जो आज भी लोग अपनाते हैं। और इसी के साथ अपने आप को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए, इस पर बहुत सारी चर्चाएं आए दिन हम करते रहते हैं। और आजकल देखा गया है कि कई सारे संस्थाओं में योग भाई उसकी जो कार्यशालाएं हैं लगाई जाती है, जिससे कि हम अवगत करा सके लोगों को।

0: कि किस प्रकार से हम अपनी जीवन शैली को एक ऐसी प्राचीन पद्धति में ढाल सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। आपको बताते चले, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में टीचर ऑफ इंडियन कल्चर एंड योगा पर मिस तानिया गुप्ता यहाँ पर मॉरिशस आई हुई हैं और कई महीनों से वे यहाँ पर हैं, तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इन्हें आज के इस मंच पर उनको हम आमंत्रित कर सके। आइए उनका स्वागत करते हैं। तानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, नमस्ते एवरीवन।
0: और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल योग पर हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाएगा, इस पर। तो पहले तो मेरा यही सवाल होगा कि योग का अर्थ क्या है, यानी सिर्फ योगासन करना ही योग कहलाया जा सकता है?
1: नहीं, तो इसकी स्टार्टिंग, मैं इसकी शुरुआत भगवद गीता के एक श्लोक से करना चाहूँगी जो हमारे चैप्टर नंबर 2 में है
0: जी,
1: जिसमें कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, जिसका अर्थ है कि जीवन को एक समन्वय बैलेंस्ड में जीना ही योग है। सिर्फ आसन ही योग नहीं है, योग का मतलब है, अर्थ है जुड़ना, अपने शरीर को, मन को, आत्मा को, तीनों को एक साथ जुड़ना। जैसे हम कहते हैं माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, उसी तरीके से आसन से कहीं ऊपर है योग। अगर एक सिंगल शब्द में उसका मतलब बताया जाए तो यूनियन, जुड़ना इज योग।
0: बिल्कुल, जैसे योग का ऑपोजिट होता है वियोग, और ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि योग का मतलब है
1: एग्जैक्टली संयोग होना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं तो हमारे श्रोताओं को हम जरूर बताना चाहेंगे कि ये दिवस क्यों मनाने जाने वाले, मतलब ये क्यों शुरुआत क्यों की गई इसकी, और ये कब से इसकी शुरुआत हुई है?
1: इसकी शुरुआत जागरूकता फैलाने के लिए ही हुई है। योग आज से नहीं है, 5000 साल पहले से योगी योग करते आए हैं
0: जी।
1: लेकिन इसको मैनकाइंड को देने के लिए कि हर साधारण व्यक्ति अपने जीवन में योग कर पाए, सब कर पाए, इसीलिए योग की शुरुआत हुई। इसीलिए स्पेशली एक दिन बनाया गया 21 जून, जिसे हम लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी बोलते हैं। उस वजह से 21 जून को चूज़ किया गया, और इसका सबसे पहला योग दिवस 21 जून 2015 से शुरू हुआ था। तो ये 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योग।
0: बिल्कुल, और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी इस साल का थीम क्या है?
1: इस साल का थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। तो क्यों हेल्दी एजिंग? क्योंकि हमें लगता है योग सब नहीं कर सकते, तो उस के ऑब्वियसली उम्र एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ती है, तो बढ़ती उम्र के साथ हमें प्रिवेंशन चाहिए होता है, तो हम खुद को बीमारियों से बचा पाएँ, और सिर्फ बीमारियां ही नहीं जीवन में संतुलन ला पाएँ। इसीलिए हम इस बार का ये थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, के जो लोग की जो उम्र बढ़ रही है वो हेल्दी तरीके से बढ़े।
0: मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप बीमार पड़े तब योग शुरू करें, उससे पहले से आप शुरू करें ताकि फिर आप कभी बीमारी ना पड़े। बिल्कुल, तो हमें मन में ये याद रखना है कि हेल्दी लिविंग के लिए, यानी बस आजीवन आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसीलिए योग करना आज ही से शुरू करें। और बिल्कुल स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, योग इसे कैसे हासिल करने में हमारी सहायता कर सकता है?
1: तो अगर हम आसन से शुरू करें तो वो आपके शरीर को मजबूत बनाता है, लचीला बनाता है। फिर अगर हम प्राणायाम और ध्यान की तरफ जाएं तो वो आपको संतुलन में रखने के लिए हेल्प करता है, एक बैलेंस्ड जीवन के लिए। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, वो शांत रहता है, तो आप स्ट्रेस की तरफ कम जाते हैं। तो इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं, तो आपके खुशहाल जीवन के लिए हम कह सकते हैं कि योग बहुत ज़रूरी है।
0: और जैसे हम आजकल कहा गया है कि जीवन आधुनिकता की ओर बढ़ता जा रहा है, हम मॉडर्न बनते जा रहे हैं, और मॉडर्न जीवन के साथ भाग दौड़, तो मतलब सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, जब तक आप रात को ना सोएं तब तक भाग दौड़ लगी रहती है। तो ऐसे भाग दौड़ भरे जीवन में योग क्यों आवश्यक है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि लोगों को ऐसा लगता है कि बीमार पड़ेंगे तब योगा शुरू करेंगे, पर आज के आधुनिक जीवन में हमें योग करना क्यों आवश्यक है?
1: तो अगर आप आजकल देखेंगे तो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है।
0: बिल्कुल,
1: मतलब स्पेशली कोविड के बाद हम स्क्रीन टाइम, हमारा बिजी लाइफस्टाइल के हम सिर्फ भाग दौड़ कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं भागने के लिए, हम वापस आते हैं अगले दिन भागने के लिए, राइट? तो जो स्क्रीन टाइम, जो बिजी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो बढ़ा है, उससे क्या है, लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप से बीमार हो तभी योग करें, पर क्योंकि आजकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हमें बीमारियां पहले हो रही हैं, तो इसीलिए हम योग को एक सो

0: वो ये एक अलीट साइंस है, एक ऑल्टरनेट थेरेपी है कि अगर आपको दवाइयों से भी बचना है तो आप योग करिए, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा हमें अलग अलग तरीक़ों से हेल्प करता है। और इसमें हमारे पास योग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी करेगी। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैं तो आप चेयर योग करिए, उसी टाइम पे चेयर ब्रेक लीजिए 5 मिनट का, हर 15 मिनट में 5-5 मिनट का ब्रेक लेके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मैं समझती हूँ जैसे आप बता रहे हो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और ये एक मोड ऑफ लाइफ बन चुका है, मतलब इससे हम निकल नहीं पाएंगे और ये बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे आप बता रहे हो एक ज़माना था जब योग करना, मतलब हम देखते थे कि लोग खड़े रहकर योग करते थे, और आजकल देखा गया है मोड ऑफ लिविंग के अनुसार योग की पद्धतियों में भी बदलाव आया है। तो जैसे तानिया जी बता रही हैं कि चेयर योगा भी, और मैंने देखा है कई सारे लोग चेयर सूर्य नमस्कार, यानी बैठे बैठे आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि भाई घुटने नहीं मुड़ते, कमर में मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर ये भी संभव है अगर आप करना चाहें तो। और डेफिनेटली जो लोग सच में जीवन हेल्दी तरीके से बिताना चाहते हैं तो एक कदम तो उठाना पड़ेगा। चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में आज की चर्चा कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और आज हमारे साथ मिस तानिया गुप्ता जो भारत से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और फिलहाल के लिए इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में वे अपने क्लासेस देती हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और बिल्कुल जब हम भाग दौड़ की बात करते हैं और योग की बात करते हैं, लोगों को लगता है योग करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई योग में हमें सिर्फ आँखें बंद करके घंटों आंखें बंद करके मेडिटेशन करना है या फिर सर के बल खड़े हो जाना है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। योग हर कोई कर सकता है, और यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी तानिया जी से कि रोज़ योग करने से हमारे किन किन अंगों को, किन किन शरीर के भागों को हमें फ़ायदा पहुँच सकता है?
2: तो योग करने से कोई एक स्पेसिफिक अंग पे नहीं, पूरे शरीर पे काम करता है योग, क्योंकि हम रूट कॉज से काम करते हैं। तो हार्ट, लंग्स, लीवर, आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पूरे पे काम करता है। बस इतना फ़र्क होता है कि कुछ कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम के इस व्यक्ति को करनी है या नहीं करनी, कि उनको क्या बीमारी
1: रही, एग्जैक्टली
2: क्या उनके लिमिटेशंस हैं। तो योग का ना कोई ड्रॉबैक नहीं है, हम हमेशा योग में कहते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं पर कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बेनिफिट्स तो हैं ही, वो तो बाय बेनिफिट हैं, लेकिन कोई भी हमारा ऐसे डिसएडवांटेज नहीं है। तो योग करने से आपके पूरे शरीर पर असर पड़ता है, कोई एक स्पेसिफिक अंग है ही नहीं, क्योंकि अगर आप बैठ के, अगर मैं खड़ी हूँ मान लीजिए और मैंने सिर्फ हाथ भी खींचे ऊपर की तरफ, तो हमारी मसल स्ट्रेच हुई, उसी के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा, तो मेरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मेरा मस्कुलोस्केलेटल दोनों ने काम किया, और क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, शरीर को अच्छा लगा, तो ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम को बेटर हुआ। तो कोई एक
1: इंटरकनेक्टेड
2: है, एग्जैक्टली
1: इंटरकनेक्टेड है। और जैसे आजकल तो मतलब देखा गया है आम जनता को, बहुत सारे लोगों में से एक आपने देखा होगा पीठ दर्द रहना, सर दर्द रहना, गर्दन दर्द रहना और पैरों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, ऐसी समस्याओं में भी योग कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि भाई घुटने में दर्द है तो योगा नहीं कर सकते या पीठ में दर्द है तो योगा नहीं कर सकते, तो इस पर आप थोड़ा सा बताएं।
2: नहीं, हम सब में कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए पीठ दर्द है, मतलब ऐसे में कुछ दो आसन, जैसे आपने पीठ दर्द है तो आपने मकर आसन किया, भुजंग आसन कर लिया, आपको यहीं पे अगर डायबिटीज़ है
1: जी,
2: ठीक है, तो हमें हमारा जो कटी भाग है, जो हमारा ये कमर का भाग है, उसको प्रॉपर ट्विस्ट करना होता है, तो आपने वक्रासन कर लिया, अर्धमत्स्येन्द्रासन कर लिया। यहीं आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो सबका फेवरेट आसन शवासन कर लिया
1: जी।
2: पर शवासन हमें लगता है सबसे आसान आसन है, वो सबसे मुश्किल आसन है
1: शवासन करना
2: जी, क्योंकि हमें लगता है शवासन में लेटना है और सोना है। नहीं, शवासन एक ऐसा आसन है जहाँ आपको शव की तरह सिर्फ एक्ट करना है, बस आपको जागरूक रहना है कि हो क्या रहा है, बस सिर्फ एक्टिंग करनी है आपके शव के साथ कि उसको आपको हिलाना नहीं है, ठीक है। अब ऐसे हर एक लिमिटेशन के लिए हमारे पास आसन है, वरना प्राणायाम है। तो हम योग में, हम प्रैक्टिसेस में चेंज ले आते हैं व्यक्ति की स्थिति के हिसाब से।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जहाँ पर आप, चलिए शारीरिक हमारे जो पेन्स हैं उसके बारे में तो हमने बताया, लेकिन आजकल देखा गया है तनाव, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जैसी मानसिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या श्वासों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा भी हमारे इन सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है?
2: जी बिल्कुल, क्योंकि योग क्या होता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन पे काम करता है, और वो क्योंकि हमारे स्ट्रेस हार्मोन पे काम करता है तो उसी के साथ साथ वो रिलैक्सेशन को बढ़ाता है। अब क्यों, स्ट्रेस में क्या होता है, आसन शायद एकदम से वर्क नहीं करेगा, लेकिन प्राणायाम और ध्यान

0: अनुलोम विलोम जिसे हम बोलते हैं वो, और डेली सिर्फ 10 मिनट का ध्यान ब्रीदिंग पे, वो हेल्प करता है. स्लो प्रोसेस है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. एग्जैक्टली, एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट है उसका.
1: तो क्योंकि मैं समझती हूँ आजकल लोगों को तुरंत असर दिखने के लिए, मतलब हम कहते हैं ना कि भाई जैसे गोली ली आधे घंटे में आपको रिलीफ होना चाहिए, पर योग ऐसा नहीं है. मैं समझती हूँ योग में धीरे धीरे चलता है पर लॉन्ग टाइम,
0: लॉन्ग टाइम, एंड वो रूट से काम करता है. फिर आपको दोबारा वो नहीं होता.
1: यानी एक तरह से देखा जाए तो धैर्य रखना
0: जी
1: बहुत आवश्यक है, पेशेंस रखना. और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आजकल हम पेशेंस बहुत लैक हो रहा है. और मैं समझती हूँ कि जब योग करते हैं तो ये पेशेंस जो है हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में बहुत सहायता मिलती है.
0: बिल्कुल, क्योंकि बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. अगर आप कोई भी आसन कर रहे हैं, अब उस आसन में आपको आज लगा कि आप 5 सेकंड रुक पाते हैं, कल आप 10 सेकंड रुकेंगे, तो वो पेशेंस ही हुआ.
1: सही,
0: आज 5 से कल 10,
1: टॉलरेंस बढ़ गया.
0: हाँ, कल 10 से 15, तो वो ऑटोमेटिकली आपके फिजिकल, मेंटल, मानसिक, शारीरिक दोनों पे काम करता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और जब हम उम्र की बात करते हैं दानिया जी, मैं जरूर जानना चाहूंगी जैसे बच्चों में किस उम्र से किस उम्र तक वो लोग शुरू कर सकते हैं, और बुजुर्गों में, मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई हम तो 50 क्रॉस कर चुके हैं या हम 80 के हो चुके हैं, अब हमसे योगा नहीं होगा, ये सारा कुछ हम नहीं कर सकते, तो ये इस पर भी आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके हमें बताएं.
0: मेरे पास सेंटर में 5 साल से बच्चे आते हैं. हम शुरुआत 3 या 4 साल से कर सकते हैं, पर वो बेसिक मूवमेंट्स से
1: जी.
0: क्योंकि बच्चा फ्लेक्सिबल होता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: ठीक है, तो उसके लिए आसान है अडाप्ट करना, लेकिन आराम से आप 3 नहीं तो 5 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं. और बुजुर्ग में मैं तो कहूँगी मेरे पास काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन आते हैं, तो कोई एज नहीं है और कोई एज बार नहीं है. हम जब कहते हैं योगा इज़ फॉर एवरीवन एवरी एज, इसीलिए हमारा इस साल का थीम भी योगा फॉर हेल्दी एजिंग है. हमने सीनियर सिटीजन्स एल्डरलीज को अपने दिमाग में रखते हुए ये जो है थीम निकाली गई. तो ऐसा नहीं है आप हर उम्र पे योग कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, बस शुरुआत करना जरूरी है.
1: एटलीस्ट शुरू करें. बिल्कुल. और मैं पूछना चाहूंगी तान्या जी, जैसे बच्चों में कैसे होता है कि उनका मन बड़ा चंचल होता है, वो एक जगह पर बैठे नहीं रह सकते, और बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत रैपिड मूवमेंट नहीं कर सकते, तो क्या दोनों में जो योग सिखाने की जो पद्धतियाँ हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं?
0: हाँ, मतलब हमारा जो टीचिंग स्टाइल है ना वो बदल जाता है. कि अगर हमें यहाँ लग रहा है कि हमें सीनियर सिटीजन्स को कराना है, तो हमारा टारगेट होता है उनकी जॉइंट मूवमेंट्स.
1: बिल्कुल
0: ठीक है.
1: सही.
0: क्योंकि सबसे पहला असर डीजेनरेशन ऑफ बोन्स होता है उम्र के साथ, तो वहाँ पे हम टारगेट करते हैं. बच्चों के में हमारा होता है उनकी एनर्जी चैनलाइज करना. ठीक है, तो हम उनको ज़्यादा रैपिड मूवमेंट्स कराते हैं. ठीक है, थोड़ा एंथुजियाज्म और जील के साथ कि वो थोड़ा थकें, उनकी एनर्जी चैनलाइज हो अच्छी जगह पे. तो योग की प्रैक्टिसेस वही रहती हैं, बस कराने का तरीका बदल जाता है.
1: मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही ढंग से योगा आप सभी को सिखाएं, अलग अलग लोगों में. जैसे अगर हम गर्भवती महिला की बात करें तो उसमें भी उनको जो पोस्चर्स सिखाए जाते हैं वो नॉर्मल जो होते हैं वो पोस्चर्स नहीं होते, उनके अनुसार उनको टेलर किया जाता है उनके पोस्चर्स.
0: उनके तो प्लासेंटा पोजिशन पर डिपेंड करता है क्या है, उस हिसाब से उनके लिए पूरा का पूरा एक प्रोग्राम टेलर किया जाता है कि नहीं आप ट्रेमेस्टर 2 में ये ट्रेमेस्टर 3 में ये करेंगे, तो वो अलग रहता है. बिल्कुल अलग रहता है.
1: यानी ये भी हम कह सकते हैं कि गर्भवती महिला 9 के 9 महीने योगा कर सकती है. क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं प्रेगनेंसी में हम योगा नहीं कर
0: सकते.
1: बिल्कुल. तो जैसे ये भी माना गया है कि बहुत ही हेल्दी होता है योग करना. और जब हम योग की बात करते हैं तो योग केवल आसन, जैसे तान्या जी ने बताया, केवल योग हमारे शरीर से डील नहीं करता, हमारे मन से डील करता है, हमारे इमोशन से डील करता है. और बेशक मैं जरूर जानना चाहूंगी जब हम योग करते हैं तो उसका सही समय कौन सा होता है, और क्या खाली पेट योगा करना आवश्यक है? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि खाना खाने के बाद भी योग किया जा सकता है.
0: नहीं, तो खाना खाने के बाद एक ही आसन है जो हम कर सकते हैं, वज्रासन. पर कोशिश ये रहती है कि हम योग का सबसे सही समय टेक्स्ट के अनुसार तो ब्रह्म मुहूर्त है, जिसे

0: पर कोशिश ये रहती है कि हम योग का सबसे सही समय टेक्स्ट के अनुसार तो ब्रह्म मुहूर्त है, जिसे हम
1: सुबह
0: सुबह सूरज की पहली किरण पे आप शुरू करें, पर ज़रूरी नहीं है क्योंकि बिजी लाइफस्टाइल है। पर आप कोशिश करें सुबह, अगर नहीं होता तो खाने से 2 या 3 घंटे पहले, खाने से 2 या 3 घंटे पहले या 3 या 4 घंटे बाद।
1: यानी डाइजेशन सिस्टम
0: एक
1: को अफेक्ट वो
0: हाँ,
1: नहीं करना
0: क्योंकि
1: है।
0: हम अगर उस टाइम पे करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाता
1: सही
0: है
1: बात।
0: कि न्यूट्रिएंट्स एब्स्ट्रैक्ट करने हैं नहीं करने हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम खाली पेट सुबह ही करें, पर अगर नहीं समय मिलता तो आप शाम में खाना जब अपने दिन में लंच किया है उसके 4 घंटे बाद इवनिंग टाइम पे भी कर सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं। और जब हम आजकल देखा गया सूर्य नमस्कार, सभी लोग सूर्य नमस्कार के
0: जी
1: फायदों के बारे में बात करते हैं, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी इसके फायदे क्या क्या हैं, और क्या इसे मतलब दिन में कौन से समय पर ये, जैसे आपने बताया फिलहाल तो मुझे इसका जवाब मिल ही गया है कि
0: सूर्य
1: सुबह के समय या तो
0: जी
1: फिर शाम के समय, संध्या के समय करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, पर इसके फायदे क्या क्या हैं?
0: तो सूर्य नमस्कार के फायदे पूरे शरीर पे हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रैक्टिस है, अगर आपको और कुछ करने का समय ना मिले तो आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 6 राउंड सुबह सूर्य नमस्कार कर लें। उसका नाम ही अपने आप में सूर्य नमस्कार है कि हम सूर्य को नमन
1: बिल्कुल
0: कर रहे हैं। तो इसका 90 हम कहते हैं हमारे 97% ऑफ द बॉडी पे ये काम करता है,
1: ओके
0: क्योंकि 12 स्टेप हैं, 7 आसन हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, हम इसमें स्टैंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, पेट के बल लेटना, ठीक है, पूरा का पूरा इन्वर्टेड होना, शरीर को अंदर की तरफ लेके जाना, सब इंक्लूडेड है। तो इस 12 स्टेप में पूरी बॉडी की जो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है। और ये अकेली ऐसी प्रैक्टिस है जो हम कहते हैं जिसमें 95 to 97% ऑफ द मसल्स यूज होती ही होती हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इसके 4 से 6 राउंड बहुत फायदेमंद है। आप कुछ और नहीं कर पा रहे तो मैं हमेशा हमारे मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लीजिए, शुरुआत 4 से 6 राउंड से कीजिए, फिर हर रोज
1: धीरे
0: दो दो
1: धीरे
0: दो दो दो
1: बढ़ाएं।
0: दो बढ़ाइए। एग्जैक्ट
1: तो ये एक तरह से फिर मैंने सुना है कि ये ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करने में ये बहुत ही फायदेकारक होता है, क्या ये सही है?
0: जी बिल्कुल सही है। ये बस इतना होता है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप हमेशा गाइडेंस के अंदर शुरू कीजिए।
1: जी
0: तो आपको शुरू में ही बता दिया जाता है आपको ये वाला स्टेप इतना ही करना है या ये नहीं करना, तो उस हिसाब से हम मॉड्यूल कर लेते हैं उसको।
1: बिल्कुल। और जैसे तानिया जी बता रही हैं कि बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉलो करना है, गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और योग भी एक ऐसी पद्धति है अगर आप एक टीचर के साथ मिलकर करते हैं या एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कौन सा आसन, अगर आपकी शरीर में कोई कहीं पर दर्द है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या कोई ऐसी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो कौन से आसन आपके लिए सर्वोत्तम है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए लेते हैं एक गीत का ब्रेक। वैसे हम आपको बताते चले, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग मिल रहा है कादेया जी का, जो इस वक्त तकनीक पर हमारा साथ दे रहे हैं। प्रोडक्शन असिस्टेंट हमारी उरुसा बानो हमारे साथ है और प्रोड्यूसर शीतल लोबिन हमारे साथ है। तो बस साथ देते रहिएगा, एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में।

0: आज की चर्चा।
1: जी हाँ, जहाँ पर हम योग से हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, साथ ही साथ हमारे सांसों पर, हमारी ब्रीदिंग्स पर नियंत्रण रखना भी उतना ही आवश्यक है। कई सारे लोग कहते हैं कि किस तरह से ये सीखा जाता है, इसी को हम प्राणायाम कहते हैं। आइए लेकिन इसको डिटेल में और समझते हैं तानिया जी से। तानिया जी, यहाँ पर प्राणायाम ये शब्द हमने बहुत बार सुना होगा, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा इस पर एलैबोरेट करें।
2: तो प्राणायाम, जिसे हम नॉर्मल समझते हैं ब्रीदिंग करना, प्राणायाम क्या है? अगर इसको दो वर्ड्स में आप डिवाइड करें तो प्राणों को आयाम देना।
1: हाँ हाँ,
2: ठीक है। प्राण क्या है? हमारे शरीर के अंदर की वाइटल एनर्जी, जो श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वही प्राण है।
1: बिल्कुल।
2: आयाम होता है कंट्रोल करना। तो जब आप इस ब्रीदिंग को कंट्रोल करने लग जाते हैं, ठीक है, उसको प्राणायाम बोलते हैं।
1: ओके।
2: यौगिक भाषा में हम इसे कुंभक बोलते हैं।
1: बिल्कुल।
2: कुंभक हुआ कि जहाँ आपने श्वास को रोका, क्योंकि सांस लेना छोड़ना तो आप पूरे दिन कर ही रहे हैं, वो तो नेचुरल प्रोसेस है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का।
1: जी।
2: लेकिन जब आप इसको रोकना शुरू कर दें और एफर्टलेसली रोकना शुरू कर दें, कि जहाँ आपको रोकने में ऐसे ना लंग्स पे मेजर एफर्ट नहीं देना पड़ रहा, कि आराम से हो रहा है, उसे हम प्राणायाम कहते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग, हमने टेक्स्ट में इसको अष्टकुंभक कहा गया है, जिसका मतलब 8 तरीके के अलग अलग प्राणायाम और सबके अलग अलग बेनिफिट्स। लेकिन जो रोज़ की ज़िंदगी में आप कर सकते हैं रेगुलरली, वो हुआ अनुलोम विलोम, जिसे हम इंग्लिश में ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। फिर हुआ हमारा भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हम हमिंग ब्रीथ कहते हैं। कपालभाति आप कर सकते हैं। कपालभाति को हम एक स्कल शाइनिंग ब्रेथ कहते हैं, विच इज़ गुड फॉर योर लंग्स, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से ये 3 से 4 प्राणायाम है जो आप रोज़ कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम का सही मतलब है जब आप उसको रोक के कंट्रोल करके, कि आपने श्वास लिया, आपने उसे रोका, फिर छोड़ा और फिर से रोका, मतलब एक बार शरीर के अंदर रोका, एक बार शरीर के बाहर रोका। तो इस तरीके से जब आप करते हैं तब वो प्राणायाम कहलाता है, पर जब आप सिर्फ सांस लेते हो और छोड़ते हैं वो एक ब्रीदिंग, एक रेस्पिरेशन कहलाता है।
1: और ये कितने ड्यूरेशन का, मान लीजिए अगर कोई अनुलोम विलोम कर रहा है तो कितना लंबा होना चाहिए तब जाकर उनको मतलब लगता है कि कुछ फायदा हुआ है?
2: तो बिगनर फ्रेंडली

0: में हम रेशियो शुरू करते हैं 1:1:1 कि 4 सेकंड, अगर आप, वो डिपेंड करता है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी
1: कितनी है.
0: अगर आपने 4 सेकंड में श्वास लिया तो आप उसी श्वास को 4 सेकंड रोकने की कोशिश करेंगे, फिर उसी को हम 4 एक्सहेल करने की कोशिश करेंगे. हमारा मेन मोटिव रहता है कि हमारा एक्सहेलेशन हमारी इनहेलेशन से ज्यादा हो. क्यों? क्योंकि हम इनहेल ऑक्सीजन कर रहे हैं और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहती है हम जितना डबल एक्सहेल कर पाए. शुरुआत में कम से कम 5 से 10 मिनट, मतलब ये मिनिमम है, क्योंकि आपको आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को ही टाइम, मतलब नेचुरल होने में, रिदम पे आने में टाइम लग जाता है. तो 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग होना चाहिए मिनिमम.
1: और क्या तानिया जी, ऐसा हो सकता है, मान लीजिए जिनको सांसों की ही तकलीफ हो, यानी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं हो, क्या उनके लिए भी ये फायदेकारक होता
0: बहुत
1: है?
0: बहुत ज्यादा, क्योंकि अस्थमा में क्या है कि आप एक्सहेल नहीं कर पा रहे, आप इनहेलेशन कर पाते हैं अस्थमा में. ब्रोंकाइटिस में भी आप, तो इसमें करना क्या होता है, हम बस उनको शुरुआत में हम उनको सांस रोकने नहीं कहते, पहले हम उनका ब्रीदिंग पैटर्न सही कराते हैं कि आप पहले देख लीजिए श्वास लेते हुए आपका चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है नहीं हो रहा. क्योंकि आधे लोगों को शुरू में मैंने देखा यही नहीं पता होता या समझ नहीं आता, उन्हें लगता है हम जब श्वास लेते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है, पर नहीं, हम जब श्वास लेते हैं तो वो बाहर की तरफ जाता है. तो पहले तो हम उनका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक करते हैं, फिर जब वो सही हो जाता है फिर हम धीरे धीरे उनको प्रैक्टिसेस कराते हैं. जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम व्यक्ति के हिसाब से योग की प्रैक्टिसेस को चेंज करते हैं, ट्वीक करते हैं. तो ऐसा नहीं है वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, बस थोड़े से चेंजेस के साथ,
1: यानी उनको ग्रेजुअली उनकी प्रैक्टिस को बढ़ाया जाता है. और जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो ध्यान में और योग में क्या अंतर है?
0: तो आसन हमारे शरीर पे काम करता है और ध्यान हमारे मन पे काम करता है.
1: अच्छा,
0: मेजर डिफरेंस बस इतना ही है. दोनों, वैसे दोनों ही जगह काम करेंगे. क्यों? क्योंकि ध्यान करने के लिए मुझे किसी एक आसन में बैठना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि मैं बस, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं चेयर पे भी बैठ के कर रही हूँ तो मैं बैठी हूँ. तो कोई भी पोज में बैठना आसन है, स्थिरम सुखम आसनम हम इसे कहते हैं. तो आप जिस भी आसन में स्थिरता के साथ, सुख के साथ बैठे हैं, एफर्टलेसली बैठे हैं, वो आसन है. तो उस आसन में अगर मैं बैठी हूँ तभी मैं शांति से मेडिटेट कर पाऊँगी या कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँगी. तो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं. तो ऐसा नहीं है हम एक करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, नहीं, वो ऑटोमेटिकली होगा. आप नहीं भी करना चाहेंगे तो वो होगा,
1: आसानी से आप कर पाओगे. जी बिल्कुल. यानी एक तरह से आपको, जब हम कोई भी पोस्चर जहाँ पर हम ईजी तरीके से हम बैठ पा रहे हैं, बिना किसी, कोई आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है घुटनों में, ना कोई दर्द है, आप वो पोजिशन में कुछ देर के लिए आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं.
0: पतंजलि योग सूत्र में इसीलिए दूसरे श्लोक में, सूत्र में उन्होंने यही क्या है, स्थिरम सुखम आसनम,
1: यानी स्थिर रहना,
0: स्थिर रहना, सुखी जिसमें आप बैठे हो, आपको कोई ऐसे दिक्कत नहीं हो रही, आप हिल नहीं रहे बार बार, आप रिलैक्स एफर्टलेस बैठे हो, वही आसन है.
1: बिल्कुल. और जब हम बात करते हैं, कई सारे लोग कहते हैं भाई ध्यान में बैठना हमारा, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, जब कहते हैं, तो इसमें मतलब मैं कहना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि कोई भी आम इंसान ध्यान कर सकता है, या फिर उसके लिए बहुत लंबे समय का योग करके, करने के बाद ही वो ध्यान या मेडिटेशन लगा सकता है?
0: नहीं. तो अगर हम भगवद गीता के अनुसार चलें तो कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ध्यान योग, तो आपसे अगर आसन नहीं हो रहे कोई बात नहीं, आप ध्यान की तरफ जाइए. लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अभी बैठी और हो गया, नहीं, टाइम लगता है लेकिन होता है. वो धीरे धीरे शुरू होता है. हम शुरुआत गाइडेड मेडिटेशन से करते हैं, फिर हम खुद से करना शुरू करते हैं. जैसे मैंने कहा शुरू में आपको एक टीचर की ज़रूरत
1: लगती है.
0: अब वो टीचर हो सकता है आपकी YouTube ऑडियो गाइडेंस भी हो. तो डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है. ठीक है, तो ध्यान कोई भी कर सकता है.
1: और मतलब आप कोई सरल तरीका, मतलब मान लीजिए जो लोग हमें टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं, एक छोटा सा अगर आप उदाहरण दें कि किस तरह से वो लोग एक छोटा सा मेडिटेशन, या मान लीजिए 3 मिनट या 5 मिनट का घर पर रोज वे करना चाहें, तो किस तरह से वे शुरू कर सकते हैं?
0: सबसे सरल और आई वुड से बिगनर फ्रेंडली तरीका है ब्रीदिंग मेडिटेशन.
1: अच्छा.
0: तो इसमें हम क्या करते हैं, हम क्योंकि ना हम पूरे दिन में हर चीज़ पे ध्यान देते हैं सिवाय अपनी श्वास के, क्योंकि हमें लगता है आ रही है जा रही है,
1: ऑटोमेटिक,
0: ऑटोमेटिक नहीं. पर जिस टाइम पे हम श्वास पे ध्यान देना शुरू कर जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारा एक पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होने लगता है. क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियस हैं. हमें अभी यही नहीं पता कि हम एक मिनट में कितनी बार श्वास ले रहे हैं.
1: सही.
0: सबसे ज़रूरी यही है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए आप एक मिनट में ब्रीथ कितनी बार कर रहे हैं. तो वो करने के लिए अगर मैं किसी को कहती हूँ चलो मैंने आपको एक मिनट दिया, आप कोशिश

0: आप ये देखिए आप एक मिनट में कितनी बार श्वास ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस एक मिनट में ध्यान देंगे.
1: True.
0: ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे. तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपकी ब्रेथ वर्क पे ध्यान देना, कि श्वास लेते हुए चेस्ट एक्सपेंशन कितना हो रहा है, कितने सेकंड में आप श्वास ले पा रहे हैं, कितने सेकंड में आप आज रोक पाए, फिर आप कल उसको करेंगे. तो 10 से 15 मिनट ब्रीदिंग मेडिटेशन इज गुड.
2: यानी आपको सिर्फ कॉन्शियसली ब्रीद करना है, यहाँ से आप शुरुआत करें. और हो सकता है कि आप 10 ब्रीदिंग आज कर रहे हैं तो कल 15 करें, धीरे धीरे करते हुए
0: ऑटोमेटिकली इनवर्ड चले जाते हैं.
2: बिल्कुल. और मान लीजिए अगर कोई योग कर रहा है पर उसका जो तरीका है वो ढंग का नहीं है, तो क्या उसको कोई नुकसान हो सकता है इससे?
0: जी, मतलब ऐसे बहुत नुकसान मैं नहीं कहूँगी, जैसा मैंने कहा कि नुकसान है ही नहीं. वो कर रहे हैं, वो शरीर को तो मूव कर रहे हैं. बस हो सकता है अगर उन्हें पता है कि उनको ये डिजीज़ है या ये डिसऑर्डर है, पर वो फिर भी वो चीज़ करे जा रहे हैं, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा. मतलब ख़राब कुछ नहीं होगा, लेकिन उस चीज़ का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा.
2: और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि केवल जो पतला होना चाहते हैं या जो मोटे लोग हैं या फिर जो सिर्फ केवल महिलाएँ हैं, क्योंकि आजकल महिलाएँ ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं मैं ऐसा मानती हूँ, तो योग केवल इन लोगों के लिए है, तो इस पर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें.
0: नहीं, योग हर व्यक्ति के लिए है. सो जैसे मैंने कहा, जब हम कहते हैं एवरीवन एवरीबॉडी, दैट एवरीबॉडी इज एवरी बॉडी ऑल्सो. तो चाहे बच्चे, चाहे महिलाएं, चाहे बुजुर्ग, चाहे आदमी, चाहे औरत, दोनों दोनों के लिए है. क्यों? क्योंकि सिस्टम तो सबके अंदर 11 है. मतलब चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, दोनों के अंदर, तो वो दोनों के लिए है. बस वो एक मिथ है, एक माइंडसेट है कि सिर्फ महिलाओं के लिए है और बुजुर्ग के लिए नहीं, सबके लिए है. सब कर सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट सबको चाहिए, हम सबको चाहिए.
2: हम ये कह सकते हैं कि जो पतले हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको योग की आवश्यकता नहीं है, योग आपके लिए भी है. बिल्कुल.
0: क्योंकि ऐसा नहीं है कि योग आपको पतला कर रहा है या यू नो सिर्फ फ्लेक्सिबल कर रहा है. नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो उसका बाय बेनिफिट है कि आपने आज करा तो आप फ्लेक्सिबल होगे,
2: तो
0: ही होगे,
2: मिलना ही है.
0: हाँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसे मेरे को कहते हैं कि नहीं मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ तो मैं योगा नहीं कर पाऊंगी. नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको योग से आएगी, उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी नहीं है. सेम कि अगर आप पतले हैं, नहीं आप पतले हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं आप हेल्दी भी हैं. दोनों अलग अलग बातें हैं. पतले होना और हेल्दी होना दो अलग अलग बातें हैं. हो सकता है आप पतले हैं लेकिन आपके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत
2: समस्या हो,
0: या फिर आपको श्वास की दिक्कत हो, या आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो वो दोनों में हेल्प करता है.
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल पतले लोगों के शरीर में भी देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कई बार हम नहीं जान सकते कि क्या समस्या हो सकती है. और आजकल कई सारे लोग बिकॉज जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आधुनिक दौर है और मॉडर्निटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं भाई हम जिम वर्कआउट करते हैं, हमारे लिए योग हमारे बस की बात नहीं है. तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, योग और जिम वर्कआउट में क्या अंतर है, और साथ ही साथ क्या जो जिम वर्कआउट करते हैं वो योग भी कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि योग क्या, जिम क्या होता है, स्ट्रेंथ और फिटनेस पे काम कर रहे हैं मेजर.
2: बिल्कुल,
0: योग स्ट्रेंथ फिटनेस मन तीनों पे काम कर रहे हैं.
2: सही.
0: अब जिम में हमारी, हमें रियलाइज नहीं होता पर जिम में हमारी सिर्फ वॉलेंट्री मसल्स यूज़ हो रही होती हैं. ज़्यादातर हमारे हाथ, पैर, ये लिम्ब्स हैं जो मेजर यूज़ कर रहे होते हैं. योग में हमारी वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री दोनों मसल्स यूज़ हो रही होती हैं. तो जो जिम कर रहे हैं उनको स्ट्रेचिंग के माध्यम से योग करना ही चाहिए. लेकिन जो जो योग कर रहे हैं वो तो फिर करते ही सिर्फ योग है, मैंने देखा है इतना. लेकिन मेरा रेकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप जिम भी कर रहे हैं, आप आखिरी के 10 से 15 मिनट निकालिए ब्रेथ वर्क और कुछ स्ट्रेचिंग करने के लिए. क्योंकि डिफरेंस है, योग हमारी ओवरऑल बॉडी पे काम करता है, ऑन दी कॉन्ट्ररी जिम ओवरऑल बॉडी पे काम नहीं करता.
2: कुछ लोग का मानना है कि भाई मुझे योग करना है केवल शारीरिक एक्सरसाइज या फिर ब्रीदिंग्स के लिए, पर क्या ऐसा भी होता है कि जो योग करते हैं वो आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़ते हैं?
0: देखिए, योग सिर्फ जैसे हमने कहा एक्सरसाइज तो नहीं है, ये आपका मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तीनों पे विकास करता है. अब हमेशा हम ना, जैसे हम एक रेजोल्यूशन के साथ, जैसे हम प्रेयर करते हैं शुरू में, ठीक है, उसके बाद हम सोचते हैं कि अगर हम आज ये कर रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या है. क्योंकि अगर आपका मोटिव डिसाइडेड होता है ना, तो चीज़ें करना और इजी रहता है. तो आई वुड से ऑफ कोर्स कि आध्यात्म की तरफ लेके जाता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं.
2: एक तरह से एनलाइटन करता है,
0: वो उसका अल्टीमेट एम है.
2: बिल्कुल.
0: और वो आध्यात्म बेसिकली वो आपको सबसे पहले खुद से

0: छोड़ता है, क्योंकि वो अल्टीमेट एम ही यही है कि आपको लिबरेशन मिले. लिबरेशन नॉट फ्रॉम दी वर्ल्ड बट फ्रॉम दी मटेरियल बॉन्डेज, कि हम जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में
1: कैसे कहते हैं जी, कहते
0: उसमें कि आपको फिर सिर्फ अपने आप से ज्यादातर मतलब रहता है, मतलब कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा. तो यस, वो उसका अल्टीमेट एम है, पर शुरुआत उसकी अलग अलग अलग
1: बिल्कुल हर स्टेज में आपको वो परिवर्तन दिखाई देता है. तो मेरा ये अगला सवाल भी इसी पर आधारित है कि क्या योग हमारे जीवन को परिवर्तन की ओर ले जाता है?
0: बिल्कुल लेके जाता है, क्योंकि जैसे हमने कहा स्ट्रेस कम करता है सबसे पहले,
1: बिल्कुल,
0: फिर स्वास्थ्य सुधारता है, तो ऑटोमेटिकली ये परिवर्तन हो ही रहा है. अब क्योंकि जब ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो ऑटो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जहाँ आपका आत्मविश्वास बढ़ा आप एक अलग पर्सनालिटी बन जाते हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो वो परिवर्तन हर स्टेज पे आपको हर दिन अपने अंदर वो कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा, पर वो तब दिखेगा जब आप कॉन्शियसली उसे देखना चाहेंगे. तो जी बिल्कुल, वो परिवर्तन में हेल्प तो करता है बहुत ज़्यादा.
1: यानी धीरे धीरे जब आप करते हैं तो उसका परिवर्तन दिखाई देता है. और जब हम आज के ज़माने में बहुत सारे जब हम हेल्थ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो पहला शब्द यही कहते हैं भाई मुझसे तो नहीं होगा. ऐसा कहने वालों के लिए आप खास कर क्या कहना चाहेंगी? कि मतलब मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग पहले ही दिन में, या कई बार ऐसा होता ना कि मसल पेन शुरू हुआ, या आपने जब योग करना शुरू किया तो कुछ, ये तो लॉजिक है कि कभी किसी भी एक्सरसाइज को आप पहले दिन करोगे तो दूसरे दिन थोड़ा बहुत दर्द या थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, शुरुआत में आपको ये होगा. तो कुछ लोग पहले से ही मतलब वो कैसे डिसहार्टन हो जाते हैं और फिर उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलती, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं योग, राइट? तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि सबके लिए है. अगर हम इसको ये सोच के करेंगे मुझसे नहीं होगा, अगर माइंडसेट हम ये रखेंगे तो वो नहीं होगा, जबकि ऐसा कोई प्रैक्टिस ही नहीं है योग में जो आपसे ना हो पाए. हम यहाँ पे सिर्फ बिगनर्स उसकी बात कर रहे हैं. तो अगर हमने सोच लिया कि इम्पॉसिबल है, तो पहली बात तो अगर आप इम्पॉसिबल वर्ड भी देखेंगे तो वो भी यही कह रहा होता है, आई एम पॉसिबल, राइट? एग्जैक्टली,
1: देखने का तरीका होना चाहिए.
0: एग्जैक्टली. तो आप छोटी शुरुआत कीजिए. कोई नहीं कह रहा आपसे कि आपको आज ही शीर्षासन लगाना है, नहीं. आप छोटी शुरुआत कीजिए. बस कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, आपका नियमित रहना इम्पॉर्टेंट है, तो आराम से होगा. ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इसको कंपटीशन समझ के करना ही नहीं है, क्योंकि हमें बदलाव देखना है अपने शरीर में, और आपका कंपटीशन आप खुद हैं और कोई है ही नहीं.
1: बिल्कुल.
0: मेरे को अगर परिवर्तन देखना है तो वो मुझ में देखना है, मुझे किसी और में नहीं देखना. तो आज मैं शायद सिर्फ ब्रीदिंग से शुरू करूँ, मैं सिर्फ 5 मिनट बैठूँ एक जगह, अगर मैं 5 मिनट एक जगह बिना हिले बैठ रही हूँ तो वो एक अचीवमेंट है. तो सबसे होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. आप शुरुआत कीजिए, दिन के 5 मिनट या 10 मिनट दीजिए, बट कंसिस्टेंट, नियमित रहिए, तो होगा. बिल्कुल
1: जैसे आपने कहा ना कि हेल्दी लिविंग, हमें हेल्दी रहना है, बस ये ध्येय मन में होना चाहिए, ये लक्ष्य मन में होना चाहिए. और जैसे आजकल मतलब कहते हैं ना कि आधुनिकता के साथ हमारी बीमारियां भी कुछ इस तरह से बढ़ती जा रही है. और आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं आए दिन सरकार ला रही है जिससे कि हमारी जो जनता है वो स्वस्थ की ओर बस जागरूक रहे, और इसी के साथ अपने जीवन का जो ध्येय है कि हम आजन्म बिल्कुल हम हेल्दी रहेंगे, ये एक लक्ष्य तय करना है, ये एक ऑब्जेक्टिव हमारे जीवन का उद्देश्य बहुत निर्धारित करना बहुत ही आवश्यक है. और जैसे तानिया जी बता रही हैं कि बिल्कुल शुरुआत करें, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि भाई मुझे रहना है हेल्दी, चाहे कोई रहे ना रहे पर मुझे हेल्दी रहना है, तो ये एक लक्ष्य तय करना बहुत ज़रूरी है. और बिल्कुल इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर और ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो योग करवाती हैं अपने एम्प्लॉयर्स को, और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूकता दिलवा रही है. तो मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगी यहाँ पर, मतानिया जी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, अगर कोई इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यानी इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर के साथ जुड़ना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कोई ऐसा कोई नंबर या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल. तो आप फीनिक्स में है हमारा सेंटर, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर फॉर इंडियन कल्चर. तो वहाँ पे आप आइए. रजिस्ट्रेशन 22 जून से शुरू हो रहे हैं नए रजिस्ट्रेशन, जो 17 जुलाई तक चलेंगे. इसमें हमारे पास बिगनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस एंड कुछ कोर्सेज, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, देन मेडिटेशन क्लासेस, ये सब हैं और सबके लिए हैं। तो आप सुबह 9 बजे से लेके दिन के 4 बजे तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप फिनिक्स में आइए और वहाँ पे आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है बस, एंड फिर आप शुरुआत करिए।
1: और

0: कि कौन कौन से दिन आप वहाँ पर क्लासेस होते हैं?
1: तो क्लासेस रोज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे, देन फिर इवनिंग में भी हमारे पास क्लासेस रोज होते हैं. एग्जैक्टली.
0: ओके.
1: एक प्रॉपर टाइम टेबल है, तो जब जैसे ही जो भी रजिस्ट्रेशन करने आएंगे आपको वहाँ पे एक प्रॉपर टाइम टेबल दिया जाएगा. आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस टाइम पे.
0: एग्जैक्टली.
1: एंड फिर आप उस हिसाब से फॉर्म फिल कर सकते हैं.
0: बिल्कुल. और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमारे श्रोताओं को ध्यान में रखनी चाहिए योग करने के समय?
1: बस करना शुरू कीजिए. मैं सबको सिर्फ यही कहूँगी कि आपको मेजर है, आप शुरुआत कीजिए. बस आपको ये पता होना चाहिए, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने कोई टेस्ट नहीं कराया अपनी बॉडी का, 6 महीने हो गए हैं, तो आप एक टेस्ट करा के आइए ताकि आपको पता हो कि आपके शरीर में क्या चल रहा है और आपको कराने वाले को भी पता हो कि मुझे किस किस चीज़ का ध्यान देना है.
0: एक तरह से उन्हें इंस्ट्रक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है.
1: एग्जैक्टली. वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा मैंने कहा, हो सकता है आप जिस मोटिव से आ रहे हैं फिर वो कम्प्लीट ना हो पाए अगर आप हमें नहीं बता रहे हैं पहले. तो बस इतनी से, वरना सिर्फ ये कहना चाहूंगी शुरू कीजिए.
0: बिल्कुल. और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा और इसी उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम हमने आधारित रखा. हमारे साथ जुड़ी मिस तानिया गुप्ता, जो भारत से आई हैं और खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं. और डेफिनेटली बिल्कुल अपने सेहत को अपने हाथों में लीजिए और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए एक प्रण लीजिए. इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे तकनीकी सहयोग पर हमारे साथ बने रहे कादया, साथ ही साथ उरुसा बानो और शीतल लोबिन हमारे साथ जुड़ी रही. इसी के साथ हमारे जितने भी दर्शक और श्रोता इस कार्यक्रम को हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद. आपको याद दिला दें, इसी कार्यक्रम को आप पुनः सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच. तो चलिए इसी के साथ शुभ दिन की शुभकामना और मिस तानिया को बहुत बहुत धन्यवाद. और फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक और नए स्वास्थ्य के कार्यक्रम को लेकर. तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति. नमस्कार. शुभ दिन आप सभी को.

0: स्टूडियो में रश न्यूज से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचौन और पूर्व वित्त मंत्री रंगानाथन पनायाची कल से हिरासत में। उन्हें फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 2023 में ईंधन खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाबों को लिए बुलाया गया था। इन दोनों ही पुरुषों को आज भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों ही पूर्व मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन के अस्थायी आरोप हैं। आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारणी में बदलाव। महोवाक्वा की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है, अब से यहां पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध। संबंधित इलाके हैं वाक्वा, क्यूपिप, कैट्रोबोन, बोबासेर, रोजिल, मोका, सैंपिया और रिवियनो जिले के एक भाग में। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक लोमेश जगू ने लोगों से पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की। और इन पिछले सप्ताहों के दौरान तापमान में बदलाव के चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस तरह सैनिटरी अधिकारी इस वृद्धि से चिंतित हो चले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि अभी कई वायरस मौजूद हैं जिसके मद्देनजर ऐसी स्थिति बनी हुई है। बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनी, जिसके बाद अमेरिकी नाकेबंदी हटने से ईरानी बंदरगाहों से जहाज गुजरे और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनने और उस पर ई हस्ताक्षर होने के बाद पश्चिम एशिया में सभी पक्षों का ध्यान अब लेबनान में युद्ध विराम पर टिक गया है। विश्व फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंतर्गत अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच खेले गए मैच में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने खेल के 17वें, 60वें और 76वें मिनट पर गोल डाले। इस तरह उन्होंने 3 गोल बनाए, विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। उधर किलियान एम्बापे फ्रांस का रिकॉर्ड गोल स्कोरर बन गई। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: बुधवार 17 जून, घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:04 होने को है। एक बार फिर हम आप सबके साथ जुड़ चुके हैं रेडियो मॉरिशस पर भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा लेकर। अभी से लेकर जो है दिन के 11 बजे तक चलेगा यह कार्यक्रम, और आशा करते हैं कि आप सभी जो है हमारे साथ अभी तक रेडियो मॉरिशस पर हमारा साथ दे रहे हैं। और चलिए ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। कहते हैं ईश्वर जो है सदा हमें देते रहते हैं, बदले में हमें भी ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहना चाहिए। ईश्वर का दिखाया हुआ मार्ग कभी कभार कठिन हो सकता है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने से कभी किसी का न बुरा होता है, न कभी किसी को कोई हानि पहुँचती है। तो थोड़ी तकलीफ ही सही, इस पर चल के कल को हमें मन की शांति मिलती है, जीवन में सफलता मिलती है, और कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा को भी हम प्राप्त कर पाते हैं। आपको याद दिला दें, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। अभी के लिए भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम को आरंभ हम करते हैं।

0: चलिए भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और कहते हैं ना आरंभ अच्छा हो तो अंत भी अच्छा ही होता है अपने आप में। और ऐसा होता है ना कि जीवन में किस चीज़ को हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किस भावना से देख रहे हैं, किन विचारों से देख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं हमारी वाणी जितनी महत्वपूर्ण होती है उतने ही हमारे विचार भी होते हैं। क्योंकि मन में एक विचार आता है, उसी विचार के चलते तो हम बात कर पाते हैं ना कि क्या बोलना है। क्योंकि बोलने के पहले अवश्य हम सोचते हैं, कुछ भी कार्य करने के पहले अवश्य हम सोचते हैं। तो सोच अच्छी होगी तो वाणी भी अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, और जब सब कुछ अच्छा ही होगा तो फिर बुराई के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचती है ना। तो चलिए अभी के लिए समय हुआ है हम डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में सुने कार्यक्रम विनय अंजलि, और चलिए इस कार्यक्रम की ओर हम बढ़ते हैं।
1: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।

प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। विनयांजलि कार्यक्रम सेवा में प्रस्तुत है। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज का संदेश आप आदरणीय पंडिता प्रेमिला जी द्वारा सुनेंगे, परंतु इससे पूर्व हम पंडित महेश जी के स्वर में एक भजन सुनते हैं।

0: श्रोताओं, इस भजन के बाद अब आप संदेश सुनेंगे और संदेश सुनाने के लिए उपस्थित हैं श्रद्धेया पंडिता प्रेमिला सिरतन जी। हम उनका अभिवादन करते हैं और निवेदन करते हैं कि अपना संदेश प्रस्तुत करें। पंडिता प्रेमिला सिरतन जी।
1: ॐ द्रिं हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे दृढकरदो यः भावना जगत्पिता जगदीश मित्र बढ़ावे मित्रता तुझे जो

मैं सबसे और सब मुझसे करें निरंतर प्यार। सम्माननीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। श्रोताओं, हम जगत पिता जगदीश्वर से हमारी भावना दृढ़ करने की विनती करते हैं। यदि हमें अपने जीवन को दिव्य गुणों से अलंकृत करने की चाह है, महान बनना, चमकता हुआ सितारा बनकर चरित्र उज्ज्वल बनाना चाहते, या अपना हर कर्म विशेष प्राप्ति से युक्त करना चाहते, तो जीवन में सत्यता, सादगी और महानता के लिए सभी को मित्र भाव की दिव्य दृष्टि से देखने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि सभी को आत्मिक भाव एवं सम्मान दृष्टि से देख सकें। मित्र वही जो हमारी अच्छाई बुराई का ज्ञान कराता, हमारे कर्म की समीक्षा कर सही मंत्रणा देता, कुमार्ग के भटकन से निकालकर सत्मार्ग का पथिक बनाता, ताकि प्रभु की कृपा पा सकें। मित्र की आलोचना से हमारा निश्चय न डगमगाए। मैत्री की मंत्रणा आडंबर विहीन बड़ा तर्क संगत सहज ही बुद्धि से दिल को छू सके, इसलिए जगदीश्वर विद्वान ऋषि महर्षि विद्वद्गण ज्ञानी जन व्यवहारिक सामाजिक धार्मिक अंधकार का निवारण अपनी दृढ़ पुरुषार्थ की

शक्ति से, भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक सत्य से नैतिक मूल्यों के विकास बनाए रखने में सफल होते, जैसे धृते दृम्हमा मित्रस्यमा चक्षुषा सर्वाणि। हम परमात्मा से याचना करते हैं कि हमें वह दिव्य दृष्टि की चाह है, जिसे हम सभी को एक समान समदर्शिता की भावना से देख तो सकें, सत्य बोल के सहायक बन सकें, काल के बंधन से दृढ़तापूर्वक मुक्त तो कर सकें, अंधकार अज्ञान अभाव अभद्र भाव के लिए आंतरिक प्रकाश की शक्ति, प्रभु प्रेम का खजाना, सत्य का वास्तविक रूप प्रकट करने की कृपा की चाह हम सबको है। जैसे माँ मित्रस्य, हे प्रभु, हमारा श्रेष्ठ मित्र परमेश्वर से हमारा नव निर्माण में हम मानव को दृढ़ता का आधार प्रदान कर उचित दिशा बोध कराने में मित्रता की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करें, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग दिखाते हैं, जैसा भाव वैसा परिणाम होते हैं। इसलिए प्रभु प्रार्थना रहती हमें सभी प्राणी को मित्र दृष्टि तथा समान पूर्वक देख सकें, हर कार्य प्रति हमारा भाव एवं सोच पावन तो रहें, जिससे हमारे कार्य भार का बोझ हल्का हो जाए, हम अपनी सद्भावना सद्विचार शुभ श्रेष्ठ भाव के संकल्प शक्ति पुंज तो बन सकें। हे प्रभु, आपके संग हमें आंतरिक बल, शुद्ध विचार, सत्य सोच उसी प्रकार क्रियान्वित करते रहें, जैसे अंधकार पूर्ण स्थान में एक नन्हे दीप का प्रकाश मन भावन उजाला भर देता, उसी प्रकार मित्रता उस ध्वनि की भांति है जो हम सब में मंत्र की मंत्रणा, मित्र की मित्रता, भाव की सद्भावना से धर्मात्मजन सब प्राणी को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, और अमित्र अविद्या अज्ञान अशांति दुख समस्या के ज्वार भाटे के बीच सदा निश्चिंत निर्विघ्न रहने के लिए नाश न होने वाला सुख शांति और खुशी से एक समान रहने की युक्ति शक्ति कला के विकास के लिए हमारी इच्छा रहती। आगे मंत्र का उठता समीक्षंताम मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। श्रोताओ, हमारे प्रभु से सदा निवेदन रहता कि हमें सभी प्राणी को समान भाव एवं मित्र की दृष्टि से देखने की लालसा रहे, सभी से द्वेष रहित स्नेह प्रेम शांति सौहार्द सहन शक्ति और मैत्री भाव के सकारात्मक चिंतन सद्भावना से भरपूर तो रहें, सभी को मित्र की दृष्टि अर्थात समीक्षंता मित्र श्याम के लिए मानवता के गुण विशेषता की सुगंध की पहचान की चाह रहती। मानव हृदय जब सद्भावना से भर जाता तो देव समान संबंध बन जाता, और दुर्भावना ग्रसित दानव अमित्र भयंकर रूप धारण कर प्रदूषित बनकर एकता के मन में सोच विचार शांति कल्याण की भावना समाप्त हो जाती, स्वार्थी मन में विनाशकारी रोग उत्पन्न होने लगता, और मन में सबके प्रति सर्वाणि भूतानि सब प्राणी प्रति मन में घृणा द्वेष वैमनस्य हिंसा छल कपट की कुत्सित भावनाएं जागृत हो जाती। इसलिए प्रभु से हमारी विनती है कि हम सब प्राणियों को दिव्य दृष्टि के समान भाव से देख सकें, मित्र भाव की पवित्रता सुख शांति आनंद से संपन्न जीवन मान सम्मान से जी सके। परमात्मा को वेद आदेश की पुकार है, उठो जागो और सभी प्राणियों को अपने समान दिव्य दृष्टि से पहचान कर अपने परम हितैषी प्रभु के हाथ साथ न छोड़ने का दृढ़ प्रतिज्ञ बने रहने का प्रण करें, जिसके बिना जीवन आसार न बने। आगे मंत्रांश द्वारा प्रभु आदेश देता, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हम लोग परस्पर सभी को देखने के लिए मित्रता की दिव्य दृष्टि की मांग है, ताकि सभी अंतरात्मा की सुखदायी सत्य
आवाज़ सुन सकें।

0: दूसरों के प्रति सद्भावना जागृत कर सकें ताकि धर्म जहर न उगले, नैतिक ह्रास न हुए, विज्ञान अभिशाप न बने, विज्ञान ने चांतक सड़कें निकाल दी लेकिन एक मन से दूसरे मन तक जाने की राह का निर्माण नहीं कर सकता, बल्कि भौतिक सुख सुविधा साधन पद के कारण एक दूसरे से दूरियां बढ़ती गई। भौतिक जगत में प्राप्त मान शान और पद को सामने रखकर एक दूसरे को आज दिखा जाता जो अहंकारवश सद्भावना का बहिष्कार होता। सच्चाई दूर भागती, नकली जीवन जीते हुए नकली सुख शांति से अस्थिरता पैदा होती, जिसके स्वार्थ सिद्धि सर्वोपरि होती। मानव के कल्याण की भावना शून्य होती, न ही झुक सकता, न किसी को झुका ही सकता, न नवनिर्माण ही कर सकता। जैसे झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती। इसलिए प्रभुवर से प्रार्थना है कि अपनी आत्मा समान महत्वपूर्ण प्राणियों को मानने की विचार शक्ति बढ़ाने की कृपा चाहते। मन वचन कर्म में एकत्व की सद्भावना भरी तो रहे, सत्यता विचार की गति कम न होए, कमजोर मन भार तनाव निर्बलता की चपेट में न आ जाए, अपने पराए में मैत्री प्रेम स्नेह के सेतु में बंधे रहने की विनय है। सभी को जोड़ने के लिए सुई का काम करें, न कि कैंची जैसे काटने के विचार का काम करें। इसलिए वेद वचन सत्य है कि मित्रस्य चक्षुषा, सभी में मैत्री भाव भरपूर रहे, चाहे अनेक धर्म जाति वर्ग और भाषा क्यों न हो। पारस्परिक सद्भावना उनमें एकता ला सकती है, विभिन्नता सुंदरता प्रदान कर सकती है। जैसे गीत बजाते समय वाद्य या बाजा यंत्र की ध्वनि भिन्न होते हुए तालमेल बैठ ही जाता, जो प्रेरणादायी भाव हृदय में गुल खिला देता, जो सभी को मधुर एवं कर्ण प्रिय लगता। इसी प्रकार ईश्वर के वेदानुसार नियमों पर चलने से सभी में एकता आ सकती। स्व में सद्भावना जागृत कर सर्व में भाईचारा लाए जाने की प्रभु से कामना करती। समीक्षा महे सभी से मित्रता के लिए मन को सुमन अर्थात परमात्मा से जोड़कर साक्ष्य भाव से अनोखे बन सकते हैं। जैसे हम परमेश्वर के अमर संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं। श्रोताओं, हम मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम सबसे और सब हमसे निरंतर प्यार करें, जो आपसी सद्भाव या सामंजस्य का स्थान है, जो खून का स्थान शरीर के अंदर होता, रक्त शरीर के विभिन्न अंगों मांसपेशियों को जोड़कर रखता। जैसे ईंट भी इमारत की इकाई होती, अनेक इकाइयों से मिलकर भवन बनता, वैसे हम समाज परिवार देश की इकाई हैं। यदि हमारे मैत्री भाव की सद्भावना जागृत हो जाए, भातृभाव भर जाए, सामंजस्य से कल्याण ही कल्याण होगा। मानव हृदय में सबके प्रति समता समान भाव रहे और एकता से सबके दिल जीत कर दिव्य गुणों से तेज रहने की विनय है, जो विनय अंजलि का संदेश रहा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रोताओं, अभी आपने आदरणीय पंडिता प्रेमिला सरितान जी को सुना। आशा है आपने उनके संदेश से लाभ उठाया होगा। हम पंडिता जी को धन्यवाद करते हैं। अंत में आप पंडित वाल्मीकि महर्षि जी से और एक गीत सुनेंगे, हमें आप अनुमति देंगे। परंतु इससे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं श्रीमती अंजू जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और साथ ही आपने सुना। फिर मिलेंगे। नमस्ते।

तो श्रोताओं, अभी हम डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम विनय अंजलि। इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर गंगू जी को हम धन्यवाद देते हैं। और चलिए इस अगले भक्ति गीत की ओर बढ़ते हैं। अगला भक्ति गीत कुछ इस प्रकार है, बड़े प्यार से मिलना सबसे। जी हाँ, क्या पता किस रूप में हमें भगवान मिल जाए, किस रूप में हमें हमारे ईश्वर मिल जाए, किस रूप में हमें हमारे आराध्य मिल जाए, क्या पता। तो बस प्यार से मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है ना जीवन में, बस राह चलते चलते कभी कोई अनजान सा व्यक्ति हमें मिल जाता है, जो हमारी सहायता कर जाता है, जिसे ना हम जानते हैं ना पहचानते हैं, और उसके बाद कभी उससे फिर मिलना भी नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति तो ईश्वर का ही तो रूप होते हैं।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, बड़े प्यार से मिलना सबसे, और ये प्रेम ही है जो जीवन में हम सबको जोड़े रखता है। प्रेम ही है जो एकता को दर्शाता है। प्रेम ही है जो एक परिवार की शक्ति को दर्शाता है। प्रेम ही है जो परिवार में सम्मान को दर्शाता है। और जिस भी चीज़ में प्रेम जुड़ जाता है ना, वह कार्य अपने आप में सरल हो जाता है, वह कार्य अपने आप में सुंदर हो जाता है। क्योंकि प्रेम अपने आप में इतने सुंदरता और शीतलता से भरा है कि प्रेम जिस शब्द से, जिस चीज़ से भी जुड़ जाए, वो अपने आप में जो है ईश्वरीय तत्व बन जाता है। क्योंकि अगर हम अपने कार्य से प्रेम करते हैं तो अपना काम हमें कभी बोझ नहीं लगता है। अगर हम अपने कर्तव्य को अपने अपनों के प्रति बड़े प्रेम से निभाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारा जो है धर्म है, हमें इससे चूकना नहीं चाहिए, हम इसे बोझ के समान नहीं लेते हैं। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो जीवन में हर कठिनाइयाँ जो है आसान हो जाती है, हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति हमें मिल जाती है। जीवन में जब हम अपनों से प्रेम करते हैं तो अपनों की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करके, सभी मनमुटाव को भुला कर हम सबसे एक हो जाते हैं। सभी जो है रिश्ते में जो भी दूरियाँ होती है, संबंधों में जो दूरियां होती है, वो कम हो जाती है। तो जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर अपने आप में ईश्वर का वास होता है।

चलिए ईश्वर की जय जयकार करते हुए कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। और कभी कभार हम सोचते हैं ना कि जीवन में हमारे जो भी कुछ होता है, क्या वाकई में वो हमारे कर्मों की वजह से होता है, या हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, क्या ये नियति है, क्या ये लिखा हुआ है। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो जीवन से जुड़े होते हैं, जिनका जवाब कोई भी ठीक ठीक नहीं दे पाता है। हाँ, हमारे कर्म तो मायने रखते ही हैं, क्योंकि जीवन में हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, किस तरह से हमने उसे प्राप्त किया है, अच्छे कर्मों से, बुरे कर्मों से, कहीं जाने अनजाने में हमने कभी किसी का नुकसान तो नहीं किया है, कभी किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाई है, तो कहीं ना कहीं जो कुछ होता है हमारे जीवन में, उसके लिए जो है जिम्मेदारी हमारी भी होती है। सब कुछ तो हम ईश्वर पर नहीं डाल सकते ना। ईश्वर तो है ही हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा भला चाहने के लिए, हमारी भलाई करने के लिए। ईश्वर तो है ही हमारा मार्गदर्शन करने के लिए।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए यहाँ पर भक्ति गीतों के इस कार्यक्रम के हम लगभग अंत तक आ गए हैं। 10 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। जाते जाते बस यही हम कहेंगे कि ईश्वर जो है अपनी कृपा आप पर सदा बरसाते रहे, और जो है हम जब भी दुविधा में हो तभी ही सिर्फ ईश्वर का स्मरण न करें, ईश्वर का स्मरण जो है निरंतर हमारी हर श्वास पर हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को इस आरती के साथ हम विराम देंगे। 11 जी आप सुनेंगे समाचार, उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोसा। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: स्टूडियो में आगे रश्मि जी उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। सबसे पहले ये खबर, एक पुलिस कार्रवाई चलाई गई। असल में ये कार्रवाई कल पोर्टलिस के उत्तर में चलाई गई, जिसके दौरान 101 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई का नाम रखा गया थंडर स्ट्राइक ऑपरेशन। असल में सुबह के 3 बजे से दिन के 2 बजे के बीच उत्तर के पुलिस डिवीजन की ओर से ये कार्रवाई चलाई गई और इसके दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कई इकाइयों को भी तैनात किया गया था और काफ़ी लंबे समय से संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही थी। कई जुर्म के लिए उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचरण और पूर्व वित्त मंत्री रंगाराधन पदयाचिकर से हिरासत में है। असल में दोनों ही पूर्व मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन के अस्थाई आरोप हैं। बता दें कि उन्हें फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से 2023 में ईंधन खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाब उन्हें देने थे। इन दोनों ही पुरुषों को आज बुधवार को भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश किया जा रहा है। आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारिणी में बदलाव। असल में मौका

0: की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है, अब से यहां पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध। इसके अंतर्गत वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक लोमिस जगू ने लोगों से पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की। बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनी, जिसके बाद अमेरिकी नाकेबंदी हटने से ईरानी बंदरगाहों से जहाज गुजरे और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनने और उस पर ई हस्ताक्षर होने के बाद पश्चिम एशिया में सभी पक्षों का ध्यान अब लेबनान में युद्ध विराम पर टिक गया है। विश्व फुटबॉल कप के अंतर्गत अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच खेले गए मैच में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने खेल के 17वें, 60वें और 76वें मिनट पर गोल डाला। इस तरह उन्होंने 3 गोल बनाए, विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। उधर किलियान एम्बापे फ्रांस का रिकॉर्ड गोल स्कोरर बन गए। संक्षिप्त समाचार यही पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में एक शोक समाचार। मिशन क्रॉसरोड लालमाची में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ज्ञानती सुबा, श्रीमती ज्ञानती सुबा पैदाशी नाम ज्योति, जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनकी बेटी प्रियंका सुबा के घर मिशन क्रॉस रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। ऐ खुदा खैर के ख़बरों के उजाले रखना, ऐ खुदा खैर के ख़बरों के उजाले रखना। मौज़े सामेईन, इस्लामी नया साल 1448 सन हिजरी शुरू हो चुका है और आज माहे मुहर्रमुल हराम का पहला दिन है। आप तमाम सुनने वालों को इस्लामी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी यही दुआ है कि नए साल में सबको खुशियां खुदा दे, अज़ाइम नए और नया हौसला दे। मौज़े सामेईन, आइए बाकायदा शुरुआत करते हैं आज की इस उर्दू मजलिस में। आप समाअत फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम्द, बयान, नातु सलाम और आपके पैगामात। तो आइए ताखीर ना करते हुए कलाम इलाही से शुरुआत करते हैं। आज आप समाअत फरमाएंगे

आइए बाकायदा शुरुआत करते हैं आज की इस उर्दू मजलिस में। आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम्द, बयान, नातु सलाम और आपके पैगामात। तो आइए ताखिर ना करते हुए कलाम इलाही से शुरुआत करते हैं। आज आप समात फरमाएंगे सूरह अर रहमान की तिलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

0: जी हाँ, खाली हाथ इस दुनिया में आए थे और खाली हाथ इस दुनिया से वापस जाएंगे। बस दुआ यही है कि ऐ पाक परवरदिगार, हमें ऐसे आमाल करने की तौफीक अता फरमा कि जिनसे हमें जन्नतुल फिरदौस अता हो। आमीन। मौज़े सामीन, अभी आप एक खूबसूरत कलाम समात फरमा रहे थे मरहूम जुनैद जमशेद साहब की खूबसूरत आवाज़ में। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:23 हो चुके हैं। बुध का दिन है, जून की 17 तारीख है और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम आज मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख है। आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर हमारी जानिब से नया इस्लामी साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपने पैगाम हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस भेज सकते हैं। अब आप समात फरमाएंगे खतीबो इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समात फरमाइए।
1: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन वअला आलिही वअस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. الله تبارك وتعالى جل جلاله وأمن والوه وعظم الشان.

अतम बुरहानों का लाख लाख शुक्र उसका एहसान अज़ीम है कि हम और आप सब इस्लामी नए साल में दाखिल हो चुके हैं और माह मुहर्रमुल हराम जो है माह मुहर्रमुल हराम अपनी तमाम तर बरकतों रहमतों नीमतों के साथ हमारे ऊपर साया फिकन हुआ है और हम उसके साए में अपनी ज़िंदगी की सांसें गुजार रहे हैं। आप हजरात को जैसे मालूम है और आलम इस्लाम को इस बात का बखूबी इल्म है कि मुहर्रमुल हराम शरीफ का जब चांद नज़र आता है तो इसकी इब्तिदा करबला शरीफ से होती है और सैयदा कायनात फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के लख्ते जिगर जिगर गोशे मुस्तफ़ा सरयदना व मुर्शिदीना व हादीना सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन व आला जद्दिही व अलैहि सलाम की शहादत का बाब खुल जाता है और पूरी दुनियाए सुन्नियत में मसाजिदों में खानकाहों में मदारिस इस्लामिया में और दिगर अपने अपने मकानों में इमाम हुसैन व आला जद्दिही व अलैहि सलाम और जमी अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ज़िक्र मुबारक की महाफिलें आबाद हो जाती हैं और हर तरफ़ से या हुसैन या हसन या अली या फातिमतु ज़हरा की नगमात सुनाई देते हैं। शुआरा अपनी शायरी में और नात खां सना खां अपने तरन्नुम के ज़रिए से और तहरीर लिखने वाले अपनी कलम की रोशनाई के ज़रिए से अपनी तहरीरों के ज़रिए से और तकरीर और वाज़ करने वाले अपने कलाम और वाज़ के ज़रिए से ये नगमात हमको सुनाते हैं और ये शहादत इमाम हुसैन का तज़किरा बार बार हर साल तरोताज़ा हमारे जहनों में उतारा जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारा ताल्लुक वाबस्ता रहे और इस अजीम शान कुर्बानी को हम याद करके अपने अंदर जो हमें एक इनकलाब बरपा करना है और अपने अंदर जो एक चेंजिंग पैदा करना है वो हमारे अंदर पैदा हो जाए। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत उज़्मा एक शुजात वाली शहादत और एक ऐसी अजीम शहादत जिसने दुनिया में एक इनकलाब बरपा किया और रहती दुनिया तक उस शहादत उज़्मा से लोग सबक हासिल करते रहेंगे और जहाँ जहाँ भी जुल्म शद्दत बढ़ेगा तो वहाँ इमाम हुसैन व आला जद्दिही व अलैहि सलाम की शहादत और आपके नफूस कुदसियाँ और आपके शहजादों की कुर्बानियों को याद करने के बाद उम्मत को एक नया हौसला फराहम होता है और उसके ज़रिए से एक नया जज्बा पैदा होता है जिसके नतीजे में इस्लाम की आगे तरवीज व इशात होती है। हम यके बाद दिगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस उनवान पर मुसलसल गुफ्तगू करेंगे और शहादत इमाम हुसैन व आला जद्दिही ही वाली सलाम को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका करबलाए मुअल्ला से रिश्ता बावस्ता हो जाए और आपको ये इतना ताज़ा हो जाए ताकि आपका आपको महसूस हो कि आप करबला शरीफ में हैं और इमाम हुसैन व आला जद्दिही व अलैहि सलाम की बारगाह से फैज़ हासिल कर रहे हैं। हम सिलसिला वार इसको बयान करेंगे। आज हमने अपने उनवान को रखा है अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की अजमत और शान को। इस हवाले से फिर सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई हैं जिनको हसानुल हिंद कहा गया, उन्होंने अहले बैत अतहार की शान में कसीदा लिखा जिसका उनवान ये था कि ज़बान से हो बयान मदह खान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खान अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आए तथहीर से जाहिर है शान अहले बैत, इनके घर में बे इजाज़त जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत, रमज का मैदान बना है जलवगाह हुस्न व इश्क, करबला में हो रहा है इम्तिहान अहले बैत, फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने खून से सींचा गया गुलस्तान अहले बैत, हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूब रूदुल्हा बना है हर जवान अहले बैत, ए शबाब फसल गुल ये चल गई कैसी हवा, कट रहा है लहलहाता हुआ बोस्तान
दीवाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेरा है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। फातमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। वक्त रुखसत कह रहा है खाक में मिलता सुहाग, लो सलाम आखिर ऐ बेवगाने अहले बैत। घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख जाए, जान आलम हो फिदा ऐ खानदान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है, और ये शरफ़ ये अजमत अल्लाह तबारक व तआला ने इस ख़ानदान को हुजूर के सदक़े में अता फ़रमाई। अल्लाह जल्ला शानहु फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत यानी ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम पाक और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा जानेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत इकराम की अजमत व फजीलत और उनके दर्जात व मरातिब को वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया। हज़रत इमाम अबू जाफ़र मुहम्मद बिन जरीर तिबरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि अहले आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह ताला चाहता है कि तुम से हर बुरी बातों और फहश चीज़ों को दूर रखे और तुम्हें गुनाहों के मैल कुचैल से साफ रखे। हज़रत सईद बिन कतादा रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि इस आयत करीमा से अहले बैत मुराद हैं और जिन्हें अल्लाह ताला ने हर बुराई से पाक रखा है और अपनी मखसूस रह

जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीज़ें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से दूर फरमा दी। इस आयत करीमा की तफसीर में इससे ये वाज़े तौर पर मालूम हो गया कि इनसे ये तमाम चीज़ें यानी लफ्ज़ रिज्स जिन जिन चीज़ों पर बोला जाता है और जो जो मानी उससे निकलते हैं, जो जो मफाहिम और मतालिब उससे समझ में आते हैं, उन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम को उससे महफूज रखा है। हज़रत इमाम ज़ुहरी ने फरमाया कि रिज्स नापसंदीदा चीज़ों को कहते हैं, चाहे वो अमल हो या गैर अमल। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत इकराम से हर किस्म की नापसंदीदा चीज़ दूर फरमा दी है। इस आयत करीमा में अहले बैत से कौन लोग मुराद हैं, इसके बारे में मुफस्सरीन इकराम का इख्तिलाफ़ है। इमाम बगवी, इमाम खाजिन और बहुत सारे दूसरे मुफस्सरीन के मुताबिक एक जमात जिनमें सहाबी रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला ताबईन में से हज़रत मुजाहिद और हज़रत क़तादा वग़ैरह इन रदी अल्लाह तआला मजमईन शामिल हैं। वह इस तरफ गए हैं कि अहले बैत से मुराद अहले आबा यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली पाक मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातमत ज़हरा, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन इसमें शामिल हैं। और यही वो हज़रात हैं जिनको पंजतन पाक कहा गया। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन शहीद करबला, हज़रत सैदा फ़ातमत ज़हरा, हज़रत अली पाक मुर्तज़ा रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हुम अजमईन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं को हम पंजतन पाक कहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये नफूस कुदसिया हाजिर हुए और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर लंबी चादर को तान लिया और चादर को तानने के बाद इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुसिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और ये आयत करीमा में फिर अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैति फज़हिब अन्हुम रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा, यानी ए इलाही, ए अल्लाह ताला, ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर नापाकी दूर फरमा और उन्हें पाक करके खूब सुथरा कर दें। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला ने चादर उठाई ताकि वो भी उनके साथ दाखिल हो जाएं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ से चादर को ले लिया और इरशाद फरमाया, तुम जहाँ हो बहुत अच्छी हो, मैं भी आप लोगों के साथ में हूँ। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नका मिन अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम अला खैरिन, यानी तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज में से हो, भलाई पर हो। अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन, जिनको पंजतन पाक कहा गया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने बारहा इनके लिए दुआ फरमाई। और ये इस हदीस से साबित हुआ कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, दूसरे अली पाक मुर्तज़ा हैं, तीसरी सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं और चौथे इमाम हसन मुज्तबा और पांच में इमाम हुसैन शहीद करबला और चादर इनके ऊपर हैं। और चादर को तानने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा कर साबित कर दिया कि ये अहले बैत अतहार नफूस कुदसियाँ हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैत फ़ज़हिब अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा, अल्लाह इनसे ये मेरी अहले बैत हैं और इनसे हर नापाकी को दूर फरमा दें। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब ये आयत करीमा नाजिल हो गई जो मैंने तिलावत की है, जब फ़जर की नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते तो सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मकान के पास से गुज़रते, वे फरमाते, अस्सलातु अहलुल बैती, ये ऐ मेरी अहले बैत नमाज के लिए उठ जाओ। फिर ये आयत करीमा तिलावत फरमाते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद 40 रोज तक मुसलसल 40 डेज सुबह के वक्त जब फजर की नमाज का वक्त होता तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सैयदा तय्यबा फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह तआला के दरवाजे पर तशरीफ़ लाते और फरमाया करते थे, अस्सलामु अलैकुम
أهل البيت ورحمة الله وبركاته الصلاة رحمكم الله یعنی اہل بیت تم پر خدا تعالیٰ کی سلامتی ہو رحمت اور برکت ہو نماز پڑھو تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی

0: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरीक़ाकार 7 महीने 7 मंथ तक जारी उसारी रहा कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई एक रिवायत में 8 महीने 8 मंथ तक ये सिलसिला जारी रहा कि अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम हर फजर की नमाज के लिए आते और आने के बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फरमाते और सलाम करने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम फरमाते तुम मेरी अहले बैत हो, अल्लाह ताला तुम्हें हर नापाकी से दूर फरमा दे। लिहाजा इन तमाम अहादीस और रिवायात सहिया से ये बात साबित हो गई कि ये अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अली मजमईन की जमात है जिनमें ये 5 नफूस कुदसियाँ बतौर ख़ास अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामिल फरमाया, उनके लिए दुआ फरमाई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की ये नफूस कुदसियाँ हैं। दूसरी आयत करीमा जब जिसको आयत मुबाहला कहा गया है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के 3रे पारे में है, जब नजरान के यहूद नसरानी ईसाइयों ने जब चैलेंज किया था और जब मुबाहले के लिए तैयार हुए उनका बहुत बड़ा शेख था अबू समी, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ठीक है तुम अपनी जानों को ले आओ हम अपनी जानों को ले आएँ, तुम अपनी औरतों को ले आओ हम अपनी औरतों को ले आएँ, तुम अपने बेटों को ले आओ हम अपने बेटों को ले आएँ, और तुम मनब तहिल फना जल्लानतल्लामिन, फिर एक दूसरे के लिए दुआए जो है हलाकत करेंगे और जो भी झूठा होगा अल्लाह ताला की उस पर लानत हो। जब ये बात हुई और ये तैब तमाम हो गया तो मुख्तसर ये है कि जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए लेकर गए तो हज़रत अली पाक मुर्तज़ा को बुलाया, हज़रत सैयदा फ़ातिमा तुज़ारा हसनैन करीमैन को बुलाया, जब नज्जारान के पादरियों ने आते हुए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हुज़ूर के दोनों साइड में दाईं तरफ इमाम हसन मुस्तबा लेफ़्ट में इमाम हुसैन शहीद करबला को देखा तो देखने के बाद उनका जो बहुत बड़ा पादरी था उसका नाम था अब्दुस्सवी, उसने अब्दुल मसीह उसका नाम था, उसने कहा इन्नी लअरा वुजूहन लौ सालुल्लाह अन युज़ीला जबलन मिन मकामिही ला ज़ाला लहू, बेशक मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं अगर ये लोग अल्लाह ताला से पहाड़ को हटाने के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह ताला पहाड़ को इस जगह से हटा देगा, लिहाजा अगर इन्होंने दुआ कर दी तो क़यामत के दिन तक कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा, लिहाजा अपने रास्ते छोड़ दो और जगह छोड़कर भाग जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि बारक वसल्लमा की ये नफूस कुदसियाँ जिनके बारे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमा अपने बेटे ले आओ, तो बेटों की बात आई तो हसन हुसैन को बुलाया, और जब बेबियों और बात आई कि अपनी औरतों ले आओ तो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा को बुलाया, और अपनी जान की बारी आई अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली पाक मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला की आवाज़ दी। ये वो नफूस कुदसियाँ हैं अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जिनका मकाम बहुत बुलंद व बाला है। अल्लाह तबारक व तआला इनके फैज़ान करम से हम तमाम को मालामाल फरमाए। अपने घरों में इनका जिक्र कीजिएगा, घरों में बरकतें होती हैं, और जिक्र खैर से सैयदा फ़ातिमा तुज़्ज़ारा अली पाक मुर्तज़ा अहले बैत अतहार के जिक्र को अपने घरों में रखें, अपने बच्चों को सुनाएँ, अपने बच्चों को डिलीवर करें, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इसमें खैर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौजूद सामईन, अभी आप समात फरमा रहे थे खतीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मार्क्स पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान को सुनने के बाद आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए एक ऐलान। मुस्लिम सीनियर लेडीज़ एसोसिएशन वाले पीतो की जानिब से बुध 17 जून से 26 जून तक रोज़ाना बाद नमाज ईशा माह मुहर्रम के मौके पर 9 बिस लेक्लेजियो वाले पीतो पोर्ट लुइस में नूरानी महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है।

सरे श्रोतलारा इंतटितोने नेटी सौंदर्य लहरी कार्यक्रम पूर्ति अवुतुन्नदी कार्यक्रम विनी मीकु नच्चिंदनी ना आकांक्ष इंको कार्यक्रम वरकू नेनु विश्वामी दग्गर सेलवु तीसुकुंटुन्नानु शुभ दिनं नमस्कारं।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: स्वर तरंग,
3: स्वर तरंग।
4: संगीत प्रेमी श्रोत्यानो नमस्कार, सुस्वागतम स्वर तरंग कार्यक्रम में आप अपने स्वागत सु तरह सीखो में आशा करते कि आप ठीक आहत मजेद आहत एंड चुनी करेट आहत ऑन NBC रेडियो तरह सीखो अर्ध्यता साथ सा कार्यक्रम है तुम्हार सगल्यांच्या मनोरंजना साठी तरह सीखो नक्की साध्या कार्यक्रमाचा शेवट पर्यंत आणि सुरुवात करूया आजचा आपला संगीतमय कार्यक्रम एका अप्रतिम गणेश गाण्यांनी।

0: इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सुया के निवासियों को सूचित किया जाता है। जुकोमेयर यूनियन सेंटोबे और स्टाफ क्वार्टर्स सेंटोबे के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल गुरुवार 18 जून 2020 को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर अव्यजपस्त के रहने वालों को सूचित किया जाता है खासतौर जरीबुआ के गुरुवार 18 जून 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन असुविधाओं के लिए सी भी अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर शुरू हो जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे चंद विज्ञप्तियों सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। ये रेडियो मॉरिशस है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बपना पना बे वागी चुकिया छे।
3: गुजरात नी सुगंध, गुजरात नो रंग, गुर्जरी धरा ना मीठा झरना, एमबीसी रेडियो पर।

साढ़े ढाई बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और यहाँ पर प्रस्तुत है आपकी पसंद प्रोग्राम और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए साथ देंगे चार बजे तक और उम्मीद है कि आप लोग भी साथ देंगे। नंबर है 4028085402885 और मैसेजेस आप भेज रहे हैं ऑन भेज सकते हैं ऑन 5251705। धन्यवाद। और चलिए आज का जो पहला गाना है बहुत ही प्यारा गाना बड़े दिल वाला फिल्म से लिया गया किशोरदा की आवाज़ में।

आपकी पसंद। 2:47 हुए हैं और यहाँ पर अगला गाना हम चलाने जा रहे हैं। आज की पहली फरमाइश मोडालबिया के रहने वाली अनीता जी गाना मांग रही हैं अपनी भतीजी के लिए। जी हाँ, भतीजी का सालगिरह है और उनका नाम है दीपशिका हिटू। ढेर सारी शुभकामनाएं मामा दीपा, पापा विकास, बहन दीक्षा, खुशी, भाई केश, वीर, चाचा संजीव, चाची चंदा और नाना नानी की ओर से और पूरे हितू परिवार की ओर से और गोगा परिवार बधाई दे रहे हैं आपको दीपशिका। तो चलिए ये गाना आपके नाम, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर।

आपकी पसंद। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला गाना खास कर महाराज सुमारू जी के लिए और वो रहती है काथोबोन। इस समय हमें सुन रही है और गाना वो मांग रही है फिल्म प्रिंस से लिया गया। जी हाँ, लंबा गाना है लेकिन खूबसूरत गाना है। गाने की बोल है, मदहोश हवा मतवाली फिजा। जी हाँ, आजकल तो ठंडी का मौसम चल रही है और यहाँ पर गाना खास कर वो मांग रही है अपने लिए और पूरे सुमारू परिवार के लिए।

0: 2:53 हुए हैं और आज का ये अगला गाना, जी हाँ अगला गाना किशोरदा की आवाज़ में सुनते हैं। और ये गाना जाएगा रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं वो बासा से, और यही गीत हमें लेकर जाएगा 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर।
1: दोस्ती यारी मोहब्बत क्या है, कुछ भी नहीं

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। अदालती कार्रवाई की ये खबर इस खबर से शुरू करते हैं। मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल की स्थानीय शाखा की निदेशिका करीना निजस और पूर्व मंत्री रंगानाथन पडियाची और सुरेश कालीचरण के बीच फोन पर हुई बातचीत के दौरान ईंधन की खरीद को लेकर ठेका प्रदान करने की बात हुई थी, जबकि मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल बिडिंग एक्सरसाइज में नहीं था। ये बात एफसीसी के प्रतिनिधि ने आज सुबह पोटली अदालत में कही, जबकि उन्होंने ये कहा कि पूर्व मंत्री रंगानाथन पडियाची और सुरेश कालीचरण को यानी उन्हें इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि डिजिटल सबूत मिले थे और आज दोनों पोटली अदालत में पेश हुए। उन पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन का अस्थायी आरोप दर्ज किया गया है। आज शर्त पर उन्हें रिहा किया गया। दोनों को 4,00,000 रुपए की 2 जमानतें भरनी पड़ी हैं और कुछ सख्त शर्तें लगाई गई हैं। उन्हें किसी भी तरह करीना निजस और राजीव सरवान सिंह के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बात नहीं करनी होगी। आपको बता दें कि कई समर्थक अदालत में मौजूद थे। और ये चर्चा यानी मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम इंटरनेशनल की बात करीब 3 सालों से चल रही है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने ईंधन की सप्लाई को लेकर मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को $691 मिलियन बेशक अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा रुपए का ठेका प्रदान किया था। 16 जून की तारीख दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतीकात्मक। कल युवा दिवस मनाया गया। 1976 में सोवियतो की घटना की याद में हजारों की तादाद में छात्रों ने उस वक्त भेदभाव के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और मुशरस में दक्षिण अफ्रीका की सिफारत ने ओरम गॉर्डन थियानो में एक औपचारिक रिसेप्शन का आयोजन किया। मौके पर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम खास मेहमान रहे। कूटनीतिक दल के मेम्बरानों की भी हाजिरी रही है। G7 शिखर सम्मेलन में सभी नेता वचनबद्ध रहे हैं कि रूस की अर्थनीति पर दबाव बढ़ाना चाहिए, नए संकल्प का समर्थन करने और इसे तेजी से अमल में लाने के लिए हवाई प्रतिरक्षा ताकतों के अलावा इंटरसेप्टर्स को फराहम किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि वो गैस और तेल के क्षेत्रों में रूस पर अपनी पाबंदियां और ठोस करेंगे। फुटबॉल में एक बार फिर फैंस ने मैदान के शेर लियोनेल मेसी का कमाल देखा। उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप हैट्रिक कायम कर दिया। अपने 16वें गोल करके मेसी ने साबित कर दिया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने अल्जीरिया के मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए 3 गोल कर दिए। फुटबॉल परस्तारों के लिए ये मैच काफी यादगार रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

आपकी पसंद। तीन बजकर चार मिनट हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जी हाँ, यहाँ पर हम जारी रखते हैं ये खूबसूरत कार्यक्रम और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए और साथ निभाऊंगी चार बजे तक। का नंबर है 4028085408585। और यहाँ पर गाना हम चलाएंगे खासकर आखिर क्यों फिल्म से लिया गया और ये गाना खासकर विश्वानी डुमन जी की ओर से। और गाना वो मांग रही हैं बहन नीला, इंदिरा, शारदा, प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर के लिए।

चलिए अगला गाना हम चलाएंगे अमृता जी के लिए जो हमें सुन रही है मेबर्ग से, गाना खास कर उनकी बेटी नाजिमा और पूरे परिवार के लिए। 3:10 हुए हैं।

0: आपकी पसंद।
1: सवा तीन बज चुके हैं और चलिए यहाँ पर गाना हम चलाएंगे। शानाया की ओर से और वो हमें सुन रही है इस समय वाकवा से गाना, खासकर वो मांग रही है अपने नाना जी के लिए। फिल्म का नाम है उसने कहा था और आवाज़ है मन्ना दे साहब और साथ में सबिता बनर्जी। चलिए ये गाना उनके नाम हम चला रहे हैं।

3:20 और यहाँ पर गाना खासकर हम चला रहे हैं शिमला के लिए. वो रहती है बेल रोज और गाना खासकर वो मांग रही है नमलेश बहन बेटी कीर्तना बेटा नमलेश बहन रूमा आरती और साथ में है भाई राकेश और धीरज के नाम.

आपकी पसंद। जी हाँ, हेमलता की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गाना, और बहुत ही प्यारा गाना। इस मौसम में हमने सुना है कि अभी तो बारिश हो रही है बाहर, और अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हैं और हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ सावधानी से और बी केयरफुल, और हमारे जो प्रोग्राम है, हमारा जो प्रोग्राम है उसको आप लोग एंजॉय कीजिए। चलिए, 3:27 हुए हैं और यहाँ पर इंद्रानी जी जो हमें सुन रही हैं सूरीनाम से, बहुत धन्यवाद आपको, आप जुड़ चुके हैं और गाना आप मांग रहे हैं आराधना फिल्म से लिया गया किशोरदा की आवाज़ में।

3:33 हुए हैं और यहाँ पर गाना दोस्ती फिल्म से लिया गया और रफ़ी साहब की आवाज़ में खासकर हम चलाने जा रहे हैं विद्या जी के लिए. वो हमें सुन रही हैं यूनियन पार्क से और खासकर गाना वो मांग रही है उनकी चाची कुमारी बहन सती और सुरेखा बाबिता और सुनीता के लिए.

आपकी पसंद। चलिए, लगता है इस मौसम में रफ़ी साहब के गाने सुनने का बहुत ही मन कर रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में हम सुनने जा रहे हैं, और ख़ासकर ये गाना फिल्म मैं चुप रहूँगी से लिया गया, और ख़ासकर हम चला रहे हैं ये गाना सरिता जी के लिए, जो हमें सुन रही है काठमांडू से, गाना उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए। और यहाँ पर ज्योति जी हैं जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम यूनियन पार्क, गाना वो मांग रही हैं प्रीति मयूर आदर्श वेदना विमला विवेक और अविष्टा के लिए, और साथ ही साथ में हमारे तमाम सुनने वालों के लिए जो जुड़े हुए हैं। चलिए, रफ़ी साहब के सभी चाहने वालों के लिए

चलिए अगला गीत सुनते हैं, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, और ये गाना खासकर अर्जुन के लिए जो हमें सुन रहे हैं मेबर्ग से। खासकर गाना वो मांग रहे हैं अपनी प्यारी पत्नी देवीना के नाम, और हमारे सभी 90s लवर्स के लिए।

जी हाँ, 3:52 हुए हैं प्यारे दोस्तों, और आप लोगों ने साथ दिया इस खूबसूरत कार्यक्रम में। वैसे आज कई लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। और यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे आशा जानू जी के लिए, वो रहती हैं कोतेज, और गाना वो खास कर मांग रही हैं अपनी बहन, जी हाँ बहन का नाम है, बहन का नाम तो नहीं लिखा आपने, स्वीट सिस्टर्स बर्थडे बेस्ट विशेस फ्रॉम मामा कुमारी, भाई शुभ, बेटा शुभम और ऋषभ, दीदी आशा और उनके पति राज और पूरे जानू फैमिली की ओर से। और कहते हैं ना, जन्मदिन एक ही बार आता है साल में, तो चलिए मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप लोग खूब एंजॉय कीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए हमेशा। और इसी के साथ, इस खूबसूरत गाने के साथ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जाने से पहले उन तमाम लोगों के लिए हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो आपको, जहाँ आप भी हैं इस समय हमें सुन रहे हैं, तो चलिए आपको हम नहीं भूले हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला, अपने साथ दिया बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी मुलाकात होगी मैं और रोशन भाई आज शाम 5:00, जी हाँ अंताक्षरी प्रोग्राम में, तो आप हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ। 4:00 भूलिएगा नहीं, आप सुन पाएंगे मराठी प्रोग्राम शिरीष रामा की प्रस्तुति में। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए और ये गाना चल पड़ा।

प्रिय श्रोतागण नमस्ते, हम देवराज विदेशी मॉरिशस के इंडस्ट्री ऑथोरिटी के तरफ से आप लोगन के स्वागत करत है आज के मासिक खेती बाड़ी रेडियो कार्यक्रम में। आज के प्रोग्राम में बात करब जा गन्ना में चीनी के मात्रा के आकलन पर, यानी कि सुगर असेसमेंट पर। प्रिय श्रोतागण, सुगर असेसमेंट एगो ऐसन प्रक्रिया है जिनकर से कानूनी तौर पर ई निर्णय सकल जाए लेवे कि जब किसान एक

टन गन्ना अपन खेत से मुल्ला भेजेला तो ओके वो एक टन गन्ना पर कितना चीनी और कितना मेलास मिली, ताकि सैंजिका जिसिक या ओकर कोपेगा चीफ वही हिसाब से उ किसान के ओकर चीनी और मेलास के पैसा गनती करके ओके चुकावी, मतलब कि पेये करी। अब आप लोगन के ई जानकारी देवब जा कि काहे चहेला गन्ना में चीनी के मात्रा के आकलन यानी कि असेस करे के और ओकर कौन महत्व बा। गन्ना के खेतियर लोग के पैसा गन्ना के नहीं बल्कि ओकर में से प्राप्त होल चीनी मेलास और बागास के मिलेला। मुल्ला में अनेक किसान और मुल्ला होला के खेत के गन्ना भी ताज़ा हो या जरल गन्ना सब एक साथ में एक ही समय में पेड़ के चीनी पैदा करल जाला। तो ये जाने खातिर कि कौन किसान के गन्ना में से कितना चीनी पैदा होल, ये ज़रूरी है कि गन्ना पेरे से पहले ही ओकर में जांच यानी कि टेस्ट करके देखे के। सुगर असेसमेंट एगो महत्वपूर्ण कार्य है और साथ में एगो बहुत जिम्मेदारी के काम है। तो सरकार ये कार्य मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी के एगो विभाग है, कंट्रोल एंड आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट, जेके सियादे से भी जाने बोली ला जा ओके सौंप लेवा। प्रिय श्रोतागण, चला देखी जा कि सियादे इस सुगा असेसमेंट प्रक्रिया के कैसे अमल में लावेला। जब खेत से गन्ना मूला में पहुँचेला तो सियादे के कर्मचारी उ गन्ना के खेवा मतलब कि वायाज में से एगो सौचों यानी कि एगो सैंपल लेके उमें जांच टेस्ट करेला। लेकिन बात यह कि सियादे सब या हर खेवा गन्ना में से नहीं सकी ए सौचों लेके जांच करे, इसे बहुत खर्चा होय और समय भी लगी। तो कार्य आसान करे खातिर जितना खेत एगो बड़ा इलाका या आसपास के दो या तीन गो छोटा इलाका के खेत हा ओके से आधे एक ही गो कंट्रोल बोर्ड रीजन के तहत जोड़ देवेला और एगो सीबीआर कोड के पहचान देवेला। उसी तरह जे एगो इलाका के बहुत से खेत कोनो कोपेराटिव क्रेडिट सोसाइटी जैसे सीसीएस भी बोला जा मैं पंज जे ऑगस्ट्रे कर रही तो से आधे उ खेतवन के गन्ना के एगो अलग से सीबीआर के तहत जोड़ के एगो अलग कंट्रोल बोर्ड रीजन कोड से पहचान करेला। जे कोनो किसान अकेले या संगठन में मतलब कि ग्रुपमों में रह के 300 या ओकर से ज़्यादा गन्ना के उत्पादन करत होई तो उस सकी कंट्रोल एंड आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट से एगो खुद के या ग्रुपमों के एगो अलग सेपरेट सीबीआर के मांग करी। ई मांग चहला साल के 15 मार्च से आगे ही सियादे के डायरेक्टर से लिखित पत्र के द्वारा करेंगे, ताकि सियादे अपन बोर्ड मीटिंग में निर्णय लेके अलग कंट्रोल बोर्ड रीजन के मंजूरी एसआईएफबी के रजिस्ट्रेशन शुरू होवे से पहले ही दे देवे। प्रिया श्रोतागण, जब किसान के खेत से गन्ना मुल्ला पहुँचेला तो उ खेत के कंट्रोल बोर्ड रीजन के मुताबिक बेतरदीब ढंग से रैंडम सैंपलिंग के जरिए उ खेवा गन्ना में से एगो नमूना एसोचों लेके प्रयोगशाला मतलब कि लैबोरेटरी में ऊपर जांच करल जाला। फिलहाल देश भर में 3 गो मुल्ला बा और सब मुल्ला में से आधे के एगो प्रयोगशाला लैबोरेटरी है। जहाँ के मुल्ला बंद हो गल बा फिर भी किसान वहाँ के तुला यानी कि बैलेंस पर गन्ना भेजेला, वहाँ पर भी से आधे के कर्मचारी मौजूद है ताकि गन्ना के खेवा में से नमूना सकी निकाले। प्रिय श्रोतागण, अब ई जानकारी देवब जा कि से आधे के लैबोरेटरी में गन्ना के सैंपल में कौन कौन से जांच मतलब कि टेस्ट करल जाला। जब गन्ना के सैंपल लैबोरेटरी में लावल जाला तो सबसे पहला उस सैंपल के एगो मशीन के द्वारा बुआई करल जाला, मान लो वैसे ही जैसे मुल्ला में गन्ना के पेरल जाला। तब उ बुआई करल सैंपल में से 1 किलोग्राम तौल

के हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए लगभग ओकर में से सब रस निकालल जाला। उ रस में इलेक्ट्रॉनिक रिफ्रैक्टोमीटर मशीन के जरिए ओकर ब्रिक्स के मात्रा देखल जाला और उस संख्या कंप्यूटर में अपने आप से रिकॉर्ड होवेला। ब्रिक्स का है? ब्रिक्स यानी कि गन्ना के रस में कितना घुलनशील पदार्थ बा। जैसे अंग्रेजी में बोलीला सा कॉन्टेंट ऑफ ऑल सोल्युबल सॉलिड इन जूस, उ में सुक्रोज भी है और नॉन सुक्रोज भी है। गन्ना के रस में जो दूसरा जांच होवेला उहा ओकर पुल, मतलब कि उ रस में कितना असल चीनी बा, यानी कि कितना अपारेंट सुक्रोज बा। जब पोल के डिवीजे करब सा ओकर ब्रिक से, तो उ गन्ना के रस के शुद्धता यानी कि पीरिते के प्रतिशत सकब सा जाने। और याद रहे कि उ रस के पीरिते चहला 72% से ज़्यादा रहे के, 72% से जस्ती चाहिए रहे के, नहीं तो मुल्ला उ गन्ना के सकी घुमा देवे। और तीसरा जांच है कि जब हम 1 किलोग्राम सैंपल में से जब सब रस निकला जाला, तब फिर से ओके तौले के इसे जानब जा कि गन्ना में कितना खोया, मतलब कि फिब यानी कि बगास के मात्रा। मुल्ला में ई जांच भी करल जाला कि 1 टन गन्ना से मुल्ला में कितना चीनी सकलगल पैदा करे। तो सियादे के शुगर टेक्नोलॉजिस्ट लोग इस सब जांच के आधार पर एगो शुगर असेसमेंट रिपोर्ट जारी करेलन जा, जोन में हर एगो कंट्रोल बोर्ड रीजन के चीनी के मात्रा के संख्या लिखल है। साल में कुल मिला के 4 गो शुगर असेसमेंट रिपोर्ट निकालल जाला। इनमें से पहला 3 गोवा प्रोविजनल रिपोर्ट है, जोन कटनी के दौरान ही निकालल जाला, और जोन अंतिम फाइनल रिपोर्ट है उ कटनी के लगभग 2 या 3 महीना बाद में निकलेला। पहला प्रोविजनल असेसमेंट रिपोर्ट कटनी के शुरू होला तारीख से लगभग 7 से 90 दिन 67 से 90 दिन के अंतर्गत में निकलेला, धरला अगस्त के महीना में। दूसरा प्रोविजनल रिपोर्ट लगभग 120 दिन के बाद में निकलेला, अक्टूबर महीना के शुरुआत में। तीसरा प्रोविजनल रिपोर्ट 140 से 150 दिन के अंतर्गत में निकलेला। प्रिय श्रोतागण, गन्ना में चीनी के मात्रा बहुत से कारक यानी कि फाक्तेय पर निर्भर है, जैसे कि ओकर वायते, कटनी के समय, गन्ना के उम्र, ओकर लाज, काटल गन्ना कितना देरी से मुल्ला पहुँचेला, खासकर जे गन्ना चरल रही था, गन्ना कितना साफ से कटा के मुल्ला भेजल गल, मतलब कि उमें कितना लापाई या सापो जैसे बुढ़ बोल जा साथ में बा। जब वायते देखब सा, तो पहला बात सब वायते में चीनी के मात्रा एक समान नहीं है। कोनो वायते में चीनी के मात्रा दूसर वायते के तुलना में ज़्यादा रहेला, तो कोनो में कम। वायते से जुड़ल दूसरा ज़रूरी जानकारी जोन किसान के चहला जाने के कि खेत में जब गन्ना पक जाला तभी ओके काट के मुल्ला भेजे के। कोनो कोनो वायते कटनी के शुरुआत ही में जून या जुलाई के महीना में ही पक जाला, जेके अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी बोली ला जा। उदाहरण के तौर पर बा वायते एम सकंदे बा 78, दूसर वायते बा एम 13 92 00। और वायते है कि कटनी के मध्य में उत महीना में पकेला, तो कोनो कटनी के अंत समय में पकेला, जैसे कि बोला सा लेट मैच्योरिंग वैरायटी, जैसे बा वायते AS 77 और वायते AS 79। तो ई वायते के चहला भर सक सेप्तम महीना या ओकर बाद में काटे के। प्रिया श्रोतागण, हालांकि किसान के पास थोड़ा जानकारी है कि कौन वायते के गन्ना कब पकेला, तो ओके काटे के चाहिए, फिर भी अगर जे ऊ जाने खोजी कि ओकर

खेत के गन्ना पक गल बा कि नहीं, तो उ सकी उ गन्ना के वृक्ष के टेस्ट करे। गन्ना में वृक्ष के टेस्ट करे खातिर एगो यंत्र एगो लैस्ट्रीमो के इस्तेमाल होला, जेकर नाम हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। गन्ना के एक या दू ठोप रस उमे डाल के सकबा ओकर वृक्ष के मात्रा देखे। जब एगो गन्ना के नीचे के भाग और ऊपर के भाग के वृक्ष के मात्रा 20 डिग्री या ओकर से ज़्यादा हो जाए और नीचे के भाग के वृक्ष और ऊपर के भाग के वृक्ष में बहुत कम अंतर रही, तो मान लो वो गन्ना पक गल बा। अगर कोनो किसान अपन खेत के गन्ना काटे से पहले जाने खोजी कि वो गन्ना पक गल बा कि नहीं, तो उसके पास के फार्मर सर्विस सेंटर से टेस्ट करे के मांग करे। प्रिय श्रोतागण, जब एगो सुगा असेसमेंट रिपोर्ट देखब जा, तो उमे खास कर जरल गन्ना के एगो अलग सी भी हा। जरल गन्ना तेजी से खराब होवेला। ओकर रस में सुखोज जोन है उ टूट के ग्लूकोज और फुकोज में परिवर्तित होए लगेला और साथ में गन्ना सूखे भी लगेला। ई कारण से खेतियर लोग के ई सलाह देवल जाला कि जरल गन्ना के चहला 48 घंटा से कागौची तैयारों से पहले ही मुल्ला भेज देवे के। अगर जे किसान जरल गन्ना काट के 2 से ज़्यादा दिन के बाद में मुल्ला भेजी, तो ओके चहला वहाँ के सियादे दफ्तर में जनावे के, तब उ गन्ना जरल गन्ना के कंट्रोल बोर्ड रीजन के तहत टेस्ट होके जाए। ऐसा करले से इलाकाई कंट्रोल बोर्ड रीजन या कोपेराचीव एवं खुद के कंट्रोल बोर्ड रीजन के चीनी के मात्रा में भारी गिरावट से सकल जाए बचे। प्रिय श्रोतागण, अब आज के प्रोग्राम के अंतिम चरण पर आगल है जा। एक बार फिर से आप लोगन के याद दिलावत है कि आज सुगा असेसमेंट और ओकर महत्व पर बात कर ली जा। ज़्यादा जानकारी खातिर तो और पास के फॉर्मर सर्विस सेंटर से संपर्क रखे सकब। आप लोगन के ध्यान खातिर धन्यवाद और आशा करत है कि आप लोगन के शाम मंगलमय हुई।

0: हमको भी है सबका पता कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं प्रोग्राम अंताक्षरी के लिए।
1: अंताक्षरी

0: प्यारे प्यारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। आपसे एक और मुलाकात के लिए हम दोनों कब से थे बेताब।
1: जी हाँ, नमस्कार श्रोताओं, और यहाँ पर हम लेकर आए हैं एक बार फिर से ये खूबसूरत कार्यक्रम अंताक्षरी प्रोग्राम।
0: अंताक्षरी, जो उषा जी और रोशन की प्रस्तुति में हर सप्ताह होता है। और जी आप बता दीजिए कि आज हम लाइव हैं या नहीं।
1: हाँ जी, हम लाइव हैं और अभी लाइव शुरू हो चुका है, लाइव टिकटॉक, क्योंकि कई लोग इस कार्यक्रम का इंतजार करती हैं अब, तो हम आपको कैसे भूल सकते हैं।
0: जी हाँ, तो जस्ट ओपन योर टिकटॉक और आप लोग कीजिए अनलॉक और हम करेंगे यहाँ पर रॉक। तो चलिए अंताक्षरी प्रोग्राम, और अभी जून

0: महीने में है हमने बहना
1: जी, बिल्कुल।
0: तो संगीत मास है यानी म्यूजिक मंथ,
1: म्यूजिक मंथ,
0: और इसी उपलक्ष में हम आपके लिए एक अलग सा विषय लाए हैं। कल था मिटुंडा का जन्म दिवस, द माइकल जैक्सन ऑफ इंडियन सिनेमा। और चलिए हम श्रोताओं को का काम आसान कर देते हैं, उनको पहला गाना गाना होगा मिटुंडा पर
1: जी।
0: और दूसरा गाना जो है एक लिस्ट है फिल्म की, जो म्यूजिकल फिल्म्स हैं जो उषा जी ने तैयार किया है, तो उस लिस्ट में से कोई भी फिल्म का नाम उषा जी आपको देंगी और आपको उस फिल्म से कोई भी गाना गाना पड़ेगा
1: जी। और यहाँ पर आपको याद दिला दे, नंबर है 4028085, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और ज़रूर आप मैसेजेस कर सकते हैं 5251705। और जो लोग लाइव टिकटॉक पर देख रहे हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो लाइव है आप इस पेज को फॉलो करें, इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, ताकि उन लोगों को पता चले कि यहाँ पर AM2 रेडियो मॉरिशस में क्या हो रहा है,
0: क्या हो रहा है। लेकिन कोई कोई दोस्त हमसे पूछ रहे हैं कि अगर टिकटॉक पर जाएंगे तो क्या हम टाइप करेंगे ताकि टिकटॉक एम रेडियो मॉरिशस में हम प्रवेश कर सकें।
1: ये तो है AM2 रेडियो मॉरिशस, आप सिर्फ AM रेडियो मॉरिशस टाइप करें, फिर आपको मिलेगा टिकटॉक का पेज और उसको फॉलो करें और हमको भी यहाँ पर हमसे बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जो लोग फ़ोन पर बात करते हैं ना, खेलते हैं, तो वहाँ पर टिकटॉक पर भी वो लोग
0: जवाब देते हैं
1: कमेंट्स के जरिए,
0: तो दिलचस्पी बढ़ाते हैं,
1: दिलचस्पी बढ़ाते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर क्या करें,
0: शुरू करें आरम्भ करें। तो चलिए म्यूजिक मंथ का एक और सत्र हम यहाँ पर मनाएंगे दोनों साथ बैठ कर आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं,
1: यहाँ पर एक कॉलर है। हेलो
0: हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते श्यामा जी फ्रॉम विल्मे।
2: नमस्ते उषा जी।
1: नमस्ते, कैसी है?
2: मैं ठीक हूँ।
0: और आपको कहेंगे म्यूजिक मंथ अभिनंदन हो।
2: आपको भी अभिनंदन हो।
0: अच्छा, मिटुंडा को हम जानते हैं कि आप बेहद ही पसंद करती हैं मिथुन चक्रवर्ती जी को, तो एक गाना,
2: मैं तो मिथुनदा ही के गाना
0: गाने वाली थी।
2: मुझे मालूम है उसका जन्मदिन कल था।
0: ओके, वेरी गुड, आप तो बहुत जानकारी रखती हैं, बहुत ही अच्छा। तो चलिए आप शुरुआत कीजिए, पहला गाना मिथुन चक्रवर्ती जी पर गाइए।

0: अपना
1: कोई
0: मिल जाएगा।
1: जी हाँ, बहुत अच्छा। सुरक्षा फिल्म का गाना आपने गाया है, दिल था अकेला, बहुत ही सुंदर सा गाना। चलिए, आपके लिए तालियां हो जाए। चलिए अब देखते हैं उषा जी ने क्या रखा है, कौन सी फिल्म का नाम आपको देंगे और आपको गाना होगा उस फिल्म से।
2: फिल्म का नाम है गुप्त।
1: गुप्त, गुप्त का कोई भी गाना?
0: ये तो नया
1: फिल्म नहीं है,
2: फिल्म नहीं है,
1: 1997 की फिल्म है ये तो, 1997 की फिल्म है। चलिए आपको थोड़ा मौका देते हैं।
0: नहीं, मुझे नहीं मालूम।
1: नहीं मालूम, कोई बात नहीं।
0: दूसरा बोलो।
2: चलो, बहुत धन्यवाद शमा
1: जी। धन्यवाद शमा जी, कोई बात नहीं।
0: ओके, बाय
1: बाय। चलिए आप बता दीजिए बहना, कौन सा गाना गाएंगी या औरों को मौका देंगी गुप्त फिल्म गाने के लिए?
2: मेरी सांसों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, दिल की राहों में तू,
1: दिल की सांसों में तू। बिल्कुल गुप्त फिल्म का गाना।
2: हाँ, एक और कॉलर लेने से पहले हम यहाँ पर अपने श्रोता जो हमें लाइव टिकटॉक पर देख रहे हैं उनको हाय बोलते हैं। और यहाँ पर हमें देख रही है कृष्णा। हाय कृष्णा, नमस्कार आपको। और नर्वदा रमा स्वामी है, जी हाँ नमस्कार आपको भी। माया रामदोस, वी मिया पाडू नमस्कार, फ्रॉम पृथ्वी यादव येशना ऑफ कनाडा। देखा, कनाडा से हमें लोग देख रहे हैं। सुदेवी जी है, हेलो आपको, बहुत धन्यवाद आप लोग साथ दे रहे हैं। अंजू जी नमस्कार, विशाल जुमन है नमस्कार। चलिए देखते हैं
1: अब लाइन जी।
3: सपने में भी,
2: हेलो,
1: सपने में नहीं हकीकत में आ जाइए। हेलो,

0: नमस्ते रोशन जी, नमस्ते उषा जी,
1: नमस्ते
2: देवी जी फ्रॉम हाइलैंड्स। आपका स्वागत है देवी जी।
0: आप दोनों का भी स्वागत है स्टूडियो में।
2: हाँ, स्टूडियो में तो हम चले आए हैं, लेकिन आपके घर में हमारी आवाज का स्वागत कर किया जा रहा है ना। चलिए आप गाइए मिथुंडा पर कोई भी गाना गाइए।
0: मिथुंडा जी, याद आ रहा है तेरा प्यार, ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, अभी जा अभी जाए के बस।
2: कोई बात नहीं, आपने कोशिश की है। हाँ जी, याद आ रहा है, बहुत ही अच्छा। चलिए, ये गाना तो आपने डिस्को डांसर वाला गाया। अब आपको एक फिल्म का गाना गाना पड़ेगा, एक म्यूजिकल फिल्म का।
0: ओके, कोशिश करेंगे।
2: अच्छा उषा जी, कौन सी फिल्म आपको?
1: अभिमान।
2: अभिमान फिल्म का गाना। जी हाँ,

0: देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रैना। थैंक यू वनमित।
1: बहुत ही अच्छा अभिमान फिल्म का गाना गाया और आप पहली स्टार ऑफ द वीक हैं। दोनों गाने जो आपने गाए
0: थैंक
1: हैं
0: यू,
1: बहुत ही विषय के अनुसार है ना उषा जी।
2: बिल्कुल
1: जी।
0: okay,
1: इस गाने में आपने कभी डांस किया है उषा
2: जी?
1: बहुत बार
2: बहुत बार छोटे थे पता नहीं कितने बार
1: कितनी बार हमने किया। हम मैं तो वो करता था वो जो कैसे है कुश्ती कौलिया उस जमाने में ये करता था
2: कुश्ती कौलिया। ये तो हमने आपको देखा है करते हुए कितने सारे प्रोग्राम आप कभी कभार जब हम ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने भी ट्राई किया है।
1: छलांग लगा देते हैं
2: छलांग मार दिया आपने। चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन है। हेलो और यहाँ पर परी जी है जुड़ चुकी है और जय भी है। हेलो आपको विद्या है मीना बौरो है एंजल रेशमी और विशाल जुमन जो है हमें सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से।
1: बहुत बढ़िया
2: बहुत बढ़िया।
1: ये नाम आप पुकार रही हैं तो दिल को बहुत सुकून प्राप्त हो रहा है इतने सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं।
2: हाँ जी
1: जी। चलिए अब 4028085 पर कौन है विराजमान? हम भी तो आपके लिए जीते
2: Hello?
1: रहते हैं यहाँ पर।
2: हेलो
1: हेलो
3: हेलो
1: नमस्ते
3: नमस्ते
1: नमस्ते। क्या नाम है आपका?
3: सुदेवी
1: जी। ओके मोका से सुदेवी जी।
3: नमस्ते
1: ठीक
3: है।
2: नमस्ते नमस्ते आपको।
1: चलिए सुदेवी जी हम तो ठीक हैं। आप
3: ठीक
1: अपना
3: है।
1: गाना सुनाइए मिथुन दा पर कोई भी गाना आप गा सकती हैं प्लीज।
3: जब से तुमको देखा
1: नहीं जी नहीं ये तो कालिया फिल्म का गाना है अमिताभ बच्चन जी पर है ये तो। मिथुन दा पर कोई भी गाना प्लीज।
3: मिथुन पर जी।
1: हाँ मिथुन पर ये तो कालिया फिल्म का गाना है गाइए।
3: जिमी
1: हाँ जी गाइए।
2: जिमी नहीं आएगा ऐसे
1: ऐसे कहाँ जिमी आएगा सुदेवी जी ऐसे सुदेवी जी भाग जाएंगे। चलिए हम जिमी को बुलाते हैं।
2: जिमी जिमी जिमी अच्छा अच्छा अच्छा जिमी जिमी जिमी
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: जिमी ऐसा आएगा ना।
1: कोई बात नहीं सुदेवी जी। अच्छा ये रहा आपका पहला गाना लेकिन आपने मिथुन दा का गाना चुना तो देखते हैं दूसरा गाना आप इस फिल्म से गा पाएंगी या नहीं। कौन सी फिल्म है उषा जी?
2: आशिकी।
1: आशिकी म्यूजिकल फिल्म आशिकी कोई भी गाना।
3: धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आया धीरे धीरे से दिल को चुराया तुमसे प्यार हमें तो इतना जाने जाना धीरे धीरे से दिल को चुराना।
1: जी हाँ दिल को चुराया आपने डिस्को डांस से नहीं बल्कि आशिकी फिल्म का गाना आपने गाया। कोई बात नहीं जैसे तैसे आपने कोशिश तो कर ली। धन्यवाद आपको बाय।
3: धन्यवाद आपको।
2: धन्यवाद।
1: शुभ रात्रि।
3: थैंक यू बाय।
1: थैंक यू।

0: चलो यहाँ पर कौन है, लेकिन आपको बताएं क्योंकि कुछ लोग गाना मांग रहे हैं, ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है
1: जी,
0: लेकिन यहाँ पर अंताक्षरी प्रोग्राम हो रहा है और शोभा जी है, नमस्ते आपको, और संगीता जी है, आपको भी हम कहते हैं नमस्ते, पूजा बहुत धन्यवाद, और ये नहीं, ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है। चलिए जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो हमारी ओर से उनको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और ट्रियोले से सुनीता, राजन और अनिता में देख रहे हैं। चलिए आप भूलिएगा नहीं, फॉलो लाइव, फॉलो इस लाइव को आप फॉलो
1: कीजिए, लाइक
0: कीजिए और अपनों के साथ शेयर
1: कीजिए।
0: और हम यहाँ देखते हैं कि कौन है। हेलो
1: हेलो
2: हेलो, नमस्ते दर्शन जी।
1: नमस्ते अनिता
2: जी।
1: नमस्ते,
0: नमस्ते।
1: आपका जो रेडियो सेट है ना, प्लीज उसे थोड़ा आप बंद कर दीजिए।
2: बंद कर दिया है, बंद कर दिया है।
1: ओके ओके यार, तो बताइए हमें, आप मिथुंडा पर कोई भी गाना गाइए प्लीज।
2: जी हाँ,

0: बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया, प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से लिया गया, बहुत ही अच्छा। अब उषा जी ने क्या चुना है आपके लिए, चलिए देखते हैं। डरिए मत।
1: फूल और वो है सड़क,
0: सड़क फिल्म का गाना। हाँ जी, सड़क
2: सड़क, संजय दत्त उसमें ना।
0: हाँ जी, गाइए।

0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: कैसे खा लिया आपने कसम?
0: कसम तो खाती है लेकिन तोड़ती तो नहीं है ना कसम। धन्यवाद, बाय
1: बाय।
0: हाँ कोई बात नहीं, मैं ही थोड़ा कसूरवार हो गया हूँ।
1: चलिए देखते हैं कौन है। हेलो हेलो हेलो हेलो।
0: हाँ जी, आपका स्वागत है। कौन है?
1: हेलो
0: हेलो
2: हेलो। नमस्ते।
0: नमस्ते
2: जी।
0: नमस्ते सरिता जी।
2: जी नमस्ते। उषा जी
1: नमस्ते।
0: ओके, हम नमस्कार स्वीकार किया हमने आपका। अब आप मिथुन दा पर कोई भी गाना गाइए।
2: मिथुन दा पर?
0: हाँ जी गाइए।

0: जी बहुत ही अच्छा, प्यार झुकता नहीं, सचमुच
1: जी,
0: है
1: ये
0: ना,
1: मेरी फेवरेट गाना है।
0: फेवरेट गाना। अब देखते हैं कि आपका फेवरेट गाना इस फिल्म में है या नहीं।
2: हाँ, आपके फेवरेट गाने जवानी दीवानी।
0: जवानी दीवानी फिल्म का गाना
1: नई या पुरानी?
0: पुरानी, अगर आप नई चाहते हैं तो वही सही। जवानी दीवानी
1: याद नहीं आ
0: रहा, कोशिश तो करें।
1: कपूर और
0: रणधीर कपूर और जया बहादुरी जी।
1: हाँ
0: जी,
1: याद नहीं आ रहा।
0: याद नहीं आ रहा आपको? अगर उषा जी गाएंगी तो कहेंगे ओ मेरी किस्मत।
2: फूटी किस्मत।
0: अच्छा, आप हल्का सा इशारा दे दें आप उनको।

0: देखा आपने
1: जरूर।
0: कोई बात नहीं सरिता जी, ये तो एक खेल है, कभी कभी जीत तो कभी सीख। ओके धन्यवाद सरिता जी, बाय।

0: और एक कॉलर है, हेलो।
1: हम देखते हैं कौन है वो। हेलो,
2: नमस्कार उषा जी। नमस्कार रोशन भाई।
1: नमस्कार बोबासा की हरीश भाई। कैसे हैं आप?
2: हरीश बोबासा से।
1: हाँ जी हरीश भाई, आपका स्वागत कर रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए आप यहाँ पर हैं, वहाँ पर कोई भी, जहीं पर जहाँ पर भी हैं आप, लेकिन अंताक्षरी से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि टिकटॉक के माध्यम से और लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर। चलिए हरीश भाई, मिथुन चक्रवर्ती जी पर कोई भी गाना आप गाइए प्लीज।
2: वादा है क्या, क्या है कसम, क्या है कसम, जाने नाम हम तो सनम, जाने ये बात, जीना हमें है तेरे साथ। वादा है क्या, क्या है कसम।
1: जी हाँ बिल्कुल, वादा है क्या, क्या है कसम, लापरवाह फिल्म का गाना आपने गाया, बहुत ही अच्छा। अब हम देखते हैं कि कौन सा गाना उषा जी लाई है आपके लिए, कौन सी फिल्म।
0: मोहरा।
1: मोहरा फिल्म का गाना। हाँ जी हाँ जी, ये तो लापरवाह नहीं है।
2: बरसा पानी,
1: क्या बात।
2: पानी ने

0: क्या करूँ,
1: म्यूजिक में कर सकते हो ना
2: बिल्कुल, अगर ये करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा।
1: हाँ जी,
2: बहुत ही बढ़िया, आपने टैक्सी चोर का गाना गाया और मोहरा का गाना गाया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही धन्यवाद आपको, और ऐसे ही आप गाते मुस्कुराते रहें। बाय, हैप्पी म्यूजिक डे टू यू टू, बाय।
1: और वैसे यहाँ पर उन्होंने ये गाना गाया टिप टिप बरसा पानी, यहाँ टिकटॉक पर सब लोग बोल रहे तू चीज बरी है मस्त मस्त, लेकिन इस फिल्म में मुझे एक ही गाना पसंद है,
2: कौन सा,
1: ना कजरे की धार ना मोतियों की हार ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितने सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो।
2: और वो गाना भी है बहना, वो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक प्यार करेगी तो खाक काम करोगे।
1: क्या काम करेंगे, हाँ सुबह से शाम तक हम तो हमेशा आप लोगों का साथ देते,
2: साथ देते रहते हैं।
1: चलिए यहाँ हम देखते हैं कि कौन,
2: अब देखते हैं कौन है।
1: हेलो हेलो
2: हेलो हेलो जी,
1: हम आपको Hello? सुन रहे हैं।
0: सुबीर जी है।
1: ओ सुबीर जी कैसे हैं?
2: ठीक है भाई।
0: नमस्कार उषा जी, नमस्कार रोशन जी।
2: ठीक है, नमस्कार।
0: हम ठीक है।
2: ओके सुबीर सिंह भाई, हम भी ठीक हैं। चलिए आपका पहला गाना मिथुन चक्रवर्ती जी पर गाइए प्लीज।
0: मिथुन चक्रवर्ती, ओके।
2: हाँ जी गाइए।
0: प्यार के दो पल

0: के दो पल, ठीक है।
1: हाँ
2: बहुत ही
1: जी
2: अच्छा, प्यार के दो
1: यार,
2: पल, बहुत सुंदर सा गाना आपने गाया है।
0: हाँ
2: चलिए अब आपके लिए जो गाना है इस प्रकार है, किस फिल्म से है ना?
1: मैंने प्यार किया,
2: सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया।
0: मैंने प्यार किया, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है, ठीक है।
2: हाँ
1: हाँ
2: जी,
1: बिल्कुल ठीक है।
2: समझाने से
1: समझे ना ये पगला, कौन पगला है? कोई पगला नहीं
2: दिल पगला है, दिल
1: दिल।

0: पकड़ा गया है। बहुत ही अच्छा आपने गाया है, बहुत धन्यवाद आपको सुबीर सेन भाई। ओके, फिर से मुलाकात होगी, बाय।
1: बाय बाय।
2: और यहाँ पर जो गाने वो लोग बोल रहे हैं वो है, परी जी बोल रहे हैं कबूतर जा, कबूतर जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा।
0: कबूतर उड़ जाएगा और उड़ के वापस नहीं
2: आएगा।
0: इतने सारे एक से एक बढ़कर गाने हैं हम मैंने प्यार किया फिल्म में।
2: चले देखते हैं कौन है। हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते। हेलो,
3: हेलो
0: नमस्ते।
3: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते,
2: सुन रहे
0: हैं आपको?
2: सुन रहे हैं।
3: तारा है?
2: ओ बोलो तारा रारा।
0: तारा रारा, आप रोजिल से बात कर रही हैं, है ना?
3: नमस्ते भाई रुस्ता, नमस्ते बहन निशा।
2: नमस्ते बहन तारा, कैसी हैं आप?
3: ठीक है।
0: अच्छा ओके, तो म्यूजिक मंथ के अवसर पर मिठुंडा पर कोई भी गाना गाइए तारा जी, गाइए।
3: आया मैं जिसको दिन से जिंदगी का बहाना, हो चुमो हो नाचो हो गाओ, आया मैं जिसको दिन से, उतना नहीं जानती है।
0: जी
2: जिंदगी,
0: हाँ,
2: मेरा बहाना,
0: हाँ,
2: what is it?
0: जिंदगी आपका बहाना नहीं, नाचना कोई बहाना हो सकता है ना? कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश की है और आपका जो गाना है बिल्कुल हिट हिट है।
2: Okay. बिल्कुल हिट।
0: अच्छा,
2: और
0: अब
2: आपको गाना, आपको गाना होगा फिल्म जब जब फूल खिले से लिया गया, फिल्म का नाम है
0: जब जब फूल खिले। हाँ जी, कोई भी गाना इस फिल्म से, सभी गाने हिट हैं इस फिल्म।
3: जब बहार
0: नहीं जी, ये तो तकदीर फिल्म का गाना है,
3: उसमें याद नहीं है।
0: याद नहीं आया आपको?
3: नहीं।
0: चलिए उषा जी आपको बताएंगी।
2: ये समा समा है ये प्यार का। ओके तारा जी, ओके ओके, चलो
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तारा जी आपने कोशिश की है, लेकिन जाते जाते आपका गाना, धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
0: Will you sing with me?
2: Yeah.
0: आप अपने श्रोताओं के साथ हमेशा तो गाती रहती है। चलिए देखते हैं अब लाइन पर कौन है।
2: हेलो
0: हेलो, हाँ जी
4: नमस्ते। रोशन जी, रोशन भाई
0: नमस्ते। उदय भाई,
4: नमस्ते।
0: ओके उदय भाई, धन्यवाद, अंताक्षरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
4: हम भाग नहीं लेना चाहता था, लेकिन
0: क्यों,
4: मैं रसिका जी का गाना लेकर आया हूँ मिठुंडा पर।
0: ओ बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो आप गाइए रफी साहब का कोई भी गाना मिठुंडा पर, हम जानते हैं दो तीन गाने हैं उनके, और सभी जो गाने हैं बहुत ही लोकप्रिय हैं। एक गाइए प्लीज, गाइए।

0: हाय तू ही वो हसी है। ठीक,
1: जी हाँ, बिल्कुल। ख्वाब फिल्म का गाना आपने गाया है, तू ही वो
0: हाँ
1: हंसी है, बहुत ही अच्छा। और आपकी आवाज़ भी बहुत ही मज़ेदार, दमदार। चलिए उदय भाई, आपके लिए एक म्यूजिकल फिल्म उषा जी बताएंगी, उस फिल्म से कोई भी गाना आप गाइए प्लीज़।
0: आ गले लग जा, बहुत ही आसान है।
1: आ गले लग जा। ओके।
0: ऐ मेरे बेटे सुन मेरा कहना, चाहे कुछ होए हंसते ही रहना। ठीक ना?
1: जी बिल्कुल, आपने ये भी आपको पता चल गया। इसे कहते हैं म्यूजिक के शौकीन, संगीत के
0: हैप्पी
1: शौकीन हैं आप।
0: म्यूजिक डे,
1: हैप्पी म्यूजिक डे टू यू
0: हैप्पी
1: टू,
0: म्यूजिक डे टू यू टू।
1: बाय।
0: सभी श्रोताओं को, हाँ,
1: बिल्कुल, सभी श्रोताओं को म्यूजिक डे अभिनंदन,
0: म्यूजिक डे अभिनंदन। बाय।
1: बाय। ये गाना बहुत अच्छा लगता है सुनने में, है
0: हाँ
1: ना?
0: जी।
1: रविंद्र जैन का संगीत, रफी साहब की हेवनली वॉइस। क्या है आपकी चॉइस?
0: हमारी चॉइस
1: हाँ, अगर हम कहेंगे तब कहेंगे लता दी।
0: लता।

0: नहीं, वैसे तो लता दी है, मैं तो मैं मानती हूँ कि वो मेरी फेवरेट हैं, लेकिन
1: बिल्कुल
0: देखा जाए सबको मुझे सब पसंद
1: सब
0: है
1: पसंद है, बिल्कुल।
0: जी। चलिए
1: चलिए, किसने तस्वीर अपने मन में बनाकर
0: हूँ मैं। हेलो,
1: मुद्दत से बनी है। हेलो हेलो, 5:47 लाइन तो लग गई है, प्लीज आप जवाब तो दें। हेलो हेलो जी,
0: अच्छा, हेलो
1: हेलो,
2: हेलो जी,
1: हाँ जी नमस्ते,
2: नमस्कार रोशन भाई।
1: नमस्कार
2: नमस्कार ऋषभ जी,
0: नमस्ते जी, कैसी
1: संगीता
0: हैं?
1: जी फ्रॉम वाशिगे।
2: एकदम ठीक है,
1: आप तो एकदम
2: आप
1: ठीक
2: लोगों
1: है।
2: के जैसे ही।
1: बिल्कुल, जब संगीत की बात छिड़ जाती है तो हमेशा मन में क्या कहें, बहुत ही उत्साह हो जाता है ना, उठ जाता है। चलिए बताइए, मिथुनदा पर कौन सा गाना आप लाए हैं आज?
2: जी। कोई यहाँ आहा नचे नचे, कोई वहाँ आहा नचे नचे, कोई यहाँ आहा नचे नचे, कोई वहाँ आहा नचे नचे। अव्वा अव्वा, उसको है तुमसे प्यार। अव्वा अव्वा, जाने ना मुझे। अव्वा अव्वा,
1: जी हाँ, एक तरफ उषा जी बैठी हैं, दूसरी तरफ उषा उथप का गाना संगीता जी गा रही है, बहुत ही अच्छा। अव्वा अव्वा डिस्को डांस एक बार फिर। मिठुंदा पर कोई प्रोग्राम चल रहा है और डिस्को डांस का गाना न हो, ये कैसे हो सकता है भला।
2: और म्यूजिक
1: चलिए,
2: डे के अवसर पर ना, म्यूजिक डे के
1: म्यूजिक डे,
2: अवसर सब तो ये सब।
1: हाँ बिल्कुल। चलिए अब आपके लिए म्यूजिकल फिल्म इस प्रकार है।
0: फिल्म का नाम है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: इस फिल्म का कोई भी गाना आप गाइए।
2: जी।

0: जी हाँ, आपके ख्वाबों में कोई आता है हम तो पता है हमें। बहुत ही अच्छा। और आपने ये गाना भी गाकर जैकपॉट पा लिया है संगीता जी, गुरुजी ने आपको 100 मार्क्स दे दिया है।
1: धन्यवाद।
0: चलिए संगीता जी, फिर से आप हमसे मुलाकात कर सकती हैं अगले सप्ताह। ओके,
2: बाय,
1: धन्यवाद,
0: शुभ रात्रि। हसीन तो नाच सकती है ना उषा जी, लेकिन जान कैसे नाच सकती है? जान
2: जान, जान तो नहीं जाएंगे ना, नहीं डांस कर सकता है ना। ओके चलो देखते हैं कौन
0: अब लाइन पर कौन है। हेलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी,
3: हेलो, नमस्ते रोशन जी, उषा जी।
2: अब हमारे जो नमस्ते आपको, अब हमारे जो श्रोता है कितने क्लेवर है।
0: हाँ जी, मीनाक्षी
2: यहाँ पर लाइन नहीं मिलती है तो वहाँ टिकटॉक पर जाकर बोलती है हमें लाइन नहीं मिल रही है।
0: देखा,
3: लाइन नहीं मिल रही है, क्या करें।
0: ये तो आप लोमड़ी के तलक चालाक हो गई।
2: लेकिन क्या करें, यहाँ पर इतने सारे लोग आपसे पहले कभी कभी फोन करते हैं ना, तो उनको अटेंड करना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
2: थोड़ा सा सबर रखिए क्योंकि आपने गत सप्ताह भाग लिया था ना,
0: थोड़ा सबर करो।
2: जो लोग भी
3: आज लेना पर, आज मैं भाग ले सकती हूँ ना,
0: भाग सकती है, भाग ले सकती है,
2: क्योंकि गत सप्ताह और लोग ने नहीं पार्टिसिपेट किया था तो उनको हम मौका दे रहे हैं पहले।
0: कोई बात नहीं मीनाक्षी जी, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की है तो कोई बात नहीं। मिठुन दा पर कोई भी गाना गा दीजिए, जल्दी जल्दी।

0: के मोहब्बत का एक आशियाना बना ले।
1: बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया, मेहरबान फिल्म का गाना। अच्छा उषा जी, मीनाक्षी जी के लिए क्या है अब?
2: संगम।
1: संगम फिल्म का कोई भी

0: बहुत ही अच्छा
1: है, बहुत धन्यवाद आपको,
0: धन्यवाद मीनाक्षी जी, बाय
1: बाय
0: बाय। चलिए जाते जाते अब एक अंतिम श्रोता को मौका देने का समय आ गया है, उषा जी क्या करें।
1: चलो
0: एक अंतिम श्रोता
1: को।
0: हेलो हेलो
2: हेलो उषा जी, अवसन जी।
0: नमस्ते कविता
1: जी। कविता जी, हाउ आर यू?
2: नमस्कार,
0: प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, आप हमेशा प्यार ही से नमस्कार करती हैं, है ना?
2: क्या करें, प्यार ही करना चाहिए जिंदगी में ना।
0: बिल्कुल,
2: जहाँ प्यार नहीं वहाँ कुछ नहीं,
0: कुछ नहीं। तो चलिए प्यार से कोई गाना गा दीजिए मिथुंडा पर, कोई भी गाना गाइए।
2: पता नहीं है किसी ने गा दिया या
0: देखते हैं, चलिए।
2: यादा
0: नहीं, किसी ने गा लिया है कविता जी, एक और गाना हो जाए, एक और गाना।
2: और गाना
0: कोई भी गाना, कोई भी, हम मिथुन जी पर। हाँ गाइए,
2: सभी लोग गा दिए।
0: नहीं जी, इतने सारे गाने हैं। चलिए उषा जी, आप गाना गा देंगे मिथुन दा पर, और आप उसे दोहराइएगा साथ साथ।
2: अच्छा अच्छा
0: सुनिए।

0: है मुझको
1: खुदा जाने दू। हाँ जी,
0: ओके, नो प्रॉब्लम।
2: अब
0: कोई बात नहीं, एक फिल्म का नाम उषा जी देंगी और आपको उस फिल्म से लेकर एक गाना गाना है, ओके?
2: अच्छा, कोशिश करूंगी, कोशिश।
0: अच्छा, बिल्कुल
1: कोशिश करना। और फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।
0: तीसरी मंजिल फिल्म का कोई भी गाना आप गा सकती हैं प्लीज, कोई भी गाना। हाँ, ये तो
1: लादों में सा
0: गाइए गाइए गाइए।
2: ओ मेरे सोना रे, सोना रे, सोना रे,
0: दे दूंगी जान जुदा मत होना रे,
2: दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे बड़ा देर में जाना,

0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कविता जी, फिर से मुलाकात होगी हमारी, धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: बाय। तो ये था ये थी कविता जी फ्रॉम सेंपिया, और उन्हीं के साथ अंताक्षरी प्रोग्राम यहाँ पर संपन्न हो गया। म्यूजिक का मास चल रहा है और ऊपर से कल मिथुनदा का जन्मदिवस है, तो उषा जी चलिए अब आपकी ओर सभी की उम्मीद
2: जल्दी है। जल्दी जल्दी हम गाएंगे,
0: गाइए प्लीज।

0: चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे।
1: बहुत धन्यवाद उषा जी इस मधुर गाने के लिए। और इस गाने की मांग कौन जब की श्रद्धा जी ने किया था, और साथ ही साथ ट्रियोले की प्रेमा जी ने भी ये कहा कि उषा जी को ये गाना हम सुनना चाहते हैं उनकी आवाज़ में। तो आप लोगों ने ये गाना उषा जी की आवाज़ में सुना, और ये गाना आप दोनों के लिए, आपके पूरे परिवार को हम समर्पित करते हैं। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का अंताक्षरी प्रोग्राम। और अगर आप लोग कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, अगले सप्ताह आप स्टूडियो में आना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज भेजिए

0: 5886 4294 5886 4294। आप लोग जो सबसे पहले हमें मैसेज भेजेगा, हम उनको लेंगे स्टूडियो में आकर कंपटीशन में भाग लेने के लिए और एमबीसी में पुरस्कृत होने के लिए भी। क्या कहती हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल, लाइव टिकटॉक पर भी उन लोगों ने सुन लिया है और यहाँ पर हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आपने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार
1: नमस्कार,
0: आदाब, शुभ रात्रि। ओके, ऐसे ही आप जुटे रहें।
1: बाय बाय।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार और आदाब, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे

0: पहले आज की बड़ी खबरें। रंगाना देन पड़ियाची और सुदेश कालीचरण को शर्त पर रिहा किया गया। एफसीसी ने पोर्टवी अदालत में पुष्टि की कि दोनों और मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल लिमिटेड की मुर्शिद शाखा की निदेशिका करीना ने जिसके बीच फोन पर 30 बिलियन रुपए का ठेका दिलवाने की बात हुई थी। दवाओं और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के आयात के सिलसिले में अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी को कायम किया गया। दाम घटाने और तय करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। आज मुसलमान कौम के लिए नए इस्लामी साल का आगाज। ये 1448 हिजरी है। मुहर्रम महीना एक मुकद्दस माह माना जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जुम्मे को ईरान के साथ तय किए जाने वाले समझौते को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। नमस्कार, रादाब। आज सुबह पोटली अदालत में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने पुष्टि की कि सुदेश कालीचरण, रंगानादन पड़ियाची और करीना नेक्जुस के बीच फोन पर बात हुई थी। मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल लिमिटेड को सन 2023 में 30 बिलियन रुपए का ठेका दिलवाने के सिलसिले में बात हुई, जबकि उस वक्त ये कंपनी बिडिंग एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं थी। इन बातचीत से कंपनी को ईंधन की सप्लाई के लिए ठेका मिल गया। सुदेश कालीचरण और रंगानादन पड़ियाची को शर्त पर रिहा किया गया। हर एक को 8 लाख रुपए की जमानत चुकानी पड़ी और 10 मिलियन रुपए के रिकॉग्निजेंस फी पर दस्तखत करने पड़े। 16 जून की तारीख दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतीकात्मक है। युवा दिवस कल मनाया गया, जो 1976 में सोवियतों की घटना की याद में रहा। हजारों की तादाद में छात्रों ने उस वक्त भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। आज 50 साल बाद मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका की सफारत ने ऑरम गॉर्डन थियानो में एक औपचारिक रिसेप्शन का आयोजन किया। मौके पर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम खास मेहमान थे। कूटनीतिक दल के मेम्बरानों को की भी हाजिरी रही है। सागाउनु अदिति गनो अवतार।
1: सोवियतो से जुड़ी यादें दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक स्मृति में गहराई से बसी हुई है। 16 जून 1976 को हजारों छात्र बेहतर शिक्षा और न्याय की मांग को लेकर सोवियतों की सड़कों पर उतरे थे। ये आंदोलन रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीकों में से एक बन गया। 50 साल बाद आज भी दक्षिण अफ्रीका में इस तिथि को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2: The African Leadership College that you host in Mauritius.
3: It is happening on the
1: ये मौका दक्षिण अफ्रीका में सोवियतों की पुनर्जागृति के संदर्भ में आया है। उस समय छात्रों ने अफ्रीकी भाषा और सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। आज का मौका इसलिए भी खास है क्योंकि अफ्रीकी बाल दिवस के साथ साथ हम दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता भी मना रहे हैं। इस समारोह के अंतर्गत दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोग संबंधों का उल्लेख किया गया। साथ ही सोवियतो के युवाओं की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका के बीच के घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि की गई।
0: पुर्तगाल के नए राजदूत ने आज गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल को अपना परिचय पत्र पेश किया। स्टेट हाउस खेजी में जोर्ज मैनुएल डानको अनुआ मुंटेरो ने और गणराज्य के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय रिश्तों पर बात की। खासतौर पर सहयोग की नई संभावनाओं पर चर्चाएं हुई, जैसे रिन्यूएबल ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जुम्मे को ईरान के साथ तय किए जाने वाले समझौते को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। परसों स्विट्जरलैंड में दस्तखत समारोह निर्धारित हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ये संधि तय न हुई तो अमेरिका फिर से बमबारी करने लगेगा। आस्था गोविंदमन।
4: G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौता चर्चा के केंद्र में रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक प्रारंभिक सहमति बन गई है। अमेरिका का कहना है कि अब तकनीकी स्तर पर बातचीत आगे बढ़ेगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कार्यों में फिर से शामिल किए जाने की बात भी कही गई है। दूसरी ओर ईरान ने पुष्टि की है कि शुक्रवार से स्विट्जरलैंड में नए दौर की वार्ताएं शुरू होंगी। हालांकि तेहरान का कहना है उसे अब भी अमेरिका पर गहरा अविश्वास है और ये समझौता केवल तनाव कम करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान की मध्यस्थता और कतर के सहयोग की भी अहम भूमिका रही है। कतर ने उम्मीद जताई है कि ये पहल क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करे।

0: करेगी और आगे की बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करेगी। कतर ने ये भी उम्मीद जताई है कि होर्मुज जलमार्ग में नौवहन सामान्य होने से गैस की आपूर्ति फिर सुचारू रूप से जारी रह सकेगी। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यदि शुक्रवार को समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर हो जाते हैं तो होर्मुज को फिर से पूरी तरह खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है, ऐसे में बाजार इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य होती है और तेल आपूर्ति पर अनिश्चितता कम होती है तो कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव घट सकता है। इसका सकारात्मक असर वैश्विक शेयर बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल सबकी नजर शुक्रवार को प्रस्तावित हस्ताक्षर और उसके बाद शुरू होने वाली वार्ताओं पर है, जिससे ये साफ होगा कि ये प्रारंभिक सहमति आगे चलकर व्यापक समझौते का रूप ले पाती है या नहीं।
1: जी हाँ, सबकी नजरें और सबकी उम्मीद इस समझौते पर हैं ताकि आप नए होर्मुज से फिर से कश्तियों का गुजारा हो सके। दवाओं और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के आयात के सिलसिले में मॉरिशस में एक अंतर मंत्रिस्तरीय कमेटी को कायम किया गया। दाम घटाने और तय करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। आर्थिक ऑपरेटरों का मानना है कि दूसरे प्रस्ताव भी देखना जरूरी है ताकि दामों में और गिरावट आए। यासिनदीन मोहम्मद, करुणा लालू।
2: Parce que vendre 2500, 2800, comment les enregistrer, même des lois de vitesse, 8000 roupies.
3: Et IPO là, c'est bien important ça pour contrôler ça original là.
4: समानांतर आयात की नीति से कई व्यापारी किसी एक ही ब्रांड के उत्पादों को अलग अलग देशों से आयात कर सकेंगे केवल आधिकारिक प्रतिनिधि से गुजरे बिना ही। यदि इसके पक्षधर कीमतें कम होने की बात कर रहे हैं तथापि नियंत्रण का मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मॉरिशस में इस विकल्प पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है, खासकर भारी उपभोक्ता वस्तुओं, दवाओं और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के लिए।
5: Ça option là définitivement il amène plus compétition et le but même de sa importation parallèle là, commerce parallèle, c'est réduction des prix. Alors, comment nous connaît nous Maurice, nous dépend beaucoup l'eau ban produits importés. Et en même temps, nous avons une institution, protection des consommateurs, les bisins opèrent d'une façon bien efficace.
6: C'est un rapport d'experts, comme le rapport de Tutoi, qui dit comme ça, Maurice, il y en a encore bien évolué dans ce côté conformité, dans ce côté régulation, dans ce côté capacité, pour capable qui dans le temps, nous avons les temps encore, pour capable considérer ben, le changement de régulation dans sa cycle.
4: वही चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि केवल कीमतों पर नहीं बल्कि पूरे आर्थिक तंत्र पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखना जरूरी है।
6: Est-ce qu'il nous capable mettre en péril en question ban industrie? Quand on peut dire l'industrie, c'est pas seulement pas seulement production, c'est aussi ban distribution, ban compagnie qui investit énormément dans warehouse qui a ban emploi majeur autour de cela. Donc extrêmement extrêmement important.
4: एक बैठक के दौरान डीलर्स इन इम्पोर्टेड व्हीकल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जाहिद आमिया ने मोनोपोली यानी एकाधिकार का उल्लेख किया।
2: Par exemple, à Moutissière, NPA Moutissière, qui a une agence qui a 50,000 roupies, nous avons une vidéo avec une marque répétée qui est correcte, 20,000, 25,000 roupies pour même qualité. Un de l'huile pour un loto spécifique pour une marque qui n'est pas si enregistré, tu peux vendre 2500, 2800, comment l'enregistrer, même des loups de bois de vitesse, 8000 roupies.
4: En ce qui concerne ce secteur, il n'y a pas de problème de la situation. Il y a
2: un nouveau type de véhicule, et il y a un ECU. C'est-à-dire, n'importe quelle pièce électronique nous changeait, nous devons passer par ça, ECU-là, nous devons accepter pour nous capables de rouler le véhicule-là. Et il n'est pas dans l'intérêt ban les autres fabricants pour fabriquer ban fake spare parts électroniques parce qu'il est pour résister par le système. Et dans un dernier rapport qu'il fait par l'Union européenne, il y a une diminution constante de ban fake product.
4: Spare parts qui disponibilité aussi est un bahas ka ek aham pehlu hai.
3: Maurice, il y a beaucoup de machines reconnues et qui ne sont pas pareilles avec l'agence. Les banapole l'agence pour dire que ben il paye la pièce là et il est pas obligé faire venir pas les qui ne fait venir sa machine.
4: Unka manna hai ki samanantar ayat se zaruri nahi ki maujood

0: ज्यादा अधिकृत वितरकों को नुकसान हो
1: तो इन आईपीओ ला ले बियन है बहुत ऑसा पर कंट्रोल सा ओरिजिनल ला सा नु बिया पार्टी के सा जी मोमा पे ने लुटे पे होता थे ने पोट की पे का बोले और कंट्रोल सी के लुटे पे होता थे moi mon négocié et ça fournisseur vous allez payer compétiteur mais moi puis moi aussi nous va plus passer
0: मंत्रालय के स्तर पर समानांतर आयात और स्पेयर पार्ट्स पर प्रॉफिट मार्जिन की अधिकतम सीमा तय करने की संभावना पर अभी अध्ययन जारी है।
2: बुलेटिन की शुरुआत में हम बता रहे थे कि एफसीसी ने पुष्टि की कि सुरेश कालीचरण, रंगानाथन पेरियाची और करीना नेक्सियस के बीच फोन पर बात हुई थी। मैरीटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल लिमिटेड को सन 2023 में 30 बिलियन रुपए का ठेका दिलवाने के सिलसिले में, जबकि उस वक्त ये कंपनी बिडिंग एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं थी। मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम ग्रुप का मामला करीब 3 सालों से एफसीसी की जाँच की वजह है, जिसमें कई गिरफ्तारियां की गई हैं। शहजाद जुमन, अदिति गनवाफ्तार।
3: 7 जून 2023 को एसटीसी की प्रशासनिक परिषद ने मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 1 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 की अवधि के वास्ते मॉरिशस के लिए ईंधन आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट ओक्यू ट्रेडिंग को देने की मंजूरी दी थी। इसके 22 दिन बाद यानी 29 जून को यही कॉन्ट्रैक्ट आखिर में सिंगापुर की कंपनी मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जो मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम ग्रुप की सहायक कंपनी है। इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया और उसकी वित्तीय शर्तों पर तुरंत सवाल उठने लगे। लेबर पार्टी के सांसद ऐशान जुमन भी स्पष्टीकरण मांगने वालों में शामिल थे।
4: एसटीसी डिसाइड अ ला सरप्राइज टू ऑल मोन पर लुए सा कॉन्ट्रैक्ट ला अ एन विचम कंपनी की पन पार्टनरशिप द लापेल डूफ।
3: इन सवालों के समक्ष एसटीसी ने 11 सितंबर 2023 को सार्वजनिक रूप से अपने फैसले का बचाव किया। उसने दावा किया कि एमएमजी के प्रस्ताव में कई वित्तीय लाभ थे, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर के बजाय मॉरिशन रुपए में भुगतान, एक ऐसा सूत्र जो एसटीसी के अनुसार एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करता है। अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय सभा में नई व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्री ने ये जानकारियां दोहराई।
5: In view of a better offer received from Mercantile and Maritime Investment Private Limited.
6: It's an unsolicited bid after MMG took account of the result of the tender that happened, which was a public tender, the figures were open. MMG then offered a lower price.
3: 2025 की शुरुआत में Financial Services Commission ने इस मामले की जांच शुरू की। इसके तहत एसटीसी और एमएमजी के दफ्तरों तथा मॉरिशस में इस कंपनी की निदेशिका करीना नेसियस के घर पर छापे मारे गए। 28 अप्रैल 2025 को उसे कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग के अस्थाई आरोप पर गिरफ्तार किया गया और फिर जमानत पर रिहा किया गया। इसके बाद जांच का ध्यान कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित वार्ताओं पर केंद्रित हुआ। विभिन्न स्तरों पर हुए कम्युनिकेशंस और लिए गए फैसलों की जांच की गई। इसके बाद 13 जून 2025 को एसटीसी के पूर्व निदेशक राजीव सेवान सिंह को हिरासत में लिया गया। उसी दिन जारी एक बयान में एफसीसी ने संकेत दिया कि उन्होंने ऐसे कदम उठाए थे कि 691.9 मिलियन डॉलर का पेमेंट मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाए।
2: और आपको बता रहे थे कि इस सिलसिले में सुरेश कालीचरण और रंगानाथन पेरियाची को गिरफ्तार किया गया और आज शर्त पर उन्हें रिहा किया गया। दोनों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन का अस्थायी आरोप दर्ज है। हर एक को 8 लाख रुपए की जमानत चुकानी पड़ी और 10 मिलियन रुपए के रिकॉग्निजेंस फी पर दस्तखत करने पड़े। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
3: 7 जून 2023 को एसटीसी की प्रशासनिक परिषद ने मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 1 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 की अवधि के वास्ते मॉरिशस के लिए ईंधन आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट ओक्यू ट्रेडिंग को देने की मंजूरी दी थी। इसके 22 दिन बाद यानी 29 जून को यही कॉन्ट्रैक्ट आखिर में सिंगापुर की कंपनी मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जो मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम ग्रुप की सहायक कंपनी है।
0: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अदालत को बताया कि सुरेश कालीचरण और रंगानाथन पेरियाची तथा Maritime Mercantile International Company की स्थानीय प्रतिनिधि करीना नेइसियस के बीच टेलीफोन बातचीत के प्रमाण मिले हैं। उस समय वे व्यापार मंत्री और वित्त मंत्री के पद पर थे। FCC के अधिकारी अब्दुल रहमान के अनुसार ये बातचीत टेलर मेड स्पेसिफिकेशंस यानी कि खास रूप से तैयार की गई शर्तों से जुड़ी थी, जिनका उद्देश्य मैरीटाइम मर्केंटाइल इंटरनेशनल को लाभ पहुंचाना था। बहरीन स्थित कंपनी को STC को अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक ईंधन आपूर्ति के लिए कुल 30 बिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के लिए चुना गया था, जबकि कंपनी टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं थी। दोनों पूर्व मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई चलाई जा रही है। उनके वकील रोशन संतुकी और रईस बुलबुल ने FCC द्वारा लगाए गए इन आरोपों का खंडन किया। वहीं FCC के प्रतिनिधि वकील गिरीश बंधु ने उनकी जमानत पर रिहाई का विरोध नहीं किया। सुदेश कालीचैन और रंगानाडन पराइची को 8-8 लाख रुपए की जमानत और 10-10 मिलियन रुपए की रिकॉग्निजेंस पर रिहा किया गया है। जमानत के अलावा मजिस्ट्रेट बिसुन ने दोनों पूर्व मंत्रियों को इस मामले से जुड़े अन्य लोगों से संपर्क न करने का आदेश दिया, खास रूप से STC के पूर्व बोर्ड सदस्यों और पूर्व महानिदेशक राजीव सेवान सिंह, जिन पर इसी मामले के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। MSM के लीडर प्रवीण जगनाथ ने अपने दो पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी।
7: Persécution politique, puis arrêtement de membres de l'opposition, surtout. Mais ça peut continuer. Et Moutandia, mon ex on the list. Alors, nous tous piatan, chacun piatan, surtout. Mais s'il y en a un seul secteur qui peut développer dans ce pays-là, c'est le secteur persécution. C'est tout qui peut développer. Tout le monde peut trouver.
0: Sudesh Kalichan aur Ranganathan Paraichi ab 28 अक्टूबर को फिर से अदालत में पेश होंगे। इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।
2: अन्य खबरों में, आज मुस्लिम कौम के लिए नए इस्लामी साल का आगाज़ हुआ। ये 1448 हिजरी हैं। मुहर्रम महीना एक बहुत ही मुकद्दस माह है। सबसे अजीम वाक़या करबला है और हज़रत मूसा का वाक़या भी बहुत ही अहम है। हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने दीन और हक़ के लिए अपनी जान दी थी। इस महीने की 10वीं तारीख बहुत अहम है, जिसे यौम आशूरा कहा जाता है। इस्लामी तकवीम यानी कैलेंडर में 354 या 355 दिन होते हैं और इसका आगाज़ मुहर्रम महीने से होता है। आज पहली तारीख से बाकायदा नए इस्लामी साल की शुरुआत हुई है। मज़हब इस्लाम में मुहर्रम सबसे अहम माहों में शुमार है और इसे बहुत मुकद्दस माना जाता है। इस महीने की सबसे अहम तारीख 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा है। इस दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके वफादार साथियों ने करबला के मैदान में हक और सच्चाई के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। ये 1448 का साल है। हस्बे दस्तूर नई हिजरी के मौके पर मक्के की बड़ी मस्जिद में काबे का कपड़ा यानी किस्वा को बदला जाता है। मुहर्रम के महीने में कई अहम इस्लामी वाकयात से मंसूब रिवायतें मिलती हैं। रिवायतों के मुताबिक इस महीने में और भी अहम वाकयात हुए, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तूफ़ान के बाद बसलामती किनारा मिला था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली और फिरौन गरक हुआ था, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निजात पाकर बाहर आए और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली। मुहर्रम हमें सब्र, हिम्मत, इंसाफ और दीन का पैगाम देता है। आशूरा का दिन इबादत, दुआ और नेक अमाल करने की भी अहमियत रखता है। आज रात से मुल्क की कई मस्जिदों में मजलिस मुनाक़िद किए जाएंगे, तकरीरें की जाएंगी और ज़िक्र इलाही के अलावा तिलावत कुरान भी की जाएगी। पूरे मुसलमान कौम को नया इस्लामी साल 1448 हिजरी मुबारक हो।

0: और फुटबॉल में एक बार फिर फ्रांस ने मैदान के शेर लियोनेल मेसी का कमाल देखा। उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप हैट्रिक कायम कर दिया अपने 16वें गोल करके। लियोनेल मेसी ने साबित कर दिया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने अल्जीरिया के मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए 3 गोल कर दिए। फुटबॉल परस्तारों के लिए ये मैच काफ़ी यादगार रहेगा। और कल फ्रांस और सेनेगल के बीच भी मुकाबला हुआ। फ्रांस ने सेनेगल को यानी फ्रांस की जीत हुई है 3-1 से।
1: पोर्टुगल अपना वर्ल्ड कप का आगाज ग्रुप के में एकदम साफ मकसद के साथ कर रहा है। पहले मैच में ही ऐलान जंग के साथ जोरदार प्रहार करना। टूर्नामेंट की फेवरेट टीमों में से एक पुर्तगाली टीम ला सेलेसाओ की नजर अपने पहले वर्ल्ड कप जीतने पर है और रास्ता दिखाने के लिए टीम में एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वितिन्हा और ब्रूनो फर्नांडेज। उधर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य साल 1974 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में वापस आ रहा है। मजबूत और हिम्मती टीम केप वर्दे जैसा प्रदर्शन दोहराना चाहेगी और पुर्तगाल के खिलाफ बड़ा उलटफेर करने के लिए कोशिश करेगी। ग्रुप एल में यह पहले दिन के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक है। इंग्लैंड का सामना क्रोएशिया से होगा। इस ग्रुप से क्वालिफाई होने के लिए ये दो प्रबल दावेदार हैं। यूरो 2024 के फाइनलिस्ट और 1966 के बाद दूसरी बार खिताब जीतने की आस लेकर द थ्री लायंस का इरादा एकदम साफ है, अपने खेल से छाप छोड़ना और अपना रुतबा साबित करना। इस मुश्किल काम के लिए इंग्लिश टीम हैरी केन और जूड बेलिंगम जैसे टॉप खिलाड़ियों पर भरोसा कर रही है। सामने क्रोएशिया की टीम अभी भी अपने पुराने अनुभव और बड़े मैच खेलने की काबिलियत पर टिकी है। 2022 वर्ल्ड कप में तीसरा स्थान लेने वाली यह टीम अब हर टीम को चुनौती देने और इस ग्रुप में मजबूत संदेश भेजने के लिए तैयार है।
0: जहां पुर्तगाल और कोंगो के बीच आज रात 9 बजे मुकाबला होगा, इंग्लैंड और क्रोएशिया 12 बजे मैच खेलेंगे, और जबकि गाना और पनामा के बीच रात के 3 बजे मुकाबला होगा। और अब फ्रांस और सेनेगल के बीच कल खेले गए मैच पर अरविंद बिसेसो की रिपोर्ट।
1: किलियान एम्बापे और फ्रांस की टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में कामयाब शुरुआत। फर्स्ट हाफ में कुछ मुश्किलों के बावजूद ले ब्लू ने सेनेगल की चुनौती का सामना करने का रास्ता ढूंढ ही लिया। मेटलाइफ स्टेडियम में तिरंगा लायंस ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे, लेकिन न तो निकलास जैक्सन और न ही इस्माइला सा कामयाबी हासिल कर पाए। हाफ टाइम के बाद खेल की रफ्तार पूरी तरह बदल गई। 86वें मिनट में किलियान एम्बापे ने पहला गोल स्कोर करके फ्रांस का खाता खोला। इसके बाद 82वें मिनट पर देजिरे दुए के पास पर बाकोला ने दूसरा गोल करके बरहत को मजबूत कर दिया। इंजुरी टाइम में सेनेगल ने एक गोल करके अंतर को कम किया, लेकिन एम्बापे ने तुरंत जवाब देते हुए एक और बेहतरीन गोल दाग दिया। इस शानदार डबल के साथ फ्रांसीसी कप्तान ने अपना इतिहास लिखना जारी रखा। फ्रांस की जर्सी में 58 गोल करके उसने ओलिविये जीरू को पार किया। साथ ही वो वर्ल्ड कप में 14 गोल करने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बनकर जुस्ट फोंटेन से आगे निकल गया और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वालों में वो अभी तीसरे स्थान पे आ गया। उसके आगे हैं क्लोजे और मेसी। फ्रांस का अगला मुकाबला इराक से होगा, लेकिन सेनेगल को बच के रहना होगा क्योंकि अगला मैच नॉर्वे के खिलाफ हर हाल में वापसी करनी होगी।
0: और अब बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर करेंगे अगले 24 घंटों के लिए। मौसम की पेश गोई, आज रात और कल सुबह पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटों में बादल घिराएंगे और बारिश होगी और कुछ जगहों में कोहरा छाए रहेगा। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने

की सलाह है, खासतौर पर पश्चिम और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 17 से 21, अधिकतम 23 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:44 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:38 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें आप तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिवनाज्ञा की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, राधा। आप शोक समाचार सुनिए और MBC के साथ जुड़े रहिए।
1: Your news on MBC Play, MBC Play, MBCRadio.tv, MBCRadio.tv.
0: बुला रोड प्लैन दे रोश में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती पद्मावती मथुरा, श्रीमती पद्मावती मथुरा पैदाइशी नाम कल्पी जो दयावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सवा नौ बजे इनके बेटे राज मथुरा के घर बुला रोड प्लैन दे रोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:15 AM। NHDC ग्रांड बेलिया में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्री मोगानादेन कृष्णास्वामी जो आजागेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े बारह बजे इनके घर NHDC ग्रांड बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गिवियादी क्रियोल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। आली ब्रियों वाकुआ में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड श्री सुखबीर रामचंद जो स्वराज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनकी पत्नी मालिनी रामचंद के घर आलिब्रियों वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रॉयल रोड बॉडी जामुरत में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड श्री सूर्यदेव सीबन जो सूरज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े ग्यारह बजे इनकी पत्नी रेशमा सीबन के घर रॉयल रोड बॉडी जामुगत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बोलेन में बर्ग की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। मिशन क्रॉस रोड लालमाची में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड श्रीमती ज्ञानती सुबा पैदाइशी नाम ज्योति जो अनीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज उठाई गई। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करते हैं कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल 18 जून जुकोमेया यूनियन सेंटोबें और स्टाफ क्वार्टर्स यूनियन सेंटोबें में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और रिविया जू पोस्ट और आसपास के इलाकों में जोली बुआ में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और मौसलमान दे शाजाल फिकॉन्फ्लाक में अवेन्यू ले पेलिकॉन अवेन्यू डेज अवेन्यू डे टोथ्रो और अवेन्यू डे पिवेर में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 12:30 बजे तक। और मोडेजिया पायोत और

Andos, Vaqua Road और सुल्फेगिनो नंबर 4 एम पास बेकासिन और आसपास के इलाकों में भी कल दिन के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: गुरुवार 18 जून से शनिवार 20 जून तक सत्यार प्रकाश मास के संदर्भ में रिविया जुगांपा आर्य जिला परिषद द्वारा गुडलैंड्स आर्य समाज में विशेष कार्यक्रम होंगे। सत्यार प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में गुरुवार 18 जून को रॉयल रोड बुआशेरी के बुआशेरी आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 3 यज और सत्संग का आयोजन कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस गुरुवार 18 जून गुडलैंड्स आर्य समाज में शाम के 5 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
3: समस्त सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए हम आपके लाए हैं चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान जो आप सुनना पसंद करते हैं। वैसे भक्ति में ऐसी शक्ति है जो निराशा को आशा में बदल देती है। ईश्वर पर अटूट विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर। भजले प्रभु का नाम आपकी मनपसंद रही।

श्रोताओं, भक्ति वह शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। सच्ची भक्ति से मन को शांति, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं श्रोताओं। जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है तब उसके भीतर छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने लगती है। ऐसे में जहाँ भक्ति होती है वहाँ मन में शांति और जीवन में शक्ति का वास होता है।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण का नाम है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ ईश्वर की शक्ति स्वयं मार्ग दिखाती है। तो चलिए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

श्रोताओं, भक्ति वह दीपक है जिसकी ज्योति से जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। तो चलिए श्रोताओं, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हम अपने तकनीकी सहायक फैजन को धन्यवाद देंगे। आप सभी को हम कहेंगे नमस्कार, शुभ रात्रि।

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को पसंद हो कि मुश्किलात और मसाइब के वक्त अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाए, तो फिर उसे चाहिए कि वो खुशहाली में कसरत से दुआएं करे।

अल्लाह पाक फरमाता है, जब रात को तुम सो जाओ फिर तुम्हारी आँख खुली तो दोबारा सो गए तो तुमने मुझसे बेवफाई की, लेकिन अगर तुम्हारी आँख खुली और तुमने वज़ू किया, नमाज को पढ़ा, मुझसे मांगा और मैंने तुम्हें वो अता न किया तो मैंने तुमसे बेवफाई की और मैं तुम्हारा रब बेवफा नहीं। सामीन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। तकनीकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबिनाज जान अली को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। शब बख़ैर। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: झंझट, धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का, भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच, जलसा, हंगामा।

सब संगतियों के और जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी तू उनकी फॉलो करता हुआ, जहाँ से भी उनकी याद करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी तड़का अभी से लेकर रात के 11 बजे ली, आज है बुधवार की रात, बुधवार 17 जून 2026 और शाम के भी पानी बरसता कई इलाका में ठंडा ठंडा कर लगवा। और तोरा मन करता को भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमाइया का जगह देवी जगह भी चैंक या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर भी सकबा अपन रिक्वेस्ट प्रस्तुत करें अभी से लेके रात के 11 बजे ली। और चलो शुरू करी जा हमने के भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के साथ रोशन सरा सिंह की गावल गीत के साथ वंदना। चलो सुना वंदना का बोला था।

और भोजपुरी तर का एगो भोजपुरी कार्यक्रम है जहाँ पर केवल भोजपुरी गीत चलाई रह सर ठीक बा। और फिर अगला गाना चलावती सा बहुत ही प्यारा सन गाना है। हाँ गीतवा तो एकदम जोरी बा। हाँ जवानी चंद्र देव जुबोधन गीत वगैरह वन बहुत ही प्यारा सन गाना। और है गीतो हमें चलावत इस हरिलाल दिनू के बेटा विवेक दिनू के जन्मदिन बाद तो ढेर माना प्यार आशीर्वाद हरिलाल दिनू की ओर से कर माँ कर पत्नी कर लड़का सब दिनू परिवार के ओर से अपने मोहताबा भविष्य गरुरी गीत और खातिर सोना दुलार के जन्मदिन बाद ढेर सारा प्यार आशीर्वाद सब जानकी प्रसाद परिवार के नाम। और जयराज अंतिश अंकुश स्नेहा लालमाती से हमने के सुनतवन बहुत बहुत प्यार

आशीर्वाद भी चलो कि देवत नहीं जा, साथ में रानी जी के नाम, रानी दुलार के नाम गीत चाहती सा, फिर रोहन मगर हमने के साथ देवत वन बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुकेश हम के साथ देवत वन किया ना ही हेलियो ना गीत और खातिर, और जितना कोई हमने की रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर सुना था और हमने की रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर देखा था है गीत, तो लोग के नाम भी चलावती सब बहुत बहुत प्यार के साथ टीना भी हमने के साथ जुड़ा हुआ, तो चलो एक साथ सुने गीत जवानी, खासम खास विवेक दिनों के जन्मदिन पर तो ढेर मना प्यार और आशीर्वाद सब दिनों परिवार की ओर से, कर पापा होरीलाल, कर माँ, कर पत्नी और सब दिनों परिवार की ओर से।

संगतालोग बोला जाता कि जुलाई महीना से मॉरिशस एलनिनो में प्रवेश करी। एलनिनो एगो क्लाइमेटिक फेनोमेनन है और बेशक जब एलनिनो आवेला था सकेला मॉरिशस में तापमान बढ़ जाए

काफ़ी डिग्रीज देखे हैं और गर्मी के मौसम में सकेला बिल्कुल पानी भी नहीं बरसी और जलाशय में पानी कमती हो ली जाता और अगर एलिनो के प्रभाव रही तो सकेला तन को पानी भी नहीं बरसी। तो ई एलिनो जो रह जाए 10 महीना ली शुरू हुई जुलाई 2026 के और समाप्त हुई मार्च 2027 में और बेशक है जो एलिनो है दुनिया भर के प्रभाव करता और जैसे कि हमने एक ट्रॉपिकल टापू हुई सर तो हमने पर भी कर प्रभाव पड़ी और बोला जरा कि जहाँ पर जो चीज़ कबू नहीं दिखलवा वो सब बुझाई जौन पे में कबू लाशेष खिस नहीं आलवा वहाँ लाशेष खिस रही जहाँ पर कबू पानी नहीं बरसलवा वहाँ पानी बरसी और जहाँ पर कबू लानेज नहीं आलवा वहाँ सकेला लानेज भी चराए एक ही बोला ला एलिनो। तो सावधान रह सबनी और दिखब सर कि कैसे है एलिनो हमनी पर प्रभाव करी शुरू हुई जुलाई 2026 से और समाप्त हुई मार्च 2027 में। अगला गीत मार ताली मार ताली मार गीत चरावती सा खासम खास सब संगत यालो के नाम जो हमने के साथ जुड़ल बा है गीत किया ना हेरियो ना की ओर से बहन शिवानी और शादी होता है इसे मैंने की तदे बना प्यार और आशीर्वाद और है ये गीत चराब सा अब्दुल और सैरा बानो खातिर हेलो जी फिर वंदना के साथ होते हैं वंदना गीत और खातिर प्रेम और है गीत चलावते इस धीरज दया दीन खातिर प्रेमा की ओर से फिर है गीत करुणा के नाम रॉय है गीत और खातिर और है गाना वी विनुष्का के नाम जो नम के साथ देवत वंजा बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना कोई अभी जुड़ल बार रेडियो मॉन्शस रेडियो मनोरंजन पर तत्वरार याद होते जा कि अभी रात के 11 बजे हमने के और तो लोग के मुलाकात हुई है हुआ था और 11 बजे ये मुलाकात समाप्त हो जाती है। चल अभी सुनब जाए कुणाल हिराल ग्यावल गीत मार ताली मार

मार ताली मार रात के 9:25 और संगत्या लोग हर बड़ी 21 जून के हमने मनावी रहा सर म्यूजिक डे संगीत दिवस तेन के हाई त्योहार रही यानी कि हाई दिमाग के हमने मनाओ अब सर म्यूजिक डे तो हमने तो रोज के म्यूजिक डे मनाए रहा सर और आजकल म्यूजिक डे कॉलेज स्कूल में मनावल जाता ढेर मना कॉलेज में और लिकुल में कर प्राइज गिविंग और म्यूजिक म्यूजिक डे एंड प्राइज गिविंग साथ में मनावल चला था लड़का लोग पर बाहर कर अभी नाच गाना देफिले ये सब तो चला अच्छी बात बार संगीत दिवस हमने रोज के चला मनाया कि कहे कि संगीत जो है एगो बहुत अच्छा चीज है हमने के जीवन में ये हमने के स्ट्रेस और तनाव से दूर रखेला जब भी तुम्हारा मूड खराब हो या थोड़ा नहीं अच्छा लगा था तब बस अपन रेडियो ऑन करिए और सुनिए रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस अच्छा अच्छा गीत 24 घंटे तो लोग नाम चलेगा और ऐसे में चलाओ अब सर अगला गाना जयराज और रानी के लिए फिर है गीत रातीश के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ सुमीलाल नंदलाल है गीत थोरो खतीर शोभा है गीत थोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ शुभरात्रि थोरो बोलते हैं शोभा और अविसा है गीत थोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और है कि तो व्यांश के नाम जो हमने के साथ देव था मंजा रात के 9:26 होता आकाश चेतन जी नमस्ते है कि तोहरो नाम दोस्त और तोहरा सब परिवार के नाम और जितना कोई कोशिश कर रहा था थोड़ा लाइन नाम ही रहता है तो सब बचा टिकटॉक के जरिए पन में साज विदा करे टाइप करिए आगे जाइए इंटरनेट पर फिर नहीं आगे जाइए टिकटॉक पर फिर जाइए रेडियो मॉरिशस लाइव और कल में अपन कॉमेंट भेजे जा शकीना है कि तोहरों का तेर अगे मिश्र जोज अपन पाल तो कहाँ चोर ले अगे मिश्र जोज चल सदगी तो सुने बिस्वानी दीपवा की जुबानी

0: रात के 9 बज के आधा हुआ था और उनके साथ हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। और गमटवा होते रही, नाचब से गावब से झुमब से खूब मस्ती करब से रात के 11 बजे रही रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस की टिकटॉक पेज पर। और गुसंगतिया रहल मानियो लॉन्ग चिर से काम करत रहल को नाम रहल पूनम। तो पूनम है गीत और कथिर बहुत बहुत प्यार के साथ। और ये गीत प्रेमा देवेश यज वरुण के नाम और गीत जो है वो बोलता मार के फोरेला। बाप रे बाप, नीरज को मधु जोड़ी गीत है। एक गीत पूनम खातिर जो फसरीजी से बन के आ रहा है मानव लॉन्ग चिल सेस गीत हर खातिर। साथ में है गीत प्रेमा की ओर से देवेश यज वरुण के नाम, वारियर की ओर से रातिश के लिए और पूनम हवन रोजबेल से और केशव और पूजा और माला जी गीत तोहर खातिर। और आप हवन प्रचित खत से माला जी गीत और नाम राज रमी सर गीत तोहर खातिर मगर एल गीत और नाम। फिर ये गीत अच्छा लगा तो ये भी कुछ संगतिया लाइन पे कैसे मिला जा टेलीफोन करा तो वन भैया कब से चलो कैसे मिल ले जाए तारे बोली टेलीफोन नहीं ले ली। हेलो
1: हेलो नमस्ते प्रताप जी।
0: नमस्ते जी, के हवा जा
1: हम है शोभा पॉपले मुझसे
0: कैसे समाचार।
1: अच्छा तू कैसे हो?
0: हम तो बड़ी गमत में हैं। तू गमत में
1: हो? अच्छा हुई तो सुना था ना हम चले ली गमतवा में।
0: हाँ तो अभी गमतवा है रात के 11 बजे रे बोला।
1: हाँ हाँ सुनता हाँ सब कोई संगे सुनता
0: संगे संगे।
1: हाँ गो गाना मगे थे बरकी मसाला पिसा था
0: बरकी मसाला पीसेला। हाँ, और
1: मसाला की तकारी।
0: हाँ कुछ पकेला हो?
1: नहीं तो ठंडा ठंडा कर बना।
0: हाँ हाँ
1: तो मसाला की तकारी अच्छा लगला खाई के ना।
0: दीपों कैसे जोड़ी से बनेला तब ना।
1: हाँ आलू ली सुफले
0: है
1: बताओ के पकाता पका दो।
0: नहीं सुफले ढेर मांगा बामा
1: पास है ना ये मंगा हुई मैं अच्छा लगला खाई के सब लेगी हम कुछ और मंगा के चीज खाई के ए
0: ता पुदे पैसों रही तब जा कर की ना माँ
1: ना ता तनी एक ली बने के आधा ली वर्क सब बना की
0: नहीं। हाँ सकल जरा की नहीं काहे
1: नहीं नहीं चला मिजे आकर के ना काहे काम कर लिया सा
0: काजी नहीं
1: खाई की ना।
0: हाँ
1: अब खाली रमज़ बा हर चीज किन बा हो
0: छो छार के सब चीज जाए के बारे बाप पूछी रमज़ बा
1: खाई बा पी बा तनी विटामिन खाई बा तनी दूध पी बा
0: तब ना हैप्पी हैप्पी गीत चलाओ
1: अब सर हैप्पी। हाँ हमार गाना डाल दिया
0: अरे चला दियो अब सर फिक्र नहीं करिए।
1: हाँ सब कोई सुना था तो पुखा में

आरी बहुत धन्यवाद आरी बाबा शुभ रात्रि इरान की संगत या शोभा और अगला गीत विशाल जी के नाम और सब जन संगत या SSU में काम करे थे उनसे हेलो भाई जी है गीत और खातिर और सब संगतियाँ जो SSU में काम करते इस समय और हमने की देखा था वन जा टिकटॉक पेज पर और रेडियो पर सुना था वन बहुत बहुत प्यार के साथ खुशैज हमने के साथ ही वन हेलो जी और फिर सरोज भी उनके साथ ही वन चलो एक साथ सुने गीत मार के फोरेला अब कौन सी फोरेला चलो एक साथ सुने

आज का फीफा वर्ल्ड कप 2026 चला था कनाडा और अमेरिका में, और ढेर कोई सब मैच स्वी भी करा था वनसा, और एकरे को मैगजीन भी बिचा था। मैगजीनों में सकब तोहर पसंदीदा के तोहर चुनने की भारत पे के जो तू बोते करते हुआ ओकर फोटो सब डाले के था। आजकल कॉलेज के लड़का लोग भी देखते इसे मैगजीन किन के फोटो कोली करत हो सा अच्छा बात बात सबको क्या पर पसंद रही ला। और इसे में अगला गीत चली बर की मसाला पिसेला गुरुदेव मनाए गीत तोहर खतेर साथ में माधवी जो मोह गीत तोहरों नाम बहुत बहुत प्यार के साथ चलावत ही। और ये गीत तो हमने चला से संतोष यादव के नाम, फिर रेखा रामा है गीत थोड़ो खतेर, और है गीत

चलावती से महादेश्वरी बिहारी खातिर बहुत ही प्यारा सन गाना रेखा रामा गीत और नाम शंकर थापा के साथ देवत हवन और साथ में हबी हवन दीपशिका गीत और खातिर और अंजना अंजना समीर भाई हवन पोट्रे से वो भी हमने की सुनत हवन और अभी कुछ एस एम एस की और बरफ सा और ही गीत चलाव सा ओके माया जी के नाम रेल मोताई ब्लॉन्श बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत चली सुनील शंभू जी के नाम बीना शंभू रहलन बासे रोड काटोबोन और है गीत चलावती से जितना कोई उनकी रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन प्रश्न और टिकटॉक पेज पर उनकी देखा था कैयान सियान डूमर प्रियंका और अकील डूमर के नाम है गीत बल्कि मसाला पिसेला कैसे मसाला पिसल जाना चले एक साथ सुने

0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: हमने जब छोटा छोटा रही सा तो दुगो रेडियो सुनाता रही सा, एगो रहल रेडियो सेलन और एगो रहल विविध भारती आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। ये सब हमने सुन सुन के बड़ा हो रही सा। फिर बाद में हमने सुने सा रेडियो मॉरिशस और रेडियो सेलन रेडियो और श्रीलंका के रेडियो रहल और विविध भारती भारत के एगो रेडियो रहल जहाँ पर ढेर मना प्रोग्राम सुनते थे जैसे कि हवा महल, छाया गीत, आज के फनकार आदि आदि। तो ये सब प्रोग्राम सुन के हमने बड़ा हुई सा और MBC रेडियो के साथ भी जुड़ल रही जा छोटा से और आज भी और हमेशा MBC रेडियो के कबो कोई नहीं सकेला भुलाई हाँ कि नहीं। और जो रेडियो है हमने की जिंदगी में गो महत्वपूर्ण स्थान रखेला, क्या कि जब भी तोरा मन करी कोनो गीत सुने के तो सुने करके मंगबा तभी चला ला सर। अगला गीत चलावब सब मच्छी मरवा हमर नाम उत्तम भाई है गीत और खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ उत्तम जी और साथ में पूनम हेमराज है गीत और खातिर और उर्मिला है गीत और नाम चलावत ही सर। जितना कोई हमने की टिकटॉक पर देखा था बहुत बहुत प्यार के साथ समीर भाई हवन फिर माधवी थैंक यू सो सो मच सब कोई के शुक्रिया बोला था कि तो लोग रेडियो भी सुना तो अब रेडियो के सक पर लाइव देखे भी। और मच्छी मरवा हमार नाम है गीत जय हरलाल गेले वन तो चल एक साथ सुने गीत है गीत चला तो ऐसा माधव की ओर से चाचू साइलेंट के नाम और माधव अपन चाचा के बहुत बहुत प्यार करेला कभी कभी वीडियो कॉल करके चाचा से बचाला रात के सोने के लिए बोला चाचा अबा मर लगे ना अह चाचा तो माधव की ओर से है गीत ओकर चाचू साइलेंट के नाम जगह बेहद प्यार करेला और चाचू साइलेंट भी अपन नेफ्यू माधव से बहुत प्यार करेला। तो चल एक साथ सुने गीत मच्छी मरुआ हमार नाम

आजकल सर्दी के मौसम भर यानी कि ठंडा के मौसम और ऐसे में एगो लेगी हाँ जो ठंडा में खूब फूलेगा वो हक फूल गोभी यानी कि लीसू फ्ले बड़ी मजा लगेगा लीसू फ्ले खाई के एगो सब्जी और एक ढेर प्रकार से तरकारी पकड़ा है जैसे लीसू फ्ले अंडा मसाला में लीसू फ्ले के सलाद लीसू फ्ले आलू मसाला लीसू फ्ले आलू टूफे लीसू फ्ले भुंजल और लीसू फ्ले जो है ओकर में निमन से चाहना नहीं तो आइए करे कि कैसे कि ओकर में अब ओकर में पिटी पिटी इथी रहेला कुछ बोलने से बेबित सिनी शनी शनी तो चाहना आपके जोड़ी से नहीं तो आइए करे कि गर्म पानी में डाले के निमन से धो दे बा तब के जोड़ी से सकवा पकाए और लीसू फ्ले मसाला के तकारी जो पकाई ला तो चाहना फाता होची या दाल पड़ी पकाए के हों कि नहीं तो लीसू फ्ले के तरकारी तैयार करते रहिए उनके याद करते रहिए और अगला गीत सुना जा कोरिया राजा है गीत चलावती से जिया शहीद दर्ज के नाम सुरमा गुलाम है गीत तोरो नाम सुनील है गीत तोरो खातिर रोज़ की ओर से गीत चली सुचिता साधना खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ अनुराधा के नाम भी और चाची प्रभावती लोल जो हवन नोबेल फोन से के साथ देवतवन है गीत तोरो खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ चल एक साथ सुने गीतवा कोरिया राजा

0: Continuous music. RM3.
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
3: रात के 10:03 हुआ था और तू सुना था हुआ रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस। साथ में हमने की टिकटॉक पेज पर देखा था हुआ रेडियो मॉरिशस के। तो एक बार फिर सब संगत यालो के हमने स्वागत करा थे जा जहाँ से भी हमने की देखा था हुआ सुना था हुआ सब कुछ के स्वागत बा MBC स्थल।

पर। और ढेर कोई की शिकायत रहेला कि जब लोग प्याज काटे रंसा था तो लोग के औंक लहरेला, औंक में लोड़ चलावेला। आज हम थोड़ा बता पिकोसन एगो चीज कि जब प्याज कटबता तो औंक में बिल्कुल लोड़ नहीं आई का चला करे के एगो देखछी में थोड़ा सुन पानी आधा देखछी पानी भर लिया ओकर में प्याज आधा आधा काट दिया। एक मोटा प्याज आधा काट के ओके पनिया में डुबा दिया। अब पनिया में ओके छिल लिया तो पनिया में ओके छिल लिया ओकर लापू पर निकाल दिला तो ओके कटिया पनिए में जब काट दिला तब प्याज ओके निकाल के बोल में दर रखिया तो हर आँख में से तनको लोड़ नहीं चुई। और अक्सर देखिए ऐसा कि हमने कि ढेर कोई संगतिया लोग जब प्याज काट रहे तो आँख लोड़ा जला रोवे लगे रहे तो ये सबसे बचे खातिर याद रखिए जब प्याज काटत हुआ तो एगो बोल में पानी डाल दिया और फिर प्याज वाके आधा आधा काट के कोई आपू समेती है काट के पनिया में डाल दिया। अब ओके छिल लिया जब ओके छिल बह पनिया में तो थोड़ा आँख में से लोड़ नहीं चुई। और ऐसे में अगला गीत को नाल हीरेलाल की गावल गीत था जोड़ी छोकरी से प्यार करीला। है गीत हम चलावत इस संजय बिहारी की ओर से कल पत्नी सुरेखा और सब कल परिवार के नाम और इमानुएल ऑंगसिल SSS कॉलेज के सब स्टूडेंट्स टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ और वहाँ के रेक्टर के नाम और सैंतोबा SSS कॉलेज के सब स्टूडेंट्स टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ और रेक्टर के नाम और खासम खास ग्रेड 7 रेड के सब स्टूडेंट्स लोग के नाम है गीत। है गीत चरावती से यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के बी ए फ्रेंच एम ए फ्रेंच और PhD फ्रेंच में एनरोल सब स्टूडेंट्स के नाम वहाँ के सब प्रोफेसर और लेक्चरर के नाम। तो चला एक साथ सुने हैं गीतवा जोली छोकरी कुणाल हिरीलाल। है गीत चरावती से विपन के नाम जो इन बहुत प्यार से हम की सुनतवन स्वीटी और स्वीनी है गीत और नाम। और जितना कोई हमने की MBC रेडियो पर सुना था और जितना कोई हमने की टिकटॉक पेज पर देखा था खासम खास रीता सीतालू हवन और एक गीत जो है अनुष्का की ओर से रीता सीतालू के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। तो चले के साथ सुने है गीत जोड़ी छोकरी से प्यार करिएगा।

रात की 10:10 हुआ था। अब हम तो लोग की कहानी सुना फाब्दुला फोंटेन के ला सिगाल एला फोमी, तो सिगाल और चुंडी की कहानी। तो बहुत साल पहले ला सिगाल जो रहल उ कुछ करत हल, उ हमेशा नाचे गावे खूब मस्ती करे और कुछ रमासत नहीं रहल। और चींटी ला फोमी जो रहल उ जो है छोटा छोटा पिटी पिटी टुकड़ा खा के वो नमाज के रखत हल और सोचा दल की बुरा समय में काम ही आए। तो एक दिन लेता गाते हो गल सिकलो नाए लगल, हवा पानी आवा था, कुदबा आवा था। तो चूंटी जो है सब पिटी पिटी रोटी और खाई के सब नमाज के रखे रहल अपन घर में। तो थी चींटी तो अपन नमाज के रख रख बा। अब लासीगार के तो ठंडा लगा था, अब लासीगार आके तापी करा था फूमी के लापो। तो फोमी से बोला था हमके सकबर थोड़ा सुन खाए के दे। तो फोमी को से बोला था चींटी बोला था तू उतना दिन का करा तेरा खाई के नहीं नमस्ते वह। बोले हाँ हम तो नाचत अली गावत अली झूमत अली। तो चींटी को से बोले नाचत अला गावत अला तो अब नाच अब निमन से नाच। कहानी की सीख कौन सी है? कहानी की सीख ये है कि जीवन में चेहरा हमेशा को ना को चीज रमास के रखे कि थोड़ा बहुत पैसा वैसा कहे कि बुरा दिन में काम ही आई। अगर सब पैसा खर्च कर दे बुरा समय आए तब का करब। तो ये कहानी के सीख और ये रहा ला सिगार एला फूमी। तो चल अब अगला गीत सुनब जा बजा बोल सुना लो इनके आवाज़ में। और गीत शुभम के नाम उन्हीं के साथ देवतन, फिर राहवन एंजल भी उन्हीं के साथ देवतन। चलो एक साथ सुने बजा बोल सुना लो इनके आवाज़ में।

दुनिया भर चारों बगल गोल गोली गोल। और रात के 10:17 हुआ था और अगला गीत है सुंदर परी गिरीश रूपचंद की गावल गीत रॉबर्ट की ओर से स्वीट हॉट माया खातिर जो नरेन बोबास है फिर इंदिरा मथु सिंह की ओर से राजेश और प्रकाश खातिर अनिता पेतो भाई गीत तरुणाम और फिर हई गीत चरावती अभिसन के नाम जो इन पी सेवन के साथ जुड़ल हो जा बहुत बहुत धन्यवाद और रावत भीम के साथ बा थैंक यू जी सिमी भी उनके साथ वतन हेलो सिमी और ऑस्ट्रेलिया से अवन अजय और पूनम चिंताराम कर्मिता बाल गोपाल और सब चिंताराम परिवार के नाम रंभा हवन स्विट्जरलैंड से हेलो रंभा जी गीत और खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और सब लेखा परिवार के नाम और सब जानकी परिवार के नाम जोन रहन से गुडलैंड और फिर है गीत चली प्रिया सी बालक के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और इंदु के नाम भी।

अब जरा मीरा बाई पर बतियाब सर। मीरा बाई चुन रह कृष्ण भगवान की भक्ति रहल और वो कृष्ण भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गरल कि अपन घर राजपात छोड़ छाड़ के वो चलल कृष्ण भगवान की भक्ति करे और भगवान की भक्ति पैलक कर। इनसे भक्ति में बहुत शक्ति रहेला। वैसे ही सूरदास जुन रहल तो कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहल, तुलसीदास राम भगवान की भक्ति में, तो सब कोई अपन अपन भक्ति में लीन रहे लंसा हों कि नहीं। और यजना बोला प्रताप जी तू हुआ, हाँ जी हम ही आई और जी प्रताप सिंह ऑन द मिक्स रात के 11 बजे ले। तो जैसे मीरा की बात करी तो भक्ति में मीरा जो है वो सर्वोत्तम भक्तिन कहालन, कहे कि मीरा जो है ओके राणा विष दिलक, वो विष के पान करके वो अपन भक्ति में इतना लीन रह कि वो विष भी अमृत बन गया। क्या बात है। और बेशक अगला गीत झीले झीले यही बहुत ही प्यारा सन गाना उमेश दोहू गैले वन गीत यजना के नाम कल्पना हवन। फिर है गीत चरावप्स प्रीति मात प्रीति और रिश्वा माता बदल के नाम ओकर माँ ओकर पापा और सब माता बदल परिवार के नाम। मनीषा चामी सिंह जी भी हमने की सुनो तो मनीषा चामी सिंह।

गीत और करती है तो और पत्नी तो और तीन को लेकर तो हर माँ और सब अचानक सिंह परिवार के नाम हाय सर्वेश गीत तो और खातिर और रवि भी उनके साथ देवोत्थवन हेलो रवि और साथ में है ये गीत चावती से साबुन और जिमी दुखिया के नाम सुदेश जसवाकर माँ और सब जसवा परिवार के नाम चिबुग लोंग राजा नानो स्टीव और प्रवीण भैरव भाई गीत थोरो नाम गंगाधीन मनीष है गीत थोरो खातिर और गीता भी उनके साथ देवोत्थवन तो सबको खातिर है गीत झीले झीले उमेश दोहो की आवाज़ में

भोजपुरी टेट का चलते रही रात की 11 बज रही है और भोजपुरी गमटो हुआ था तलों के संगे संगे हमने नाचा दी सा गावा दी सा झूमा दी सा डोले डोले डोले रे मना डोले डोले डोले रे मना किशोर कीमिया गीतवा गए वन और

गीत हम चलावत ही सा आशा जानू के नाम कुमारी शुभम को विद्यार्थी और सब परिवार खातिर और रही गीत सब संगतिया के नाम अनिता हवन फ्लिकॉन फ्लैक से अनिता लाल जी मौदल बैसे शुभ हाँ।

संगचालक कहाँ जाइबे कहाँ जाइबे अशोक कुमार भवानी के गावल ही गीत के संगे भोजपुरी का प्रोग्राम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। रात की 9 बजे से अभी हमने की साथ रचा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमने की देखी खातिर हमने की सुने खातिर शुक्रिया। तो लोग के फोन कॉल्स SMS खातिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने की तुलों की मुलाकात होती रही रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भी। और एक मुलाकात तक हमने की इजाजत जाए से पहले बता दें 11 बजे सुना बस अगला प्रोग्राम सुने रिपल और 12 बजे से कल फजीत के 6 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने समझ के तो लोग की मुलाकात होती रही MBC रेडियो पर। और एक मुलाकात तक हमने की इजाजत और जय प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय बाय लव यू गॉड ब्लेस नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे लवली लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। गिनिशा बड़े प्यार से आई है आप लोगों का साथ निभाने के लिए इस प्यारे से सफर में। आपका सुनहरे पल, आपका दिल से स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए हैं वो अनमोल नगमे जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जिंदगी के हसीन लम्हों का एहसास है दोस्तों। तो बस मुस्कुराइए और यादों की इस महफिल का हिस्सा बन जाइए।
2: दीवाना

दोस्तों, हर पुराना गीत एक खुशबू की तरह होता है, जैसे ही सुनाई देता है दिल पुरानी यादों के बाग में खो जाता है। आज के इस सफर में हम मिलकर उन यादों को फिर से महसूस करेंगे। तो बैठ जाइए आराम से और अगला नगमा आपके नाम।

कभी किसी गाने ने आपको अपने स्कूल की याद दिलाई है, या किसी अपनों की मुस्कान, या हो सकता है किसी का प्यार। वैसे भी आज के हर गीत में वही जादू छुपा है, तो बने रहिए हमारे साथ सुनहरे पल में। इस खूबसूरत से शो में हम लेकर आए हैं आपके मनपसंद गीत। तो चलिए अगला नगमा आप गुनगुनाइएगा जरूर, और अपनी उन खूबसूरत यादों को फिर से याद कर लीजिए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

रात कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, एक प्यारा सा पुराना गाना दिल को फिर से ताजा कर ही देता है। आज हम वही सुकून और प्यार लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से शो में। वैसे जिंदगी बदलती रहती है, लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल में रहते हैं। आज उन्हीं एवरग्रीन मेलोडीज के साथ अपनी रात को यादगार बनाइए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पर।

रेडियो की दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास तब होता है जब एक गीत आपके दिल की बात कह जाए। शायद, बिल्कुल जी शायद आज का अगला गीत भी आपके लिए कुछ खास हो, किसको पता।

अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं या बस आराम से बैठकर हमारा साथ दे रहे हैं तो इस संगीत भरे सफर का मजा लीजिए। हर गीत एक नई मुस्कान लेकर आएगा। तो चलिए सुनहरे पल आपके नाम।

पुराने गीतों की बात ही अलग होती है मेरी जान, ना उनमें शोर होता है ना दिखावा, सिर्फ दिल से निकली हुई आवाज और रूह को छू लेने वाले सुर होते हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए अगले गीत में खो जाने के लिए।

खूबसूरत नगमे सुनाते सुनाते इस खूबसूरत शो का अंत में कब पहुंच गया हमें पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है जब इंसान इन खूबसूरत नगमों में खो ही जाते हैं, जैसे कि हम अभी अभी खो गए थे इस एक घंटे की सफ़र में। लेकिन दिल छोटा ना कीजिए, फिर से आएंगे एक और खूबसूरत सी सफ़र के साथ रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, सिर्फ सुनहरे पल में आपके लिए ऑन रेडियो मॉरिशस। हमें इजाज़त दीजिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

तेरे झूठे कस्मे वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं जब तक है जान।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो